मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेन्स और सेकेंड लेडी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिदजान में कोटी डी आयवर के राष्ट्रपति अलासानी उटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आयवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह 2 दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने

0: परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

उगते सूरज संग करें भारत माँ का ध्यान, वीरों के बलिदान से ऊंचा अपना हिंदुस्तान, सत्य अहिंसा प्रेम की राह बने हमारी शान, तिरंगे की गरिमा रखेंगे देंगे इसे सम्मान, भारत माता की जय बोलें यही रहे अरमान।

ना मंदिर में ना मस्जिद में, कण कण में तू व्याप्त है प्रभु, तू ही सच्चा ठिकाना। रूप नहीं आकार नहीं, फिर भी सबसे न्यारा, तेरे नाम का सुमिरन करूं मिले मन को सहारा। माया के इस सागर से तू ही पार उतारे, प्रभु की शरण में जीवन सफल हमारे।

सांस सांस में तेरा वास है, तुझसे जग की शान, तेरे बिना सुना है सब, तू ही पालनहार, तेरे नाम का दीप जलाकर करूं तेरा सत्कार।

तेरी महिमा शब्दों से परे, बुद्धि न पाए पार, अनदेखे होकर भी प्रभु करते सबका उद्धार। भक्ति का दीप जलाकर मैं करूं तेरा गुणगान, प्रभु के चरणों में मेरा सदा प्रणाम।

ही आदि तू ही अंत, तेरे नाम से धड़क रहा ये सारा संसार, हर पल तेरा स्मरण रहे यही मेरा आधार, ईश्वर की कृपा से हो जीवन उद्धार।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। आलेख चंद्रशेखर कुरील, वाचक स्वर सैयद आसिफ अली।
1: सुबह की अलार्म से लेकर रात के सन्नाटे तक हमारे कान हजारों तरह के शोर से टकराते हैं। सड़कों पर गाड़ियों का कोलाहल, बाजारों की हलचल, मोबाइल की लगातार बजती घंटियां और अपने परायों की अंतहीन बातें। लेकिन श्रोताओं, इन तमाम बाहरी आवाजों के महासमुद्र के बीच क्या कभी हम उस महीन सी आवाज को सुन पाते हैं जो हमारे ठीक भीतर से आती है, जिसे हम अंतरात्मा की पुकार या मन की आवाज कहते हैं। दोस्तों, मन की आवाज कोई रहस्यमयी या अलौकिक ध्वनि नहीं है। यह हमारे जीवन के संचित अनुभवों, हमारे नैतिक मूल्यों और हमारी आत्मिक चेतना का वह शुद्ध निचोड़ है जो हमें सही और गलत के बीच का बुनियादी अंतर बताती है। इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण बताता हूँ। सम्राट अशोक का जीवन परिचय तो आप सभी जानते ही होंगे। कलिंग का भीषण युद्ध चल रहा था। चारों तरफ चीख पुकार थी, लहूलहान धरती थी और लाखों बेगुनाह इंसानों की लाशें बिछी थी। वे सम्राट थे, महाविजेता थे, चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी। लेकिन जैसे ही वे उस शाम युद्ध भूमि के बीच से गुजरे, उनके भीतर का कुछ टूट गया। विजय के उस अहंकार के बीच उनकी अंतरात्मा ने उनसे एक तीखा सवाल पूछा, अशोक, यह कैसी विजय है? क्या निर्दोष महिलाओं, बच्चों और सैनिकों के खून पर बनी यह सत्ता तुम्हें कभी सच्ची खुशी दे सकती है? यह उनके मन की आवाज थी। इस एक आंतरिक पुकार ने एक क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा को देवान प्रिय और करुणा के सागर महात्मा अशोक में बदल दिया। उन्होंने सदा के लिए तलवार छोड़ दी और धम्म तथा अहिंसा का रास्ता अपना लिया। सम्राट अशोक का यह जीवन परिवर्तन हमें सिखाता है कि जब जीवन अपने भीतर की पुकार सुनता है तो वह विनाश के मार्ग से हटकर मानवता के कल्याण मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, मन की आवाज सिर्फ महापुरुषों, संतों या सम्राटों तक ही सीमित नहीं होती। यह हमारे और आपके जैसे आम इंसानों के भीतर भी उतनी ही पवित्रता और तीव्रता से गूंजती है। आइए वर्तमान समय का एक बेहद व्यवहारिक और समकालीन उदाहरण देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं फिल्म स्वदेश की, जिसका नायक आज के दौर का एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने देश के एक बहुत बड़े संस्थान से पढ़ाई की और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज वाली नौकरी पाली। उसके पास आलीशान घर है, महंगी गाड़ी है और समाज में एक बड़ी प्रतिष्ठा भी है। बाहर से देखने पर उसका जीवन एकदम आदर्श और पूर्ण लगता है, लेकिन हर रात जब वह सोने जाता है तो उसे अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर कोडिंग करते हुए उसका मन बार बार उससे कहता है, तुम्हें समाज के उस अंतिम पायदान पर खड़े बच्चों के लिए कुछ करना है जिन्हें बुनियादी शिक्षा भी नसीब नहीं हो पा रही। वह युवा कुछ महीनों तक इस आंतरिक आवाज को दबाने की कोशिश करता है क्योंकि बाहरी दुनिया उसे उसकी सफलता का वास्ता देती है, लेकिन यह आवाज लगातार उसका पीछा करती है। आखिरकार एक दिन वह अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ देता है और देश के किसी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए एक छोटा सा संगठन खड़ा करता है। आज भले ही उसका बैंक बैलेंस पहले जैसा ना हो, लेकिन उसके चेहरे का संतोष और उसकी आंखों की चमक यह गवाही देती है कि मन की आवाज को सुनने का फैसला कभी गलत नहीं होता। अक्सर लोग एक असमंजस में पड़ जाते हैं और पूछते हैं कि हम यह कैसे पहचाने कि कौन सी आवाज हमारे सच्चे मन की है और कौन सी हमारे स्वार्थ, लालच या डर की है। जो आवाज आपको किसी लालच, ईर्ष्या, क्रोध या शॉर्टकट की तरफ ले जाए, वह आपके अहंकार और चंचल दिमाग की आवाज होती है। इसके विपरीत जो आवाज आपको निस्वार्थ भाव, करुणा, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, भले ही वो रास्ता कितना भी कठिन और अकेला क्यों ना हो, वही आपके मन की सच्ची और शुद्ध आवाज होती है। जब भी आप किसी ऐसे दोराहे पर खड़े हो जहां सही और गलत का फैसला करना अत्यंत कठिन हो, तो कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी और शांत सांस लीजिए और अपने हृदय की धड़कन के साथ उठने वाली तरंग को महसूस कीजिए। आपका मन कभी झूठ नहीं बोलता। वह आपकी अंतरात्मा का सबसे सच्चा मार्गदर्शक है, आपको सही दिशा दिखाएगा।
0: तो ये था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, खेती की बातें। इसमें आकाशीय बिजली से बचाव करें अपना और खेती का, इस विषय के बारे में जानकारी देंगी बिंदु भाटे।
2: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, अपन देखे आज की वर्षात का दिन छे ना, गरज चमक का साथ में छे तो खूब वर्षात तेज हो। जब बिजली चमकज तो अपन अपना अगर खेती बाड़ी का काम कर ही रहा है तो ऐसी जगह पर अपना ख छे तो सुरक्षित अपना आप ख ने अपनी खेती बाड़ी का कसो कई रखनु ये जाननु घनो जरूरी छे। भाई जसो ज अपन देखा कि वरसात हुई रही न, बिजली भी चमकी रही तो खेत न को काम अपन तुरंत बंद कर देवा और जहाँ पक्का मकान छे वहाँ जाई कर ना रुका। बिल्कुल भी बड़ा बड़ा जो झाड़ छे उनका नीचे अपना का रुकनु नहीं है। ऐसी बखत में अपना जो खेती का औजार छे उनका भी अपन उन्हीं जगह पर छोड़ी ना ऐसी जगह चली जावा जहाँ पक्की छत हो, ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं जावा जहाँ पानी गिरी रो है या झाड़ होए ओका नीचे भी अपना का बिल्कुल भी नहीं रुकनु है। साथ ज अगर कीटनाशक को छिड़काव कर ही रहे हैं तो ये कीटनाशक को छिड़काव भी हम रोकी देवा। भाई अपना तुरंत अपना का बचाऊ तो अपना जो खेती का कुदाल छे, फावड़ा छे, यानी धातु का औजार छे इनका छे तो अपना का छे तो जमीन पर छोड़ी कर ना चली जाए। एक तो हम खुला मैदान में नहीं रहवा, ऐसी जगह आड़ वाली जगह पर चली जावा और सुरक्षित जगह रहवा जहाँ ऊपर छत हुए तो इन्हीं बात को ध्यान रखा। साथ ज हमको ये झाड़ का नीचे छुपने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई बार कई हुए कि बिजली झाड़ आकर्षित कर ले, बिजली वहाँ ज गिरे जहाँ झाड़ रहे नहीं गीला भी रहे तो इन्हीं जगह बिल्कुल भी नहीं अपन रुका। अगर आपका कहीं कोई जगह नहीं दिख रही तो आप अपना साथ हमेशा एक जो प्लास्टिक को टुकड़ो छे या प्लास्टिक की अपनी शीट रहे पन्नी जैसे अपन कवा तो ओख साथ में रखा या बोरा ख साथ में रखा जेमो नीचे बिछाई कर ना बोरा ख और छे तो अपना ख घुटना का बल बैठी जानु पण अपना ख जहाँ तक होए असी आड़ में बैठा और दुई हाथ से अपना कान न ख बंद करी लेवा। जहाँ ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा हुई गया तो अपना का वहाँ पर नहीं रहनु है, थोड़ो सो एक दूसरा से दूरी बनाई कर ना रहवा। अब अपन भाई देखो सबई नका पास में मोबाइल रहे अन बिजली को छे तो कामकाज अपना खेतना में भी चल तो एकासी भी अपना का बजनू भाई अपना छे तो जो बिजली का खंबा छे उनका से अपन दूर रहवा न अपना जो मोबाइल छे उनका तो अपना का बरसात में बिल्कुल भी बाहर न निकालनु ही क्योंकि एका तरफ भी बिजली आकर्षित हो और बिजली अपना ऊपर गिर सक। इन्हीं बात को भी ध्यान रखा। साथ ही अपनी जो खेती बाड़ी जो फसल छे ओको बचाओ भी हमको करनू अपना का। एक तो जो अपना खेत न पानी भरेगी गोज तो ओख हम निकाला जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करा जेका सी फसल सड़गा भी नहीं और यहाँ पर छे तो किसी भी तरह को नुकसान भी नहीं होएगा। छिड़काव कर लेना अपन देखे रहा कि जब बरसात होए या गरज चमक होए तो वह बिल्कुल भी अपना का खाद उर्वरक कीटनाशक ये बिल्कुल भी छिड़काव नहीं करना है। अपना ढोर डंगर भी अपन ने पाड़ी रखे तो अपना ढोर डंगर न खो भी

0: असी जगह बिल्कुल नहीं बांधनू, जैसे कि लोहा को खंभों छे, बिजली को खंभों छे, वहाँ पर कई तार होए, वहाँ असी बिल्कुल भी जगह नहीं बांधनू है। उनका बिल्कुल खुला में भी नहीं रखनू है। उनका छे तो अपन जहाँ उनके छे तो वाड़ो बनेल छे वहाँ पर या सुरक्षित जगह पर उनका रखा, ताकि वो बिजली की गरज चमक से डरे भी नहीं और छे तो किसी तरह को नुकसान भी नहीं हुए। और जहाँ तक बना एक तड़ित चालक जो रह ओको उपयोग अपना को करनू चाहिए। अपना घर में या खेत ऐसी जगह छे तो तड़ित चालक लगाई देनू चाहिए, जेका सी बिजली ओमा आकर्षित होई कर जमीन में चली जाए। तो हमारा किसान भाई बहन अगर इन्हीं बात को ध्यान रखेगा तो सुरक्षित रह सकेगा और इन्हीं बरसात में भी अपनी खेती बाड़ी को अच्छी तरह से कर सकेगा न ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी ले सकेगा। आज हमारो सभी किसान भाई बहनों से योज कहनू छे।
1: खेती की बातें, इसमें आकाशीय बिजली से बचाव करें अपना और खेतों का, इसके बारे में जानकारी दे रही थी बिंदु भाटे। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्री राम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं,

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, स्वर था ए हरिहरन का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आपको सुनवा रहे हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम वसुंधरा। इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण पर मंगेश देशपांडे की वार्ता होगी। सुनहरे पल कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:35 पर। सुबह 8:30 कल के सितारे बच्चे हमारे, ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा होगी, साथ ही आज़ादी के मायने पर बच्चों से चर्चा होगी। लोक संगीत में सुबह 9:00 और शाम 6:45 पर आपको सुनवाएंगे भाई राम रणसोरे के गाए लोकगीत। सुगम संगीत में सुबह 9:15 और शाम 6:30 कलाकार होंगे राजेंद्र नागले। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 9:30, इसमें आपको सुनवाएंगे विदुषी जयश्री पाटकर का गाया राग तोड़ी। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे सुबह 10:00। सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन सुनिएगा सुबह 10:05 से। दिन में 11:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। दिन में 11:00 सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। दिन में 12:00, दिन में 2:00 फिल्म संगीत, दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम, लोक संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 1:30, सुगम संगीत आप सुन सकते हैं दिन में 1:45 पर। दिन में 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान सुनिएगा। शाम की सभा में युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:00। इसके अंतर्गत आज सुनिएगा क्रम युवा तरंग, फिल्म संगीत शाम 5:45 पर। खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:21 पर, इसमें आज की बात होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, घुटना एवं कुल्हा प्रत्यारोपण एवं रोबोटिक सर्जरी, इस विषय के बारे में डॉक्टर कृष्णकांत नीमा से प्रियंका की बातचीत सुनिएगा। साथ ही आप सुनेंगे लोकगीत। रात्रि 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम डगर विकास की।

चित्रगीत में सदाबहार फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे सुबह रात्रि 9:15 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात्रि 10 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार होंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: अभियाने भागं स्वीकृत्य राष्ट्रध्वजम् उत्तोलयिष्यति। उपराष्ट्रपति ह्यः अंडमान निकोबार द्वीपानां द्विदिवसीय यात्रायै श्रीविजयपुरम नगरे सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति राष्ट्रपति आरक्षक वर्ण प्रदान समारोहे भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इसका विशेष महत्व है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोट डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोट डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोट डी आइवर के लंबे समय से चली आ रही मित्रता को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुदुचेरी के गोरी मेडू के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। श्री शाह मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी की है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। कल जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1,202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों के काफिले में जम्मू के लिए रवाना किया गया। कल श्री अमरनाथ जी गुफा में 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। चीन के हिफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और

सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। मैच दक्षिण कोरिया के आसन में कुछ देर बाद 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
6: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
5: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
7: ओहो, क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा,
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।

0: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
0: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
1: वही दोपहर 1 बजे।
0: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे। चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर और डिजिटल सुरक्षा उपायों पर बल दिया। सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के संकल्प के साथ भोपाल में संपन्न हुआ ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में प्रदेश की 4 नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे और आज से 17 अगस्त तक जनभागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में कल उन्होंने साइबर और वित्तीय अपराधों से निपटने में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की जरूरत है। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया।
1: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: भोपाल में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 कल ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ संपन्न हुआ। समापन के अवसर पर भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही सभी देशों के कलाकारों को मौका देने, चोरी या गलत रास्ते से विदेशों में पहुंची सांस्कृतिक संपदाओं को वापस लाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि घोषणा पत्र सदस्य देशों और साझेदार देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और दूरदर्शी ढांचा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में ब्रिक्स का यह आयोजन देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के स्वर्णिम अध्याय को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का सशक्त अवसर रहा है।
2: मध्यप्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। कल्चर का, अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है, उसको जीवंत करते हुए और वो सभी वेद वाक्य जो माननीय मंत्री जी ने भी बोले, हमारा तो भाव वसुदेव कुटुम्बकम का है। वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई, हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का कि मध्यप्रदेश ये देश का दिल है और देश का दिल ऐसा ही धड़कता रहे और आपका साथ मिलता रहे।
0: वहीं समापन के बाद ब्रिक्स देशों के 42 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ सांची स्तूप और म्यूजियम का भ्रमण भी किया। रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय तथा आधुनिक बनाने के लिए नागदा संत हिरदाराम नगर रेलखंड के कुल 226 किलोमीटर मार्ग में मानक कवच प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया। मानक कवच प्रणाली उन्नत स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन संरक्षण प्रणाली है, जिसका उद्देश्य ट्रेन परिचालन के दौरान संभावित जोखिमों को कम करना तथा असामान्य परिस्थितियों में लोको पायलट को तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए रेल सुरक्षा को और सुदृढ़ करना है। कवच प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने के लिए आवश्यक टावर लगाने का कार्य भी प्रगति पर है। वहीं रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी

0: बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और बगरा, तवा, सुहागपुर तथा दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 4 नई सीधी हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता हवाई मार्ग शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भोपाल से रीवा की पहली उड़ान को फ्लैग ऑफ करेंगे। इन नई सेवाओं के शुरू होने से प्रदेश की आंतरिक एवं अंतर्राज्यीय हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इन सेवाओं का संचालन अलायंस एयर द्वारा किया जाएगा। इन सभी घरेलू हवाई मार्गों को मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 8 नए हवाई मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 4 मार्गों पर हवाई सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, जबकि 4 नए मार्गों पर सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व प्रदेश में आज से 17 अगस्त तक जनभागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान तिरंगा यात्रा, तिरंगा मेला, प्रदर्शनी और साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 13 अगस्त को बड़े पैमाने पर तिरंगा बाइक रैली तथा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे भी अभियान से जोड़ा गया है।
2: हर घर तिरंगा 5 वर्ष पूरे कर चुका है और 5 वर्ष पूरे होने के बाद में हर वर्ष हर घर तिरंगा का व्याप जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बार हमने 2 नए विषयों को इसके साथ में जोड़ा है, क्योंकि इस बार देश वंदे मातरम की 150 वर्ष सम्मान के साथ में मना रहे, इसलिए हमने आग्रह किया है कि इस बार हम वंदे मातरम के गायन करते हुए उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करें।
0: खंडवा में शहरी क्षेत्रों में तिरंगा बाइक, ई बाइक और साइकिल रैली, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा रैली और प्रभात फेरी की तैयारी की जा रही है। वहीं स्कूलों में तिरंगा रंगोली, प्रश्नोत्तरी, नुक्कड़ नाटक और अन्य देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो यह केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है, जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की बेरुखी के बीच पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं भोपाल में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 52 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। मंडला जिले में बीती रात से ही अच्छी बारिश हो रही है और सावन में पहली बार बारिश की झड़ी देखने को मिली है। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाड़े का चयन सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। यह प्रतियोगिता 9 से 14 अगस्त तक नाइजीरिया में आयोजित की जा रही है। खुशी वुमेन्स AP स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे वर्तमान में भारतीय टीम के साथ नाइजीरिया में हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले के प्रवास के दौरान कल केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रेवती रेंज में वृक्षारोपण किया। आगरमालवा जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान आज सुसनेर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। सिंगरौली जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिद्धिकला में कलेक्टर गौरव बैनल ने औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक व व्यवस्थागत गतिविधियों का जायजा लिया। नीमच जिले में विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपार आईडी के निर्माण व सत्यापन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। और खंडवा जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के दौरान नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भुंडवे ने नमो वन में बेम्बू पार्क एवं मियावाकी पद्धति से एक नगर एक जंगल विकसित करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर और डिजिटल सुरक्षा उपायों पर बल दिया। सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के संकल्प के साथ भोपाल में संपन्न हुआ ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में

प्रदेश की 4 नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे और आज से 17 अगस्त तक जनभागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वसुंधरा।

समुद्र जिसके वस्त्र हैं, पर्वत जिसके स्तन, ऐसी विष्णु पत्नी पृथ्वी को मेरा नमन है। हे माँ, पैरों से स्पर्श करने के लिए तू मुझे क्षमा कर।

0: आज के वसुंधरा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मंगेश देशपांडे की वार्ता, पर्यावरण प्रदूषण एवं स्वच्छता अभियान।
1: भारत में पर्यावरण के प्रति आदिकाल से ही सजगता रही है। यहां लंबे समय से प्रकृति को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। न सिर्फ वृक्ष बल्कि जीव जंतु भी हमारी आस्था से गहरे जुड़े हुए हैं। कारण स्पष्ट है कि हम भारतीयों को पर्यावरण संतुलन के लिए जल, वायु, वृक्ष, जीवों आदि का महत्व प्रारंभ से ही ज्ञात था। श्री रामचरितमानस, महाभारत आदि में वृक्षों की महिमा एवं उपयोगिता बताई गई है। वहीं मनुस्मृति में वृक्ष काटने पर दंड के प्रावधान का उल्लेख है। इसी प्रकार पशु पक्षियों के शिकार पर पाबंदी का विष्णु पुराण में निर्देश है। भगवान शंकर के साथ बैल, मां सरस्वती के साथ मोर, इंद्रदेव के साथ हाथी और गणेश जी के साथ मूषक को सदैव पूजा गया है। सम्राट अशोक के स्तंभ लेखों में वन्य जीवों की सुरक्षा के निर्देश भी मिलते हैं। अहिंसा परमो धर्मः, इस आदर्श वाक्य को हमने चरितार्थ किया है। भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी धर्मावलंबी जो भारत आए, उन्होंने भी जीव और जंगल के महत्व को समझा। ज्यों-ज्यों मानव जाति ने विकास किया, त्यों-त्यों स्वयं के लिए नई नई खोजें करने लगा। परिणाम स्वरूप उसने आवास संस्कृति का विकास भी किया और वह गुफाओं और कंदराओं में रहने लगा। जानवरों से सुरक्षा और भोजन पकाने के लिए आग जलाना शुरू किया। मशालें सुरक्षा और अंधेरे में राह दिखाने में काम आईं। समय अपनी गति से चलता रहा, गुफाओं और कंदराओं का स्थान मानव बस्तियों ने ले लिया और फिर भिन्न भिन्न तरीकों से अपने घरों को मानव इसे सुंदर बनाने लगा। इसके लिए उसने पर्यावरण को ही आधार बनाया। मानव सभ्यता के विकास की कहानी नदियों से जुड़ी हुई है। मनुष्य ने यह जान लिया था कि दिन रात बहता जल स्वयं में जीवन है। जल ही मिट्टी में मिलकर वनस्पतियों को जीवन देता है। नदियों के साथ साथ किनारे बसने वाली सभ्यता में जल के लिए संघर्ष भी हुए। जहां एक ओर नदियां

संघर्ष का कारण बनी, वहीं भावनात्मक एकता का भी आधार बनी। नदियों के तट पर बसे तीर्थ सदा से आध्यात्म और संस्कृति के केंद्र रहे। किंतु शनै शनै जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य की भौतिकवादी प्रवृत्ति, औद्योगीकरण, जनसंख्या वृद्धि, कृषि के तरीके आदि से वातावरण में अनचाहे परिवर्तन हुए हैं, जो कि मानव सभ्यता के लिए अलाभकारी सिद्ध हुआ है। मनुष्य की इन्हीं क्रियाकलापों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्यतः चार प्रकार हैं, जो कि जनसमूह के अधिकांश भाग को सीधा प्रभावित करते हैं। ये प्रकार हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु जीवन का आधार है, यह अनेक गैसों का आनुपातिक सम्मिश्रण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पर ही प्राण निर्भर हैं। वर्तमान में बढ़ती आवश्यकताओं के कारण वायु की निश्चित मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। वायु प्रदूषण के लिए परिवहन एवं आवागमन के आधुनिक साधन अधिक उत्तरदायी हैं। इनमें मुख्यतः डीजल और पेट्रोल का उपयोग होता है। इनसे विषैला धुआं निकलता है। घरेलू कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा में कोयला, लकड़ी, कंडे, मिट्टी का तेल इत्यादि दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि हानिकारक होती हैं। कोयले से चलने वाले बिजली घरों में अपशिष्ट के रूप में राख हवा में उड़कर वायु प्रदूषण पैदा करती है। कृषि कार्यों में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भी वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्वसन तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इससे दमा, निमोनिया, एलर्जी, फेफड़ों का कैंसर आदि रोग होने की आशंका रहती है। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर यह रक्त के हीमोग्लोबिन में घुलकर हानिकारक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु तक हो सकती है। वायु प्रदूषण के कारण वनस्पति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे धूल, कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड वर्षा जल में घुलकर अम्लीय वर्षा होती है, जिससे हरे भरे पौधे नष्ट हो रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव ऐतिहासिक इमारतों पर भी पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इसी कारण जलवायु में काफी परिवर्तन हुआ है। पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है, जो कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और अधिक बढ़ने पर संभव है कि ग्लेशियर्स पिघलकर समुद्र में समा जाएंगे और समुद्र के पानी से पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ओजोन परत में भी वायु प्रदूषण के कारण छिद्र हो रहे हैं, जिसके कारण सूर्य से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगी हैं, जिससे त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण मुख्यतः घरेलू कूड़ा कचरा, सड़े गले फल सब्जी, कपड़े के टुकड़े और पॉलीथीन की थैलियों के कारण होता है। घरों, होटलों आदि में कपड़ों एवं बर्तनों की धुलाई के लिए डिटर्जेंट्स का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा घरेलू और सार्वजनिक शौचालयों से निकला मलमूत्र सीधे नदी नालों एवं तालाबों में बहकर पानी गंदा करता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए फसलों में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ये सिंचित पानी या बारिश के पानी के साथ बहकर नदी तालाबों का पानी दूषित करते हैं। औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट, जिसमें कि पारा, कैडमियम, सीसा आदि होता है, जो कि नदी नालों में प्रभावित होता है। जल प्रदूषण से मनुष्य में अनेक रोग जैसे हैजा, तपेदिक, पीलिया, टाइफाइड आदि बीमारियां होती हैं। पारायुक्त मछलियों को खाने से मिनी माता रोग हो जाता है। मृदा प्रदूषण भी फसलों की उत्पादकता पर घातक असर डाल रहा है। घरेलू अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, कांच,
कूड़ा

0: करकट या अन्य अनुपयोगी वस्तुएं भूमि को प्रदूषित करती हैं। पॉलीथीन या प्लास्टिक का प्रयोग न्यूनतम हो, ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनको जलाने पर विषैली गैसें निकलती हैं और न ही भूमि में इनका विघटन होता है। नालियों में फंसकर जल निकासी को पॉलीथीन अवरुद्ध करती है और कभी कभी जानवरों के गले में फंसकर उनकी मृत्यु का कारण भी बनती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दिशा में हमारी सरकार ने भी बहुत ही प्रभावशाली कदम उठाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर सन 2014 को नई दिल्ली से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है और देश के प्रत्येक नागरिक से कहा है कि वर्ष 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाए जाने तक हम उनके स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में साफ सफाई में कमी के कारण प्रति व्यक्ति औसतन 6,500 रुपये अनावश्यक खर्च होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य भारत में खुले में शौच की समस्या को रोकना, हर घर में शौचालय का निर्माण करना, पानी की आपूर्ति करना और ठोस और तरल कचरे का उचित तरीके से खात्मा करना है। स्वच्छ भारत अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए 19 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई है। इस समिति के अध्यक्ष हैं वैज्ञानिक रघुनाथ अनंत माशेलकर। स्वच्छ भारत अभियान के दो उप अभियान हैं, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और स्वच्छ भारत अभियान शहरी। ग्रामीण इलाकों में इस अभियान के तहत सरकार ने हर परिवार में शौचालय की लागत 12,000 रुपये तय की है एवं सफाई, नहाने और कपड़े धोने के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जा सके ऐसा लक्ष्य रखा है। अनुमान के अनुसार पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इस अभियान पर 1,34,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में हर घर में शौचालय बनाने, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाने, ठोस कचरे का उचित प्रबंधन करने और वैधानिक कस्बों के 1,04,00,000 घरों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 47 मिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। ठोस कचरे की रिसाइकलिंग एक बड़ी समस्या है। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान बहुत ही उत्साहवर्धक कदम है, लेकिन सिर्फ सरकार ही इसे सफल नहीं बना सकती। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी देशवासियों की भागीदारी सबसे जरूरी है। इस प्रकार जनता और सरकार के सामंजस्य से आने वाले वर्षों में भारत अवश्य ही एक स्वच्छ देश बन सकता है।
1: पर्यावरण प्रदूषण एवं स्वच्छता अभियान, अभी आपने मंगेश देशपांडे की ये वार्ता सुनी। अब आज का वसुंधरा कार्यक्रम समाप्त होता है।
2: समुद्र जिसके वस्त्र हैं, पर्वत जिसके स्तन, ऐसे विष्णु पत्नी पृथ्वी को मेरा नमन है। हे माँ, पैरों से स्पर्श करने के लिए तू मुझे क्षमा कर।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आप अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुंधरा। इसके अंतर्गत आपने सुना मंगेश देशपांडे की वार्ता आपने सुनी वायु प्रदूषण पर। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पद्मश्री तपस्वी का नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन बहुत ही खास है। आज है 9 अगस्त और आज के दिन बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जा रहे हैं। आज अगस्त क्रांति दिवस है। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। ये नारा मुंबई में दिया गया, जिसकी गूंज सारे देश के कोने कोने में सुनाई दी। जगह जगह हजारों हजार संख्या में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर बाहर निकल पड़े और पूरा भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे से गुंजायमान हो गया। इसी आंदोलन के कारण हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा

0: ध्यान से।
1: श्रोताओं, आज नागासाकी दिवस भी है। बात आज ही के दिन की है। सन 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया। हमले में करीब करीब 75,000 लोग मारे गए और कई सौ घायल भी हुए। नागासाकी शहर ने कई सारे लोगों को इस हमले में खोया है। इन्हीं लोगों की याद में नागासाकी दिवस 9 अगस्त यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। ये दिन परमाणु युद्ध के विनाशकारी मानवीय और पर्यावरणीय परिणामों को याद दिलाने का दिन है। हजारों लोग नागासाकी शांति पार्क में एकत्रित होकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: श्रोताओं, आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है, जो 9 अगस्त से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस साल इस अभियान का 5वां संस्करण है, जो राष्ट्रीय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने को समर्पित है। आज पूरे देश में वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान किया जाएगा और अखंड भारत की शपथ ली जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारत का प्रत्येक नागरिक अपने घर तिरंगा फहरा सकता है और अपने तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। ऐसा करने पर उन्हें प्रमाण पत्र भी मिलेगा। हमारे शहर इंदौर में भी तिरंगा रैलियां निकाली जाएंगी।

श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं एक और दिवस, विश्व जनजातीय दिवस। ये दिवस हम मनाते हैं भारत की 700 से अधिक आदिवासी समुदाय के उत्थान, समृद्धि और प्रगति के लिए। आपको बता दें, हमारे देश की करीब 10 करोड़ 40 लाख आबादी आदिवासी समुदाय से आती है। ये समुदाय अपने अनूठे इतिहास, समृद्ध संस्कृति, लोक कला, भाषा और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। आदिवासी प्रकृति के संरक्षक हैं। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी संस्कृति और योगदान का सम्मान करना। ये दिन ये भी याद दिलाता है कि आदिवासियों की भाषा, परंपरा और पर्यावरण संरक्षण में उनका अमूल्य योगदान है।

श्रोताओं, आज श्रावण मास की एकादशी भी है, जिसे कामिका एकादशी भी कहते हैं। ये चातुर्मास काल की पहली एकादशी है, जो समर्पित है भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को। आज का एकादशी व्रत करने से पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया।

0: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के

0: दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगें विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में

0: बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछे समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाईब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िये जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देशभर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स
2: मॉर्निंग न्यूज़।

0: कल के सितारे बच्चे हमारे, कल के सितारे बच्चे हमारे,
1: कल के सितारे बच्चे हमारे। इस कार्यक्रम में स्वागत है बच्चों आपका। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी प्रीति दीदी।
2: बच्चों कैसे हैं आप सभी? एक साथ बोल पड़े, बहुत अच्छे दीदी। हमें पता है कि आप सभी कुछ ना कुछ तैयारियां कर रहे हैं आने वाले राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस की, है ना? बच्चों अगस्त का महीना देशभक्ति की भावना में डूबा हुआ होता है, क्योंकि बच्चों इसी अगस्त के महीने में ही तो हम अपने देश की आज़ादी का पर्व मनाते हैं। बच्चों आज़ादी या कहें स्वतंत्रता, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा आसमान समाया है। सदियों से भारत के लोग अंग्रेजों की दास्तां और अत्याचार से त्रस्त हो चुके थे। खुली फिजा में सांस लेने को व्याकुल भारत में आज़ादी का बिगुल सन 1857 को बजा, पर किन्हीं कारणों से बच्चों हम गुलामी के बंधनों से मुक्त ना हो सके। पर बच्चों यह क्रांति की आग धीरे धीरे ज्वालामुखी का रूप लेने लगी और मातृभूमि पर मर मिटने को आतुर हजारों देशभक्तों ने क्रांति की इस मशाल को थाम कर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को स्वतंत्र कराया। वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयत्नों की ही देन है कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। बच्चों आजादी को पाने में हमने बहुत संघर्ष किया है और इतने सालों से हम ये पर्व मना रहे हैं, पर इस आजादी को अक्षुण बनाए रखने के लिए हमारे नन्हे नौनिहाल यानी कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे क्या सोचते हैं आजादी को लेकर, कैसे मनाते हैं 15 अगस्त का ये त्योहार? तो आइए जानते हैं आप सभी दोस्तों के विचार आजादी के तरानों के साथ।

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीहू शर्मा है और मैं 9th क्लास में हूँ।
1: पीहू, ये बताओ कि तुम्हें पता है कि आज कौन सा विशेष दिन है?
0: हाँ, आज 9 अगस्त है।
1: तो तुम्हें पता है 9 अगस्त क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए?
0: हाँ, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने का आह्वान करते हुए कहा, करो या मरो। इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत खास है। उसके बाद दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, इसीलिए हम राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाते हैं। और 15 अगस्त बहुत नजदीक है और हमने बहुत सारी तैयारी करी है।
1: बहुत अच्छी बात है पीहू।
0: और दोस्तों, आज मैं आपको कुछ आजादी के महत्वपूर्ण नारे बता रही हूँ। महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। भगत सिंह ने कहा, इंकलाब जिंदाबाद। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
1: क्या बात है पीहू, बहुत ही अच्छे नारे आपने बताए हैं अपने दोस्तों को।
0: 15 अगस्त बहुत नजदीक है और उसी के विषय पे मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। लहराता रहे तिरंगा प्यारा, भारत देश है सबसे न्यारा। केसरी देता वीरता का ज्ञान, सफेद बढ़ाता शांति का मन। हरा रंग हरियाली लाए,

0: अशोक चक्र राह दिखाए, गर्व से इसमें नमन करे, भारत माँ का वंदन करे, ऊंचा रहे सदा इसका मान, तिरंगा है भारत की शान, तिरंगा है भारत की शान।
1: बहुत अच्छी कविता पीहू आपने सुनाई है।
2: मेरा नाम अथर्व शर्मा है, मैं कक्षा दूसरी में पढ़ता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त को हमारी स्कूल में ध्वज फहराते हैं, लड्डू मिलते हैं। गांधी जी के 3 बंदर थे, एक तो बुरा मत बोलो और एक बुरा मत सुनो और एक बुरा मत देखो। बुरा मत देखो का मतलब होता है अच्छा देखो, बुरा मत सुनो का मतलब होता है अच्छा सुनो। हमारी स्कूल में 15 अगस्त को पोयम होती है और उन सबको फूल चढ़ाते हैं, जिन्हें हमको बताया था।
3: हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज अदिरा जोशी, मैं है ना KG 2 में पढ़ता हूँ। 15 अगस्त के दिन हमारे यहाँ लड्डू बटते हैं, मैं लड्डू खाता हूँ। उस दिन हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, मैडम भाषण देती हैं, बच्चे कविताएं बोलते हैं, सब लोग देशभक्ति गान गाते हैं, कई तरह के प्रोग्राम होते हैं, कई तरह के डांस होते हैं, झंडा वंदन होता है। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सब लोग रंग बिरंगी ड्रेस पहन के बहुत डांस करते हैं, खूब खुशियाँ बनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। जय हिंद।
4: बच्चों अच्छा लगा ना सुनकर अधिराज के मुख से जय हिंद, वाकई इस शब्द में ताकत है। तो फिर गीत भी सुन लेते हैं ऐसा ही जय हिंद वाला।

0: Hello friends, myself Reva Sharma. I am student of class 6. I like Independence Day. In our school, we are singing patriotic song and I love patriotic song. Aaj Himalay ki choti se dhwaj apna lehraega. Aaj Himalay ki choti se dhwaj apna lehraega. Jaag utha insaan phir Bharat ko swarg banayega. Aaj Himalay ki choti se dhwaj apna lehraega. Aaj Himalay ki choti se dhwaj apna lehraega.
1: Reva, aapne bahut hi acha sundar sa geet gaya, lekin hum ek baat aapse janna chahte hain. क्या आप जानती हैं कि स्वतंत्रता दिवस क्या है और उसके मायने क्या है?
0: हम इस दिन आजाद हुए थे. हमारे इंडिया को इस दिन आजादी मिली थी अंग्रेजों से. मेरे स्कूल में भी बताए जाते हैं और मेरी मम्मा भी बताती है कि काफी तकलीफों से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आजादी दिलवाई है. तो हमें इस आजादी को सुरक्षित रखना है. आजादी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है.

0: डे पे काफी स्कूल्स में फ्लैग होस्ट होती है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन जो मार्केट में फ्लैग मिलते हैं और जो कभी कभार हमें सड़कों पे गिरे हुए दिखते हैं, ये अपमान होता है हमारे फ्लैग का, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम पलक शर्मा है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। अभी आप सबको पता है कि स्वतंत्रता दिवस का त्योहार बहुत ही नजदीक है, सभी लोग इसकी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, उनके बलिदानों की वजह से ही आज हम स्वतंत्र हैं। महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन की वजह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को खूब मदद मिली और 200 साल के लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। स्वतंत्रता के लिए किए गए कड़े संघर्ष ने ब्रिटिश सरकार को जड़ से मिटा दिया, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म, वर्ग, जाति या संस्कृति या परंपरा का हो, देश के आगे उसके लिए कुछ नहीं। यहाँ तक कि अरुणा, आसिफ अली, एनी बीसेंट, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं ने भी चूल्हा चौका छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे स्कूल में 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है। इस खास दिन पर हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु गांधी जी, स्वतंत्रता संग्राम में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए याद करते हैं। इन सब बलिदानों के कारण हमें जो यह आज़ादी मिली है, हमें इसका पूरी तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें इस आज़ादी का सम्मान करना चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए और अपने स्वतंत्रता के महत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए और इसे दिलोजान से संजो कर रखना चाहिए।

0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते बेटा, तुम अपना नाम बताओ।
0: मेरा नाम हाइफा खान है।
1: अच्छा हाइफा, ये बताओ तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो?
0: मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष देशभक्ति से ओतप्रोत कुछ प्रेरक कविताएं तथा हमारी महान राष्ट्रीय नेताओं के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको देशभक्ति कविता सुनाना चाहूँगी। यह धरती वीरों की धरती, यह भारत की शान है, इसकी रक्षा में जीवन देना हर भारतवासी का मान है। तिरंगे की आन रहे ऊंची, यही हमारा अभिमान है। देश पुकारे जब भी हमको, जीवन तक बलिदान है। ना झुकने देंगे भारत को, ना टूट देगा विश्वास कभी। एकता साहस और परिश्रम से बढ़ता रहेगा देश सभी। अब मैं आपको हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। यह प्रसंग भगत सिंह पर है। 23 वर्ष की आयु में जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, तब भी वे बिल्कुल शांत रहे। फांसी से कुछ समय पहले वे पुस्तक पढ़ रहे थे। जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो उन्होंने कहा, जरा ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। पुस्तक बंद करके वे मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़े और एक वाल जिंदाबाद के नारे लगाए। उनका साहस आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। अब मैं आपको APJ अब्दुल कलाम का प्रेरक प्रसंग सुनाऊंगी। एक बार किसी कार्यक्रम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पूछा गया कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। उन्होंने कहा, सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनका जीवन सादगी, मेहनत और निरंतर सीखते रहने का उदाहरण है। उन्होंने युवाओं को हमेशा बड़े लक्ष्य रखने और उन्हें ईमानदारी से पूरा करने की प्रेरणा दी। इसी संदेश के साथ आइए हम सभी अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को सदैव स्मरण रखें तथा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हुए राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें। जय हिंद, वंदे मातरम।
2: दोस्तों, मैं साविका अनंगो और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आने वाले राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चंद्र पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। जिस देश में है गंगा बहती, पावन पुनीत है सारा परिवेश, अनुपम संस्कृति सद्विचार फैलाता, देता मानवता संदेश, ये प्यारा भारत देश, ये प्यारा भारत देश। दोस्तों, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे पावन भूमि पर रहती हूँ जहाँ की सभ्यता संस्कृति सारी दुनिया के सामने एक मिसाल है। और यह तो आपको पता ही है दोस्तों, हमारा देश त्योहारों का देश है और स्वतंत्रता दिवस का एक अपना ही महत्व है। 15 अगस्त अपने राष्ट्र का पुनीत पर्व है। यह एक महिमामय तिथि है। इस दिन हम स्वतंत्र हुए और यह स्वतंत्रता अक्षुण बनी रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि दोस्तों हम अपनी आजादी के मायने को समझें। आजादी का सही अर्थ है नागरिक धर्म का पालन करते हुए इस तरह विकास करना कि किसी को नुकसान न पहुंचे। आजादी पा लेना ही काफी नहीं है दोस्तों, उसे बरकरार रखना भी बड़ी चुनौती है। आजादी महज एक जश्न नहीं है, जिम्मेदारी और चुनौती भी है। हम सभी को यह प्रण करना है कि इस आने वाले पर्व को अत्यधिक उल्लास के साथ

0: मनाएंगे और आजादी की अक्षुण्णता के लिए यह आवश्यक होगा कि हम पारस्परिक भेदभाव को छोड़कर सहयोग और एकता में विश्वास करें।
1: दीदी बहुत सारी बातें हो गई है, क्यों ना अब एक देशभक्ति का गीत सुनिया जाए।
2: चलो मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बच्चों, इस दिन की याद आते ही हमारा मन उन सभी शहीदों के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भर उठता है जिन्होंने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो बच्चों, अब यह हम सबका भी कर्तव्य है कि हम अपने स्वतंत्र भारत के विकास के लिए सतत कार्यरत रहें, देश की प्रगति में सहयोग दें। हमें सदैव अच्छा कार्य करना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। जितने हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, उतने ही कर्तव्यों के प्रति भी रहें, तभी देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा।

0: बच्चों आज हमारे साथ थे बहुत ही होनहार बच्चे, इनसे की गई हमारी मजेदार रोचक और ज्ञानवर्धक बातचीत आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। अगले रविवार ऐसे ही प्यारे बच्चों से करेंगे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए अपनी प्रीति दीदी को दे अनुमति। नमस्ते, जय हिंद,
1: जय हिंद,
2: बाय बाय,
3: बाय बाय।
4: कल के सितारे बच्चे हमारे, कल के सितारे बच्चे हमारे।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे।
6: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
7: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
8: आकाशवाणी इंदौर।
7: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
9: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
10: क्या?
9: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
10: वो कैसे?
9: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
10: पर सुनेंगे कैसे?
9: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
10: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
5: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं भाई राम रणसोरे और साथी के गाए निमाड़ी लोकगीत।

ये थे भाई राम रणसोरे और साथी के गाए निमाड़ी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र नागले की गाई कुछ रचनाएं।

0: सुगम संगीत में आप सुन रहे थे राजेंद्र नागले की गाई गजल।
1: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
2: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, कलाकार राजेंद्र नागले, इनकी गाई गजल अब आपको सुनवा रहे हैं।

सुगम संगीत में आप सुन रहे थे राजेंद्र नागले की गाई गजलें। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं विदुषी जयश्री पाटकर का गाया राग तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे विदुषी जयश्री पाटकर का गाया राग तोड़ी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है, अब सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। शिवपुरी जिले में स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1 से 15 अगस्त तक विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े की थीम स्वनिधि से समृद्धि आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश की ओर रखी गई है। इसी क्रम में बीते दिनों शिवपुरी के शहरी आजीविका मिशन कार्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान नए आवेदन लिए गए और लंबित तथा पहले से अस्वीकृत प्रकरणों का निराकरण किया गया। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिक किसानों को जोड़ने और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ चलाए जा रहे हैं। बीते दिनों पोहरी तहसील में एसडीएम जेपी

0: गुप्ता ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन विकासखंड पोहरी की ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों में भ्रमण कर किसानों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा और फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं जन समस्या निवारण की अगर बात की जाए तो शिवपुरी जिले के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासकीय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीते 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को जिले के विभिन्न विकास खंडों और तहसीलों में प्रशासनिक टीम सीधे जनता के बीच पहुंचकर जन संवाद शिविर आयोजित कर रही है। इन शिविरों में आम नागरिकों की शिकायतों को सुना जा रहा है और निराकरण किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत खनिया धाना शिविर में उद्यम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्थानीय उद्यमियों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना। वहीं नशा मुक्त युवा भारत अभियान की बात करें तो इस अभियान के तहत शिवपुरी के श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम में बीते दिनों सांस्कृतिक व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विद्यार्थियों ने लोक संगीत, समूह नृत्य, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद, चित्रकला और रील मेकिंग जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस मौके पर सभी ने नशा मुक्त भारत के लिए हस्ताक्षर किए और शपथ ली। वहीं नशे को खत्म करने और इसे रोकने के लिए कृतसंकल्पित शिवपुरी जिला पुलिस ने भी बीते दिनों नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पिछोर में स्कूली बच्चों और युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई गई। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रशांत शर्मा ने विभिन्न स्कूलों में जाकर युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। 7 प्रमुख शिक्षण संस्थानों में करीब 5,000 से अधिक छात्र छात्राओं व शिक्षकों को नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई गई। शिवपुरी जिले में पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत स्थानीय अमले द्वारा पशुपालकों को नियमित टीकाकरण, बीमारियों से बचाव, पशु हानि से बचाव, कृत्रिम गर्भाधान के लाभ और सॉर्टेड सीमेन योजना की जानकारी दी जा रही है। शिवपुरी जिले में बीते दिनों केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय भोपाल द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में सेवा सुशासन के 12 वर्ष, विकसित भारत एट 2047 और वीबीजी रामजी तथा कारगिल विजय दिवस के विषयों पर चित्र प्रदर्शित किए गए। इनके माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकसित भारत के संकल्प और भारतीय सेना के शौर्य एवं बलिदान को दर्शाया गया। जागरूकता कार्यक्रम का समापन विभिन्न प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। शिवपुरी जिले के कोलारस में ग्वालियर संभागायुक्त मनोज खत्री ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जिले में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जिले के कोलारस और पिछोर विकास खंड को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और मूलभूत बुनियादी ढांचे के स्तर को ऊपर उठाना है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण बीते दिनों किया, जिसमें शिवपुरी रेलवे स्टेशन भी शामिल है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस स्टेशन का लोकार्पण किया। लगभग 20 करोड़ रूपये की लागत से कायाकल्प किए गए स्टेशन से यात्रियों को अब नया और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े और उन्होंने क्षेत्रवासियों को इसकी बधाई दी। इस कार्यक्रम में शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव, कलेक्टर अर्पित वर्मा सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। शिवपुरी जिले में 14 जुलाई से दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई है। ये अभियान 31 अगस्त तक संचालित किया जा रहा है। वहीं शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बीते दिनों शासकीय कृषि प्रक्षेत्र रनौद स्थित बीज प्रक्रिया केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां बीजों की साफ सफाई, ग्रेडिंग और भंडारण की प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को मिलने वाले बीजों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। शिवपुरी जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: शिवपुरी जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था रंजीत गुप्ता का और वाचन किया था अभिषेक कटियार ने। ये आकाशवाणी है,
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।
2: कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर आपको बता देते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और हमारा दूसरा नंबर 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो हमसे जुड़िए और अपनी पसंद के गीत सुनिए कार्यक्रम MH हॉटलाइन में। आइए जुड़ते हैं पहले श्रोता से। हेलो हेलो
4: नमस्ते मैडम।
2: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
4: हसीना भी मंसूरी बोल रही।

0: का इंदौर से।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में
0: जी। कैसे आप?
1: बस बढ़िया है हम। आप कैसे हैं?
0: बढ़िया ही रहना चाहिए। अपने पुराने दोस्ती से ही चलते रहे हमेशा, जिंदगी भर।
1: जिंदगी भर दोस्ती चलती रहे, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा बताएं आज कौन सा गीत सुनेंगे?
0: फिल्म का नाम है जाग उठा इंसान और गाने के बोल हैं, आई पर्वतों से झूमती घटा मैं नाचू तू बंसी बजा। ये सुना दीजिए।
1: वाह, बड़ी मीठी आवाज में आपने गीत गाया और ये गीत भी बहुत मीठा है।
0: जी,
1: आपकी पसंद वैसे लाजवाब होती है हमेशा से ही, और हाँ, जो भी गीत पसंद करते हो आप सच में बहुत अच्छे होते हैं।
0: ये गाना बहुत कम बजा मैडम।
1: हाँ, कम बजता,
0: बारिश में बहुत कम बजता, मगर है बारिश का ही।
1: बारिश का है, इतने सारे गीत हैं बारिश के, पर
0: बारिश बहुत रूठी हुई मैडम, आई नहीं रही,
1: बहुत रूठी है। हाँ, पता नहीं क्या होगा, सही कहा।
0: मगर ये वादों बचा, इसमें अगर आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: गिरेगा बादों में ऐसा, मतलब
0: हाँ, तो कर रहे हैं हम जब भी। हाँ, सोचते ना पहले बारिश को ही देखते कि बारिश हो रही क्या बाहर।
1: हाँ चलिए,
0: सबके लिए दुआ करना चाहिए मैडम।
1: हाँ, इस गीत के माध्यम से आपकी दुआ और इसी गीत के माध्यम से हमारी भी दुआ है कि ये बारिश हो, है ना। सुनते हैं आप, शुक्रिया। आपकी पसंद का गीत लीजिए, सुनिए।

0: हेलो हेलो, MH हॉटलाइन।
1: हेलो जी, नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अग्रवाल जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है जी।
0: बढ़िया है। कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: फिल्म का नाम रहेगा मन।
0: जी, कौन सा गीत?
1: टाइटल सॉन्ग जी,
0: टाइटल सॉन्ग सुनना है।
1: चार लाने बोलना चाहूंगा अगर आप याद दें तो
0: बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, हम आपसे बात करने के लिए जुड़े हैं। बिल्कुल बात
1: जी।
0: करिए, कहिए।
1: क्या पता कल धूप निकले, ये प्यारी बरसात ना रहे, कौन जाने कल को मेरे आज जैसे हालात ना रहें। आज सस्ता हूं तो खरीद लो मुझे, क्या पता कल तुम्हारी औकात ना रहे मुझे खरीदने की।
0: आप खुद लिखते हैं शायद?
1: नहीं, मैं नहीं लिखता हूँ,
0: लिखते नहीं हैं।
1: कहीं से भी मिल जाता है
0: अच्छा,
1: तो
0: कहीं से
1: बैठ
0: मिलता है, अच्छी
1: बैठ लेता
0: लाइनें,
1: हूँ
0: अच्छी चीज़ आपको जो पसंद आती है आप उसको।
1: जी।
0: जी, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ के हैं?
1: श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश जी।
0: महोबा, उत्तर प्रदेश से। कैसा है अभी माहौल वहाँ, बारिश का
1: ठीक है, अभी
0: मौसम?
1: 2-3 दिन बारिश हुई थी, अब खुल गया है कल से। हाँ,
0: अच्छा, ठीक ठाक हुई बारिश उधर?
1: काम चलाव हो गई ठीक ठाक
0: खेतों को पानी मिल गया है ना?
1: जी।
0: बस
1: फसल
0: उतर,
1: खराब हो रही थी मूंगफली वगैरह की, वो जिंदा हो गई फिर
0: हाँ, पर इस बार बारिश कम है ऐसा सुनने में आया है।
1: कम
0: अब देखें,
1: जी,
0: 1 महीना बचा है अभी बारिश का, हो
1: कम तो
0: सकता है।
1: निश्चित है। अभी
0: हाँ हाँ
1: तेज बरसा ही नहीं है, एक ही बार तो
0: हाँ
1: अच्छा तेज
0: तेज नहीं।
1: बरस गया
0: हाँ सही कहा। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात हुई। सुनवाते हैं आपके
1: जी।
0: पसंद का गीत मन फिल्म का, सुनिए।
1: धन्यवाद मैम
0: धन्यवाद।
1: समझाने के लिए। आपका दिन शुभ हो।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: हेलो एमएच हॉटलाइन।
4: हेलो एमएच हॉटलाइन।
3: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
4: नमस्कार दीदी, मैं भूले सिंह यादव बोल रहा हूँ, ग्राम बागचा जिला अगरमालवा से।
3: जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: ये बागचा गांव है दीदी, यहाँ आगर जिले में।
3: आगर जिले में, अच्छा अच्छा। अभी कहाँ हैं आप? शायद बाहर हैं घर के?
4: नहीं, हाँ बाहर हूँ दीदी, अभी यहाँ पे कुवैत की तरफ हूँ मैं।
3: अच्छा अच्छा, बारिश हो रही है?
4: बारिश नहीं हो रही दीदी, ऐसा मौसम हो रहा है लेकिन पानी आने तो नहीं गिर रहा, बिल्कुल नहीं गिरा अभी तक। पहले गिरा था वो 10-12 दिन पहले।
3: सही कहा। कौन सा गीत सुनेंगे आज
4: दीदी? गाना सुनवा दो आज, सोतन फिल्म का।
3: कौन सी फिल्म?
4: सोतन, सोतन जिंदगी प्यार का गीत है।
3: सोतन फिल्म का?
4: हाँ हाँ
3: बिल्कुल। और बताएं?
4: और दीदी कुछ भी नहीं, यहाँ तो ये बच्चा डैम बनने वाला है अभी।
3: जी
4: तो काम रुका हुआ है इसका, दीपावली पे चल जाएगा काम, आधा काम हो चुका है।
3: जी जी,
4: तो इस डैम की चपेट में बहुत सारे किसान आ चुके हैं दीदी, हम भी आए हैं इसमें।
3: जी
4: हाँ,
3: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
4: दीदी हम सूचना दे सकते हैं जरा सी?
3: बिल्कुल दीजिए
4: दीदी। वो क्या है कि अभी 14 अगस्त को हमारी तरफ से यहाँ हमारे गांव में भंडारे का आयोजन रखा गया है।
3: जी जी,
4: तो कोई भी श्रोता, सभी श्रोता जो सुन रहे हैं वो आना चाहे तो आ सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे।
3: अच्छा, ये
4: आप भी आओ दीदी, आप भी आओ, अभी 14 अगस्त को बहुत बड़ा आयोजन रखा गया है।
3: नहीं तो ये किस उपलक्ष्य में है भंडारा?
4: ये भारत की जो दूज होती है रामदेव बाबा की।
3: अच्छा अच्छा अच्छा,
4: इस उपलक्ष्य में भी है और रात को भजन संध्या भी रहेगी। तो हमारे जो श्रोता भाई, कोई गाने वाला है, कोई कैसा भी हो, तो कोई भी आके अपनी प्रस्तुति दे सकता है इसमें, मतलब।
3: बिल्कुल बिल्कुल, अभी सारे श्रोता सुन ही रहे हैं आपकी बात को, तो जरूर वो शामिल होंगे उसमें, है ना?
4: बिल्कुल बिल्कुल दीदी।
3: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत सौतन फिल्म का।
4: आओ, आओ।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: एमएच हॉटलाइन, पद्मश्री जी नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम से बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी शुक्रिया शुक्रिया।
0: हाँ, आज कौन सा गीत सुनेंगे? आपकी पसंद बहुत लाजवाब होती है।
1: जी जी, राजा जानी फिल्म का गीत है, लता जी के आवाज में, आजा कुछ कह जा कुछ सुन जा।
0: जी, आप गुनगुनाते भी हैं गाना?
1: नहीं नहीं, गुनगुनाता नहीं, मेरी
0: आवाज अच्छी नहीं है।
1: नहीं, सारा थोड़ा सा वो गुनगुनाना बहुत शौक है।
0: हाँ, नहीं नहीं, ऐसा होता है ना कि जो गाने बहुत सुनते हैं या रेडियो बहुत सुनते हैं, उनको थोड़ा बहुत गाना गाना आता है, ऐसा हम समझते हैं।
1: मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गाऊं।
0: अच्छा अच्छा, और कैसा चल रहा है अभी?
1: बस अपनी फ्लोर मिल रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, काम चल रहा है, साथ में रेडियो भी सुन रहे हैं?
1: जी, रेडियो चला गया था मोबाइल ऐप द्वारा।
0: हाँ, कितने कितने वर्षों से सुन रहे हैं आप रेडियो?
1: 35-40 साल सुन रहे, बिना का गीत माला करती है रेडियो सिलोन पर, श्रीलंका से।
0: अच्छा अच्छा, तो पुराना रेडियो भी होगा आपके पास?
1: जी, ये सब दान कर दिए, गिफ्ट कर दिए, ये जब से मोबाइल ऐप आया है।
0: हाँ हाँ
1: तो हाँ, गिफ्ट दे दिए दोस्तों को।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या है, पुराने रेडियो हो तो सही लेकिन उसकी रिपेयरिंग नहीं होती आजकल, उसकी उसके सामान नहीं मिलता रिपेयरिंग का।
1: जितना बता देते उतने में रेडियो आ जाए नया।
0: हाँ वही है, कारीगर भी नहीं मिलते ना, उस जमाने में जो कारीगर हुआ करते थे रेडियो सुधारने वाले, वो अब है ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए।
1: शुक्रिया
0: शुक्रिया, सुनिए।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन। हेलो,
1: हाँ नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता, कोटा राजस्थान से।
0: कोटा राजस्थान से बोल रहे हैं आप? कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, आप लोग कैसे हैं? दोनों बढ़िया।
0: हम लोग भी अच्छे हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश नहीं हो रही है आपके आपके
1: हल्की
0: वहां? है बारिश कोटा में?
1: फुल्की होती है, बाकी वो मजेदार मजा नहीं है।
0: जी।
1: वो चार पड़ जाती है थोड़ी बहुत, बस कभी कभी। वैसा
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: आरजू, पुरानी आरजू,
0: पुरानी आरजू का गीत सुनेंगे आप? गीत के बोल बताएं।
1: कहाँ तक हम उठाए गम। लता
0: बहुत पुराना गीत है, लता मंगेशकर की आवाज में।
1: चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: जी। और बताएं।
1: हेलो, बस
0: हेलो,
1: बढ़िया।
0: बाकी सब
1: हाँ
0: बढ़िया
1: बढ़िया,
0: है?
1: बाकी सब बढ़िया है,
0: परिवार में सब
1: सब
0: खुश है?
1: सब कुछ सब बढ़िया
0: जी,
1: है।
0: तो सुनवा देते हैं
1: आप
0: आपकी
1: बोले
0: पसंद का गीत।
1: तो जगबलावा।
0: जी, सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत आरजू फिल्म का। सुनिए,
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: हाँ जी,
0: कौन बोल
1: मैं
0: रहे हैं?
1: हाँ जी, बालोदा रखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल मैडम।
0: जी, आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और आपकी फरमाइशी पत्र भी हम पढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में।
1: हाँ जी, सही
0: आज
1: बात है।
0: हाँ आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: वो फिल्म बजरंगी भाईजान का।
0: जी, बजरंगी भाईजान का कौन सा गीत?
1: हाँ, वो वाला के भर दे झोली या मेरी मोहम्मद, मेरे दम पे खड़ी मैं जाऊंगा। ये वाला
0: अच्छा, वाह,
1: ये लगता है अच्छा है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है गीत। हाँ,
1: हाँ बस,
0: और कैसे हैं आप?
1: अब क्या है कि खेत में काम काज चल रहा है, सोयाबीन का निंदाई गुड़ाई चल रही है, और अब पानी का वास्तव में क्या
0: इंतजार
1: है कि
0: कर रहे हैं।
1: पानी
0: हाँ हाँ
1: इतना अभी नहीं है, इसलिए अभी खींचा खींचा पानी हो रही है और क्या।
0: नहीं, बारिश तो होगी, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में होगी बारिश।
1: अच्छा, हाँ,
0: हाँ,
1: वाह
0: चलिए, बाकी ठीक, सभी
1: ठीक,
0: खुशी
1: आनंद
0: मजे।
1: मंगल।
0: हाँ,
1: हाँ, आपका नाम क्या है मेरा?
0: पद्मश्री बोल रही हूँ, पद्मश्री।
1: अच्छा, पद्म। बहुत बढ़िया, आवाज बहुत बढ़िया।
0: हाँ, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हाँ, चलिए सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत,
1: हाँ ठीक,
0: सुनिए।
1: ओके।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: मेरे प्यारे प्यारे माँ का मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, आप कैसी हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या नाम है आपका?
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री, कितना प्यारा नाम है और आपकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है।
1: थैंक यू मैम।
0: कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम सॉन्ग का नाम है रोजा और गाने को बोले दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की बोली सी आशा। ए मैम गाने
0: वाह
1: डेडिकेट है।
0: वाह, बिल्कुल बहुत अच्छा। जितनी प्यारी आप हो ना, उतना ही प्यारा गीत आपने पसंद किया है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
1: मैम क्लास में नहीं पढ़ते, शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत सीखते हैं? ओहो, क्या बात है। तो आप
1: और
0: अच्छा गाना गाती हैं और अच्छा गाना सुनती हैं, है ना?
1: जी मैम, मुझे क्लासिकल गाने भी अच्छे लगते हैं और ये दिल है छोटा सा थोड़ा थोड़ा क्लासिकल में ही मुड़ता है ना।
0: हाँ, इस गीत को इसने गाया है, आपको पता है
1: जी क्या
0: किसने गाया है? बताओ।
1: उसका
0: मिन मिनी नाम
1: और
0: की गायिका ने गाया है ना?
1: गाना भी बहुत बढ़िया गाया है, मुझे ये गाना बहुत मैम
0: बहुत
1: पसंद है।
0: पसंद है। ओहो, क्या बात है। और कौन कौन है आपके साथ अभी? और साथ में है कोई
1: नहीं साथ में तो नहीं, पर मेरे दोस्त सुन रहे हैं अभी दो
0: दोस्त?
1: तीन
0: सुन
1: बच्चे।
0: रहे हैं? अरे वाह, आप छोटे छोटे बच्चे भी रेडियो के इतने शौकीन हैं, बहुत अच्छा लगा। आवाज छोटी है? अच्छा, आपकी आवाज छोटी है लेकिन आप छोटी नहीं हो। अच्छा, 19 साल की, लेकिन बहुत प्यारी आपकी आवाज है और बहुत छोटे बच्चे जैसी आवाज है।
1: लगता है कोई बात नहीं, पर वे सबको आपको डेडिकेट रहेगा, मेरे पापा को डेडिकेट रहेगा, भगवान शिव परमा जय राखे जय शिमला से गंगाधर सावनकर जय अविनाश जय रमेश प्रजापति प्रेम सिंह से करे इनके सबके साथ और सभी दोस्तों को लाइफ से।
0: अच्छा, आप एक छोटा सा कोई भजन तो सुना दें।
1: जी मैम जरूर सुनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कि मुझे भजन गाने का
0: बिल्कुल
1: मौका
0: बिल्कुल
1: दिया।
0: सुनाओ, आपकी प्यारी मीठी आवाज सबको पता चलेगा आप कैसे गाते हो।
1: जी

0: वाह, बहुत अच्छा गाया आपने, और इस रेडियो के माध्यम से आपकी आवाज़ सब जगह पहुंच गई है ना। तो
1: जी
0: आपको
1: जी
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम, आप ऐसी बड़ी हों, बहुत अच्छी गायिका बने, है ना।
1: और मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने गाने का मौका दिया, मुझे बहुत खुशी
0: जी
1: हुई
0: जी जी
1: मेरे
0: बहुत
1: को।
0: बहुत
1: और
0: शुक्रिया आपको भी।
1: सुबह सुबह मैंने भगवान का नाम मेरे मुंह में लिया,
0: हाँ हाँ
1: मुझे
0: हाँ
1: अच्छा लगा।
0: नहीं, आपकी दिल की मुराद पूरी हुई, आज आपका फ़ोन लगा, आपने सभी से बात की, हमसे बात की, और आपने जो बात की वो सभी श्रोताओं ने सुनी हमारे रेडियो की, है ना। चलिए सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत, बहुत प्यारा गीत है, सुनिए। धन्यवाद।
1: ओके बाय।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार।
0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: हेलो, मैं अनिल भंडारी सुजामा नगर से बोल रहा हूँ।
0: जी, नमस्कार। बहुत बहुत
1: आपने
0: स्वागत है आपका।
1: आपने आज कार्यक्रम सुना, राष्ट्रीय प्रसारण के प्रारंभ कर दिया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपको।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपने सुना,
1: वंदे मातरम का शुरुआत कर लिया आज आपने।
0: जी, आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो भी चुका है।
1: और आपने
0: और
1: कर दिया तिरंगा
0: जी
1: प्रारंभ, आज
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज मैं 1948 की फिल्म पुरानी
0: जी,
1: उसका क्या, तुम्हारे बुलाने को, जी लाडली, लाडली को
0: लाडली
1: सुनाऊंगा।
0: फिल्म का गीत
1: अनिल विश्वास का संगीत है
0: जी।
1: और इसमें कलाकार थे सबिता बनर्जी, श्याम और याकूब।
0: अच्छा,
1: और ये गीत सबिता बनर्जी, सबिता चटर्जी पे गाना फिल्माया गया। लता मंगेशकर का एक ही गाना है
0: हाँ।
1: में, लेकिन इसका गाना बचते हैं कि 7 साल बाद भी आज गाने को सुनने को अच्छा लगता है आप लोग को।
0: हाँ, नहीं, आपकी पसंद, आप बहुत पुराने गीत की फरमाइश ही करते हैं, और इसके माध्यम से, मतलब रेडियो के माध्यम से इतने पुराने गीत आप सुनवा देते हैं श्रोताओं को, तो उनको भी बड़ी खुशी होती होगी
1: और
0: कि
1: हमें पुराने गाने के शौकीन भी ज्यादा भी बहुत ताजी है मेरे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: उस जमाने में ये फिल्म बहुत चली थी, हमने देख भी थी फिल्म को,
0: ओ
1: और
0: सही,
1: 7 साल हो गए इस फिल्म को देखते हुए हमको।
0: हाँ सही
1: और
0: कहा।
1: आज भी सुंदर, बहुत मधुर गीत लगता है, ऐसा लगता है बार बार सुनने की इच्छा नहीं बढ़ती,
0: जी
1: रोज सुनो ऐसा लगता है कभी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आप सुन,
1: आपको भी गीत बहुत अच्छा लगेगा।
0: हाँ, शायद मैं
1: हाँ
0: तो पहली बार ही सुनूंगी ये गीत आपके माध्यम से, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि
1: बहुत
0: इतना अच्छा
1: बहुत
0: गीत आप
1: धन्यवाद
0: सुनवा
1: आपको,
0: रहे हैं सभी को, है ना?
1: बहुत धन्यवाद
0: जी
1: आपको।
0: जी
1: ये गाना खास हमारे फैमिली को पसंद है।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल।
1: धन्यवाद है ना।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: मैडम नमस्कार। गुमास्ता नगर सीट नंबर 71 इंदौर से अनिल कौशल्य बात कर रहे हैं।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कौन सा गीत
1: आज
0: सुनेंगे बताएं?
1: हमको पिया मिलन फिल्म का गीत सुनवा दीजिए। सचिन और साधना पर फिल्माया गया है।
0: अच्छा
1: जसपाल और हेमलता की आवाजों में यह गीत है।
0: जी जी जी
1: गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरी।
0: हाँ, रत्नेश सिंह की आवाज है इसमें।
1: हाँ,
0: रत्नेश सिंह की आवाज है।
1: आवाज बराबर है।
0: जी
1: वो गायिका क्या बहुत कम है ना, तो उसकी आवाज एकदम समझ में नहीं आती। हम
0: हाँ,
1: लगते की आवाज सबको समझ में आ जाती है।
0: दिलराज कौर भी है इसमें और
1: हाँ,
0: रत्नेश
1: बहुत अच्छा।
0: सिंह। हाँ, मिला जुला गीत है गाई।
1: हाँ, मिला जुला गीत है।
0: जी
1: तीन चार गायिकाओं की आवाज है।
0: जी जी जी जी आपकी भी पसंद बड़ी अलग टाइप की होती है। और हाँ
1: तो सबको सुनने में मजा आता
0: जी, नहीं ऐसे ही गीत पसंद किए करना चाहिए जो मतलब अलग तरह के हों, और वो गीत जो कभी सुने नहीं हो किसी ने, तो सुनते हैं तो अच्छा लगता है।
1: और जैसे रविवार के दिन का छुट्टी का दिन होता है तो घर में सब सदस्य भी घर तो होते हैं, तो उनका
0: जी
1: भी रखना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: हाँ हाँ आपके परिवार में कितने सदस्य हैं आप लोग?
1: मैं हूँ, मिसेस और बेटा है।
0: अच्छा, चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, है ना? हम भी सुनते हैं, आपकी पसंद तो अच्छी होती है। चलिए सुनते हैं सब मिल गए। धन्यवाद।
1: हाँ।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: ऐसी माटी न भारत की, खंड खंड में जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। मैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से, यानी महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले के मनकारी गांव से मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जो बोल बोले शुरुआत में, बहुत ही अच्छे लगे हमको। और
1: ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में।
0: जी, छतरपुर के रहवासी हैं आप।
1: जी, बिल्कुल, खजुराहो का हूँ।
0: खजुराहो के। और कैसे हैं आप, क्या चल रहा है अभी?
1: बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। और हमारे यहाँ छतरपुर जिले में बरसात हो रही है, बिल्कुल धीमी धीमी बारिश हो रही है और बड़ा प्यारा मौसम है। और मेरा फोन भी लग गया तो और भी खुशी हो गई। आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी।
0: जी, हाँ, वही मैंने कहा कि आपसे मेरी पहली बात हो रही है, पहली बार बात कर
1: जी
0: रहे हैं आपसे। अच्छा, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: बिल्कुल, देखिए मौसम सुहाना है और मौसम के हिसाब से ही गीत सुनना है। बहुत प्यारा गीत है, फिल्म
0: जी, कौन सा गीत?
1: का नाम है अनोखा अंदाज,
0: जी
1: और गीत की बोल है कि दिल तोड़ के मत जाइयो बरसात का मौसम है।
0: जी, फिल्में देखते हैं आप?
1: जी, मैं बहुत फिल्म देखने का मैं बहुत शौकीन हूँ।
0: और रेडियो कितने साल से सुन रहे हैं?
1: रेडियो तो मैं लगभग लगभग मुझे 25-30 साल हो गए सुनते सुनते।
0: जी
1: और हमारा जो आकाशवाणी छतरपुर है, मैं छतरपुर भोपाल लखनऊ
0: जी
1: से बहुत
0: इन
1: अच्छा लगने लगा।
0: हाँ, इन इन केंद्रों के कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं और आप सुनते हैं उनके?
1: जी, अब छतरपुर तो हमारे पास ही।
0: हाँ, बिल्कुल
1: और हमारे कुछ मित्र हैं तो,
0: जी, बिल्कुल, नाम ले लीजिए उनका।
1: जी हमारे मित्र हैं, राजू यादव जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, दिनकर सिंह जी हैं चित्तकोट धाम से,
0: जी
1: और जितने श्रोता सुन रहे हैं, पूनम जी, बहन हमारी पूनम है कानपुर से, और भी जितने, और आपको भी डेडिकेट रहेगा, और जितने हमारी माताएं बहनें सुन रही हैं सभी को डेडिकेट रहेगा ये गीत।
0: जी, चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत,
1: बहुत बहुत
0: अनोखा
1: धन्यवाद,
0: अंदाज फिल्म का गीत है
1: बहुत
0: ये।
1: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, सुनते हैं।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: इस गीत के साथ ही MH हॉटलाइन कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए पद्मश्री तपस्वी को। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम MH हॉटलाइन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 11 बजे हैं। आप सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: फोन इन कार्यक्रम फोन करेंगी सुने में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। श्रोता, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंदीदा गाने और होती हैं आपसे ढेर सारी बातें। हम आपको अपने फ़ोन नंबर्स बता दें, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर रोज़ सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच और इसका प्रसारण होता है दूसरे दिन 11 बजे। तो आप यूं ही हमसे जुड़े रहिए और खुश रहिए और आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण यूं ही सुनते रहिए।
2: जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते, आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
2: जी आ रही है मैम।
1: कौन बोल रहे हैं?
2: जी मैं सोनिया बात कर रही हूँ।
1: सोनिया कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मंदसौर से।
1: मंदसौर से, कैसी हैं सोनिया जी?
2: हम बहुत अच्छे हैं मैम, और आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ। बताइए कौन सा गीत सुनेंगी?
2: आज मूवी का नाम है जहर।
1: जहर, जहर का कौन सा गीत?
2: सॉन्ग है अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं अनुराधा बोल रही हूँ, आप कैसे हो?

0: हम बहुत अच्छे।
1: चलिए अच्छी बात है। अब हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत और यूं ही आप गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: परम आदरणीय दीदी, आपको हृदय से धन्यवाद करते हुए प्यार है। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं? मौसम कैसा है आपके भोपाल में?
0: बहुत अच्छा है, आप कैसे हैं आप बताइए।
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा से, घर परिवार में सब लोग आनंद से हैं। रेडियो सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम जुड़े रहते हैं। पहले मैं रीवा में रहा करता था, अब मथुरा में निवास कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, चलिए आप यूं ही खुश रहें और आकाशवाणी मध्य प्रदेश का आनंद लेते रहें। और आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: दीदी बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक गीत है, किशोर कुमार साहब ने गीत गाया है
0: जी।
1: फिल्म का नाम है तपस्या।
0: तपस्या।
1: और गीत के बोल हैं, जो राह चुनी तूने उसी राह तेरा ही बढ़ते जाना रे। बहुत ही सुंदर प्यारा गीत है
0: और आप गाते भी बहुत अच्छे हैं। और इसी तरह गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। हृदय धन्यवाद आपका।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बोल रहा हूँ सागर से, मध्य प्रदेश से, पंडित शिवनारायण तिवारी।
0: तिवारी जी, कैसे हैं
1: बढ़िया है, अच्छी बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है,
0: आप? कैसा मौसम है वहां पर?
1: बहुत बढ़िया मौसम, बहुत बढ़िया है। हो रही बारिश 2 दिन से लगातार हो रही है, अब आज भी होगी 1-2 बजे दिन को।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों बाद बारिश का मौसम ऐसा झड़ी लगी है जो मन को खुश कर देती है।
1: बिल्कुल है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम
0: क्या करते हैं आप?
1: पंडिताई करते हैं मैम।
0: अच्छा, तो आज आप कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज बारिश के अनुसार यलगार फिल्म का सुनवाना, संजय दत्त वाली, बारिश
0: जी,
1: का बहाना, आखिर तुम्हें आना है।
0: घर में सब ठीक ठाक है?
1: हाँ, सब लोग ठीक ठाक हैं। ये डेडिकेट करेगा नंदिनी तिवारी को और देवास श्री रानू गुप्ता को,
0: चलिए सुनिए
1: और
0: अपनी
1: आपके
0: पसंद।
1: लिए।
0: जी, धन्यवाद।
1: आप कौन?
0: मैं अनुराधा बोल रही हूँ।
1: थैंक यू मैम।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

0: फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं आपका नीमे सुधा बात कर रहा हूँ, जिला रायसेन खापरखेड़ा तीन बगुआ से तुलसीराम साहब।
0: जी तुलसीराम जी, कैसे हैं
1: भाई जी? बढ़िया। आकाश पढ़ी जबलपुर कार्यक्रम सुबह थे अभी हम सारंगा।
0: जी जी,
1: तो एक हाथ से आज हम मोबाइल लगाए थे और एक हाथ से मतलब रेडियो बजा रहे थे।
0: जी जी।
1: और जो मुझको याद आया, आज बहुत दिन हो गए भोपाल कार्यक्रम में जरूर फोन लगाऊंगा।
0: अच्छा अच्छा, यहाँ पे भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है और आशा करते हैं कि बारिश यूं ही होती रहे और पानी की कमी ना हो हमें, है ना?
1: जी नहीं, पिछले साल से तो वर्षा जी बहुत कम हो रही है।
0: जी जी,
1: क्योंकि हमारी ये फसल के लिए तो मतलब लाभदायक वर्षा हो रही, फरे भी वर्षा हो रही है, लेकिन अगर मतलब मध्य वर्षा होगी तो अगले साल के लिए वाटर लेवल हमारे कम जाएंगे नलकूप।
0: बिल्कुल। तो बताएं, आज का गीत आप कौन पसंद करके लाए हैं?
1: आप कौन जी बोल रहे हैं?
0: मैं अनुराधा बोल रही हूँ।
1: अनुराधा जी नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: आज जी मैंने शायद बेटा फिल्म का गीत है ये
0: जी,
1: सजना मैं तेरी तू मेरा दुनिया से कुछ लेना, शायद
0: अच्छा।
1: कुमार सानू जी की आवाज है।
0: अच्छा,
1: और नदीम श्रवण जी का संगीत शायद।
0: चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।
1: और ये आप सभी को, हमारे सभी मित्रों को बरसात होते हुए सबको नमस्कार।

0: फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो,
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: आरती चौहान
0: जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताएं अपने बारे में। हेलो,
1: आरती तिवारी।
0: आरती तिवारी कहाँ से बोल रही हैं आरती?
1: बांदरी से।
0: कहाँ से?
1: बांदरी से।
0: अच्छा, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: मुस्कान फिल्म को।
0: मुस्कान फिल्म का कौन सा गीत? हेलो, हाँ आरती बोलिए, कौन सा पसंद किया है गीत आपने?
1: जाने मन चुपके चुपके।
0: हाँ जी,
1: जाने मन चुपके चुपके।
0: जाने मन चुपके चुपके, क्या करती हैं आरती?
1: खाना बना रहे।
0: अच्छा, खाना बना रहे हैं, क्या बना रही हैं खाने में?
1: सब्जी, आलू टमाटर।
0: चलिए आरती जी, हम आपको सुनवाएंगे आपका पसंद का गीत। आपने फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जाने मन चुपके चुपके, सारी दुनिया से चुपके, तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: करेंगी सुने।
1: जी जी फोन करेंगी सुने, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि हमसे कौन बात कर रहा है।
0: जी मैम, मैं नई गई सिलोड़ी से, परमलाल साहू बोल रहा हूँ मैं।
1: साहू जी
0: जी
1: कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
0: फिल्म सुना दीजिए हेरा फेरी का।
1: अच्छा,
0: तकदीर
1: तकदीर
0: तकदीर टाइटल सॉन्ग मैम।
1: अच्छा, गाना भूल गए आप?
0: जी जी जी बहुत खुशी हो रही है, मैं पहली बार कॉल लगाया है।
1: अरे वाह, स्वागत है आपका एक बार फिर। और आपने फ़ोन लगाया, आपको पहली बार लगा, और देखिए ना आपको कितनी खुशी हो रही होगी आज, है ना?
0: जी जी बहुत खुशी हो रही है मैम।
1: कैसे हैं आप, कहाँ पर रहते हैं?
0: जी मैम, ये कटनी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जबलपुर के पास में है।
1: अच्छा,
0: नेगई सिरोड़ी एक छोटा सा गाँव है मैम।
1: अच्छा, तो कैसा मौसम है वहाँ का?
0: मौसम बादल छाए हुए मैम, पानी नहीं गिर रहा है।
1: पानी नहीं गिर रहा है?
0: जी जी
1: जरूर गिरेगा, क्योंकि मौसम बारिश का ही है। आप इंतज़ार कीजिए और खुशियाँ मनाइए, यूं ही गुनगुनाते रहिए ये गीत। नमस्कार।
0: नमस्ते मैम, नमस्ते।

0: फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे श्रोता कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं हमसे?
1: जी, मैं जीनत परवीन बोल रही हूँ, इंदौर से।
0: इंदौर से बोल रही जीनत जी।
1: जी,
0: कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ।
0: क्या करती हैं जीनत?
1: बस हाउसवाइफ हूँ, घर के ही काम।
0: अरे, घर के काम भी बहुत कुछ होते हैं
1: जी।
0: और हाउस वाइफ नहीं होता है, हाउस को संभालने वाला जो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: फिल्म का नाम है सम्राट।
0: सम्राट
1: जी।

चलिए आपका गीत हम आपको सुनवाते हैं और आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। चलिए, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: बताएं कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अरविंद जी, कितने दिनों बाद फोन लगाया आपने?
1: हो गया काफी टाइम, याद तो नहीं है लेकिन 1 हफ्ता से तो ज्यादा हो ही गया होगा। श्रीनगर
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जिला महोबा।
0: महोबा से? क्या हाल है महोबा के?
1: ठीक है, अभी पानी बरसा है 1-2 दिन, तो पहले तो 15 दिन से बिल्कुल पानी नहीं गिर रहा था,
0: अच्छा
1: परेशान थे किसान लोग।
0: अच्छा अच्छा तो चलिए, बारिश का मौसम है और इस मौसम में आप कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी हेलो।
0: हेलो, हाँ जी बताइए।
1: जी फिल्म का नाम रहेगा दिल का रिश्ता।
0: दिल का रिश्ता,
1: जी
0: कौन सा गीत है इसका?
1: दैया दैया दैया।

फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 11:58 हुए हैं। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की चार नई सीधी हवाई सेवाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। इनमें भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता हवाई मार्ग शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने आज भारत छोड़ो आंदोलन और काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर राष्ट्रनायकों तथा अमर सेनानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज भोपाल में आयोजित तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशभर में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। अमरीका सरकार उस नियम को खत्म करने पर विचार कर रही है जिसके तहत नौकरी जाने के बाद कुछ विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत भोपाल की श्याम नगर बस्ती में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में अधिकारियों ने नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और निराकरण किया। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में आज संभावना के तहत गोंड जनजाति के गोंडी नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी और भोपाल स्थित टीटी नगर स्टेडियम में घुड़सवारी खेल के विकास एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से कल एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में देश के विभिन्न हिस्सों के विशेषज्ञ एवं खिलाड़ी शामिल हुए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दोपहर के 12 बजे हैं और अब हम पेश कर रहे हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।

कार्यक्रम का ये पहला नगमा हमने लिया था फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया था। ओपी नैयर की धुन थी और बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के। सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे ये सभी दोस्त। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, अस्मा, सालिया, साइमा और मुस्तफ़ा खान, साथ में हैं रहूब भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग आकोला से इसी गीत को सुनना चाहा था रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। घंटाघर चौक खंडवा से ये चिट्ठी आई थी संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनवाने के लिए फरमाइश लिख भेजी थी दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया हुआ यह गीत। फरमाइशी नाम गीत के बाद।

इस गीत को सुनवाने के लिए फरमाइश लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता मुस्कान और जीतेंद्र धर्मेंद्र मालाकार ने। कवर कॉलोनी बड़वाह से अगली चिट्ठी आई है प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की। अगला खत आया है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, डुमगांव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम और दानिश अंसारी की। सारिमपुर बक्सर से ये खत लिख भेजा है हमारे इन दोस्तों ने, राजेश डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे हमने लिया है अब्दुल्ला फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है राहुल देव बर्मन की धुन, बोल आनंद बख्शी के।

इसी गीत को सुनवाने के लिए अपनी फरमाइश लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने, ग्राम पंचायत बैठना से बलकर्ण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा और धनीश्वरी वर्मा ने। सारा गांव से सुजन वर्मा, सौहाद्रा वर्मा और आयुषी साथ में हैं, कृत वर्मा। अगली चिट्ठी है ये सनावत से, राजकुमार बडौना, रानू लक्ष्मी, यश कुमार बडौना की। और ये अगला ख़त हमें लिख भेजा है हमारे इन सभी दोस्तों ने, पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की। और कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश जो है तीन देवियां फिल्म से, गायक है मोहम्मद रफ़ी। इसे सुनवाना चाहा है हमारे इन सभी दोस्तों ने, बसंत जी हजारे और प्रमोद हजारे ने। इन्होंने चिट्ठी लिख भेजी है महाराष्ट्र से, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप और अनिल शर्मा ने। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी मनवर ने इस गीत को सुनना चाहा है।

आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है तीन देवियाँ। इस गीत को शब्दों से सजाया है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत तैयार किया है सचिन देव बर्मन ने।

0: पारस मणि फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर इस गीत को शब्द दिए हैं असद भोपाली ने, और सुनना चाहा है हमारे इन सभी दोस्तों ने लेक सिटी उदयपुर से रमेश चंद्र माली, जब्बार मोहम्मद, नरेश दवे, नजीब खान, मंजू निम्मी और अशरफ खान ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर आपने सुना आपकी फरमाइश का ये आखिरी नगमा। अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: अरे मौसा जी, जल्दी चलो, अरे गाड़ी आ गई है, अरे शादी में चलना है ना?
5: अरे मैं नहीं जाता कहीं शादी में, मैं तो सुन रहा हूँ मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। तुम जाओ शादी में जाना हो तो।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं,
2: और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी
3: इंदौर।
0: अरे दीदी धीरे धीरे।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: पानी की हर बूंद है अनमोल,
1: बहने ना दें इसे बेमोल।
0: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
1: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 12:30 हुए हैं। ये समय है संग्रहालय से कार्यक्रम का। इसमें अब हम आपको सुनवा रहे हैं कामिनी काय कांतारे की 25वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 25वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा शब्द के अर्थ को प्रकट या प्रकाशित होने के रहस्य को जान गए हैं और ये शिक्षा उन्हें विदुषी वेश्या हीरा ने दी है। राजा उज्जैनी वापस आ गए हैं। वे महालय न जाकर महाकाल के समक्ष नत हैं। अब आगे

अवंती की ओर चल पड़े राजा भर्तृहरि। नगर प्रवेश के लिए उन्होंने महावन का मार्ग चुना। यह अपेक्षाकृत निर्जन मार्ग है, साधु संन्यासी ही उधर से आते जाते हैं। वन में 84 शिवलिंग और अष्ट भैरव का वास है, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 6 गणेश हैं, 24 देवियां भैरवियां हैं। अतः यहां न तो कोई वेश पर ध्यान देता है और न रूप पर। लोक श्रुति के अनुसार महावन में देव देवियां मानवस्य में विचरण करते रहते हैं, अतः कोई किसी को टोकता नहीं।

0: क्षिप्रा पर पहुंच भर्तृहरि ने देर तक स्नान किया। उसके पश्चात मंदिर में महाकाल के सामने नेत्र बंद कर नतशिर खड़े हो गए। ज्योतिर्लिंग पर दृष्टि पड़ते ही पलकें स्वयं मुंद गईं, मन शरणागत हुआ और कामना विस्मृत। पुजारी महाराज को पहचान कर कहता है, महादेवी को सूचना पहुंचाओ कि महाराज महाकाल के मंदिर में हैं।
1: स्वामिनी, महाराज के आ जाने की सूचना है, महाकाल की अर्चना में हैं वे।
2: वैसिका, वहीं पहुंचकर हम महाराज का स्वागत करेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ।
1: किंतु महादेवी,
2: तुमने सुना नहीं वैसिका, हम सोचते हैं कि महाकाल मंदिर पर ही उनका स्वागत करें, उन्हें प्रसन्नता होगी।
1: स्वामिनी, मेरे मत से आपको महाराज के यहाँ आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
2: वैसिका, हमारी कृष्टता मानकर वो रूठ जाएंगे।
1: रूठों को मनाया भी जाता है, वो अपने कक्ष में पहुंचे तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। मैं वहां से अभी परिचर परिचारिकाओं को हटा देती हूँ, महाराज किसी को भी आवाज दें, सामने आप ही पहुंचेंगी, वो जो भी मांगे आप ही प्रस्तुत करेंगी।
2: हम समझ नहीं पा रहे वैसिका।
1: इतने वर्षों से महारानी हैं आप, एक दिन दासी का दायित्व वहन कर लीजिए, संकोच न करें, महारानी हो या दासी, स्त्री ही रहेगी वो।
3: जीवक देवी वैसिका की प्रतीक्षा में है।
1: कहो बंधु, महामात्य की क्या आज्ञा है?
3: नरेश महाकाल के मंदिर में है, महामात्य वहां पहुंच रहे हैं, मुझे आपके पास ये कहने के लिए भेजा है कि महादेवी।
1: महादेवी यहीं भेंट करेंगी महाराज से।
3: किंतु महामात्य ने तो कहा है।
1: ये महारानी ने कहा है, महामात्य को बता देना, फिर उनकी जो भी आज्ञा हो।
0: महाराज के आगमन का समाचार उज्जैनी के आकाश पर बिजली के आवेग सा कौंध गया। महामात्य तो महाकाल के प्रांगण में त्वरित गति से पहुंचे ही, अन्य राज्याधिकारी आमात्य और बलाधिकृत भी वहां जुटने लगे। देखते देखते अपार जन समूह मंदिर में एकत्र हो गया। उत्सुकता, आश्चर्य, जिज्ञासा, अनिश्चय से अपने नरेश पर एक टक दृष्टि लगाए देखता हुआ जन समूह और ब्राह्मण वेशधारी भर्तृहरि अविचल, निष्कंप, ध्यानमग्न महाकाल की उपासना में लीन, एक पवित्र मौन प्रांगण में पसरा हुआ।
4: महामहिम धर्मोपाध्याय महोदय, प्रवास काल में नटराज के वाद्यनाद से उत्पन्न शब्द के रूप, प्रभाव और प्रतीत के संयोजन का प्रसाद है ये ग्रंथ, जिसे मैं महाकाल के चरणों में समर्पित करता हूं। विद्वत समाज इस पर विचार करे, इसे वाक्यपदीयम कह लीजिए अथवा जो भी विद्वत जन उचित समझे। आदरणीय महामात्य,
5: महालय की ओर पधारे महाराज, सब कहूंगा।
0: वो चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा थी। विद्वत सभा से रात के तीसरे पहर में लौटकर भर्तृहरि कोई सूत्र गुनगुना रहे थे। चंपा वस्त्र बदलने में उनकी सहायता कर रही थी।
4: महादेवी कहाँ हैं चंपा?
6: अपने कक्ष में स्वामी की प्रतीक्षा कर रही हैं।
4: चंपा
6: जी,
4: तुमने कभी कुछ मांगा नहीं हमसे। चंपा, हम कुछ पूछ रहे हैं, तुमने हमसे कभी कुछ चाहा नहीं।
6: दासी को बिना मांगे ही स्वामी की अकल्पनीय कृपा प्राप्त हुई है।
4: हमारी ओर देखो चंपा, क्या सचमुच तुम्हें कुछ नहीं चाहिए?
6: हाँ देव, कुछ नहीं।
4: चंपा, तुमने मेरी संतुष्टि के लिए सदैव ही अपनी इच्छाओं का होम किया है ना?
6: वही तो दासी का धर्म है स्वामी।
4: चंपा, मेरी ओर देखो चंपा, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, केवल दो प्रश्न। तुम असत्य नहीं बोलोगी ये मैं जानता हूं, किंतु ये भी चाहता हूं कि चुप रहकर इन प्रश्नों की गंभीरता मत टालना। क्या हुआ चंपा? तुम्हारे माथे पर श्वेत कण क्यों?

0: छलक रहे हैं।
1: मैं आपके चरणों की धूल होने के योग्य भी नहीं, अपनी सौमने की इच्छा मात्र हूं। मेरी प्रार्थना है कि जो भी पूछना हो वो सौमनी ही से ही पूछे। आपसे सत्य नहीं कहा तो मेरे लिए मरण तुल्य होगा। मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं, चिंता ये है कि तब कुमार को दूध कौन पिलाएगा। सौमनी को तो दूध उतरता ही नहीं।
0: मेरा अनुमान सत्य निकला, कुमार को जन्म देने वाली माता तुम हो। तुम चंपा, एक प्रश्न का उत्तर तो मिल गया चंपा, दूसरा ये कि
1: सामने के विषय में कोई प्रश्न ना करे देव। मैंने स्वामी से अब तो कुछ नहीं मांगा, बस इतनी कृपा मेरी याचक छोली में डाल दीजिए।
0: अब कुछ नहीं पूछूंगा, शांत हो जाओ चंपा, अब कुछ नहीं पूछूंगा। तुम जानती हो कि पिंगला के प्रति अतीव राग है, प्रबल आकर्षण है। उसके प्रति संदेह का जो बीज मेरे मन में पड़ा है वो भीतर ही भीतर बैठा आंखें झपकाता रहता है। विकलता बढ़कर पलायन के लिए प्रेरित करती है, अनुराग से आकर्षण से बार बार भागता हूं और बार बार संबंधों की उसी भूमि पर लौटता हूं। चंपा, तुम कभी पिंगला को ध्यान से देखना, उसका लावण्य मुरझाता जा रहा है, पाटल जैसे कपोलों की त्वचा में संकुचन की रेखाएं आ रही हैं। मैंने देखा था कि एक दिन मेरे द्वारा चुम्बन लिए जाने पर उसके माथे पर उलझन सी आई, आंखों में एक अस्वीकार जैसा कुछ था। चंपा, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया।
1: देव,
0: समय नहीं बीता, हम ही बीत रहे हैं।
1: देव, मद्यपान यहीं ले आऊं?
0: चारों ओर मद ही मद है, राजमद, धनमद, यशमद। अभी अभी मैं यश के मद में तैरता हुआ पहुंचा हूं। कहीं पांव रखता था तो कहीं पड़ते थे। मदिरा का मद उसके सामने नगण्य है चंपा, फिर भी मदिरा ले आओ।
1: जी देव।
0: संभव है ये यश के मद से मुझे त्राण दे, या फिर तुम्हें उससे सेवा की संतुष्टि मिल सके। और मदिरा यहां रखकर तुम सोने चली जाना चंपा।
1: जी देव।
0: मुझे दर्शन दो गुरु, दर्शन दो, अपनी शरण में ले लो मुझे। देख देख, समझ लिया मैंने ये संसार स्वार्थ के ताने बाने का भ्रमजाल है सब ये गुरु। मैं और मेरे की माया में फंसा हुआ मैं, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ नाथ। अलग अलग, गोरख गोरख, अलग अलग, गोरख गोरख।
1: कोई आ गया स्वामी?
0: चंपा, तुम रात भर द्वार पर थी क्या?
1: महाराज कुछ कह रहे थे।
0: कुछ कहा मैंने? स्वप्न में कुछ कहा होगा।
1: सुना है भोर का स्वप्न सच होता है देव।
0: महाकाल की शंख ध्वनि सुनाई दे रही है चंपा, वज्र भैरव जाने कहां होंगे, उन्होंने बहुत दिनों से सुधि नहीं ली। मनुष्य कैसे कैसे भ्रमों के साथ जीता है। तुम जो संदेह रहित हो वो है अस्तित्व ही, और जो संशय के वृत्त में है वो शासिका स्वामिनी है। और मैं भी कहां सत्य को स्वीकार कर पाता हूं। संकल्प लेकर गेह से भागता हूं और देह की कामना बनकर लौट आता हूं। कोई बात तो है चंपा, जो इन सुख साधनों के बीच भी एक विकलता मेरे आसपास सांस लेती रहती है। लगता है

0: जाने क्या क्या लगता है। जाओ चंपा, जाओ अपनी स्वामिनी के पास जाओ।
1: जो आज्ञा देव।
0: उनसे कह दो कि अब वो निर्वाह की यातना से स्वयं को मुक्त माने।

0: भर्तृहरि की रुचि राजकार्य में कम होती जा रही है। क्रमशः वो पूर्णतः उदासीन और निरपेक्ष हो गए हैं। राजकीय कार्य अब महामात्य की ओर ही हैं। समय समय पर वो नरेश से मिलने आते, किंतु वहां उन्हें संतोषजनक समाधान नहीं मिल पाते। नरेश गोपनीय मंत्रणाओं से भी अलग रहते हैं। इनमें सेनापति के अतिरिक्त वैसिका को सम्मिलित किया जाता। कुमार विक्रम को बार बार अवंती आना पड़ता, कभी महामात्य के बुलावे पर तो कभी स्वयं ही। उनकी उद्दंडता अब शांत है। महाराज की उपस्थिति और महामात्य की योग्यता से सब सुचारू चल रहा है, या फिर महाकाल ने अवंती का संचालन ले लिया है।
1: धृष्टता क्षमा करे नरेश, मुझे विषाद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप प्रजा के प्रति अपने दायित्व से विमुख हो रहे हैं। ग्रीष्म और पावस के पश्चात इस बार शरदोत्सव में भी जनता आपके दर्शनों से वंचित रह गई है।
2: महामात्य, प्रजा को चाहिए कि वह अयोग्य राजा को पदच्युत करके अपना दूसरा राजा चुन ले। ये जनता का जन्म सिद्ध अधिकार सदा से रहा है।
1: ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये निर्णय अकस्मात क्यों?
2: अकस्मात नहीं आर्य, न जाने कब से द्वंद्वग्रस्त हूं। जीवन को बहुत निकट से देखा और उसे विश्लेषित किया, सत्य को समझने का प्रयास किया, भटका, जहां से चलना शुरू किया वहीं लौट कर आ भी गया। जाने दें, पूज्य पिता के समय से ही आप अवंती राज परिवार के शुभचेता और राज्य के संकट मोचक रहे हैं। आपके पुत्रवत नरेश भर्तृहरि में शासन की ना तो इच्छा ही शेष है, ना सामर्थ्य बची है।
1: राजन,
2: कृपया स्वीकार करने दीजिए मुझे। अब तक भर्तृहरि किस तरह और कैसे इन भवनों, इन अट्टालिकाओं के अंधेरों से बंधा रहा, अब प्रकाश मुझे बुला रहा है। प्रजानम विनयात दानात रक्षणात भरणादपि का दायित्व मुझे बंधन लगता है। गुरु के दर्शन और आज्ञा की प्रतीक्षा है मुझे।
1: तो क्या राजा भर्तृहरि योगी सन्यासी होना चाहते हैं?
2: मुझे नहीं पता महामात्य, नहीं पता कि कल क्या होगा। मैं बंधन, विकलता, कर्तव्यों के पाश, भ्रम जाल से मुक्त होना चाहता हूं महामात्य, जिनका भय हर क्षण मेरा पीछा नहीं छोड़ता। आर्य, आपने भी तो देखा है वज्र भैरव को, मैंने उन्हें गाते सुना है, कनक कामनी त्यागे दोई, सो जोगे स्वर निर्भय होई। योगी होना निर्भय होना है, जन्म से, यश अपयश से, आस और त्रास से। जिस धरा को सैकड़ों राजा अपनी अपनी मानकर मर गए, परंतु जो किसी ने भी नहीं भोगी, ऐसी पृथ्वी का राजा बनने का क्या अभिमान। हास्यास्पद तो यही है कि उस भू के लघुत्तर अंश को भी पाकर लोग स्वयं के भूपति होने का अभिमान पाल लेते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी महामात्य।
1: महाराज, फिर विचार करें, विचार करें। कनकशंगा, उज्जैनी और अवंती की गरिमा और यश का, महादेवी पिंगला और अबोध कुमार के भविष्य का, उस कालातीत साहित्य अवदान का जो मानव जाति को आपने दिया है, सोचे सोचे कि क्या आपका निर्णय समयोचित और समुचित है। कर्मभूमि से पलायन यो भी कायरता कही गई है महाराज।
2: आर्य, अब सहा नहीं जाता, मेरे लिए दो ही मार्ग अब शेष हो रहे हैं। आत्मग्लानि में मृत्यु का वरण

0: गुरु गोरखनाथ को आप कहां खोजेंगे?
1: जहां भी वो हो, वज्र भैरव ने बताया था कि वो कामरूप की दिशा में गए हैं।
0: कामरूप कहां है?
1: सुना जाता है कि ब्रह्मनद और कदलीवन के बीच कहीं है।
0: ओह, तो मेरा भी एक आग्रह स्वीकार करना पड़ेगा राजन। आपकी यात्रा में जीवक आपके साथ रहेगा। गंगा तट पर आपको बंगदेश के लिए नौकाएं मिलेंगी। वहां जाकर राजकुमारी मैनावती से भेंट कर लें। मैनावती निश्चित रूप से कामरूप का मार्ग जानती होंगी।
1: जीवक आपका विश्वस्त अनुचर और रक्षक है महामात्य, उसकी अनुपस्थिति में आप आरक्षित नहीं हो जाएंगे।
0: प्राणन तक रोग से बच गया हूं नरेश। पता नहीं कि त्रिलोचन की औषधियों से जीवन मिला या फिर वैसिका की सुश्रुषा ने बचाया। क्या पता दोनों ही माध्यम रहे हों। किंतु महाकाल की इच्छा नहीं होती तो ये भी क्या कर लेते। आपने ठीक ही कहा, जीवक अत्यंत विश्वसनीय है अपनी स्वामी भक्ति के कारण। इसलिए मैं उसे आपके साथ भेज रहा हूं। वो मैनावती के यहां तक आपको पहुंचाकर लौट आएगा। महाराज, फिर आप होंगे और आपकी खोज।

0: यहां राज सेवक दो अश्वों को लेकर उपस्थित है महाराज।
1: ठीक है जीवक, हमें शीघ्र प्रस्थान करना है।
2: सिंह द्वार के सावधान रक्षकों ने राजा भर्तृहरि को तीव्र गति से द्वार के बाहर जाते देखा। उनके शरीर पर राजसी वस्त्र नहीं थे और न ही राज चिन्ह द्योतक कोई अन्य संकेत। जीवक भी साधारण वेश में, कमर से बंधी हुई तलवार अवश्य उसके पास थी और थीं सावधान चौकस निगाहें। उज्जैनी से बाहर निकलकर भर्तृहरि घूमे और उन्होंने धवल अट्टालिकाओं और स्वर्ण कलशों को प्रणाम किया और चल पड़े अपनी अबूझ अनिश्चित यात्रा पर गुरु गोरखनाथ की खोज में पूर्व दिशा की ओर।
0: महाराज, उज्जैनी से हम दूर आ गए हैं।
1: हाँ जीवक, उज्जैनी पीछे छूट गई है। अब मैं राजा नहीं हूं और ना ही तुम सेवक। बंगाल के पाल राज्य में पहुंचने तक तुम जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मार्ग दुष्कर और सुदीर्घ है और हमें चलते ही जाना है।
0: जो आज्ञा महाराज।
2: थल और जल मार्गों से चलते चलते अंततः राजा भर्तृहरि पाल राज्य के राजद्वार तक जा पहुंचे, जहां भर्तृहरि ने जीवक को विदा किया।
1: जीवक और नहीं, यहां से तुम उज्जैनी लौट जाओ। अब तक के साथ के लिए तुम्हारा धन्यवाद। महामात्य को बताना कि तुमने पूरी सुरक्षा के साथ भर्तृहरि को उसकी बहन मैनावती के राज्य की सीमा तक पहुंचा दिया है।
0: महाराज, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपके किसी काम आ सका। प्रणाम महाराज।
2: मैनावती को अनुज के आगमन की पूर्व सूचना मिल गई थी। उसने राजा भर्तृहरि का उल्लासपूर्वक स्वागत किया और पाल राज्य इस अवसर पर रंगारंग उत्सवों में डूब गया। उत्सव दिन रात चलते रहे। एक दिन भाई बहन को वार्तालाप का अवसर मिला।
3: तो तुम्हारी यात्रा कामरूप के लिए है?
1: हाँ दीदी।
3: निश्चित और अटल?
1: हाँ।
3: अवंती किसके भरोसे छोड़ दी है?
1: महाकाल और महामात्य उसकी देखभाल करेंगे।

0: ये दीदी
1: काम रूप जानने का उद्देश्य
0: गुरु गोरखनाथ।
1: गुरु गोरखनाथ ने बुलाया है?
0: नहीं, मुझे स्वयं गुरु तक पहुंचना है। वज्र भैरव ने बताया था कि वो कामरूप की दिशा में गए हैं।
1: वज्र भैरव कहाँ हैं?
0: तब के बाद भेंट नहीं हुई उनसे। वो यकायक आते हैं और जाने कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ होंगे।
1: अनुज, कामना की उमंग भूमि है कामरूप। भगवान शिव का तप भंग करने के लिए कामदेव ने अपनी माया वहीं रची थी। शिव के तेज से भस्म हुए काम की पत्नी रति को उन्होंने वही काम को अनंग होने का वर दिया था।
0: इस अनुश्रुत से मैं परिचित हूं दीदी।
1: काम देश में संयम, विवेक, अनुशासन सभी कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है भैया, इसीलिए उस भूमि पर तप और योग की परीक्षा होती है। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महायोगी भी वहां स्त्री की कामना से झुलसने लगते हैं। वहां मत जा रहे अनुज। वहां की स्त्रियां सर्वाधिक मायावी हैं। गुरु ने बताया है कि गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ भी कामरूप पहुंचकर इसी माया जाल में बंदी होकर तप और योग को बिसरा बैठे थे। उन्हें गोरखनाथ ही बचाकर लाए थे।
0: मैंने ये भी सुन रखा है।
1: इसलिए मेरा कहना मान। उधर मत जा रहे अनुज। उज्जैनी नहीं लौटना चाहता तो फिर यहीं रुक। तुझ पर यदि गुरु की इतनी कृपा है तो मेरा विश्वास है कि वो भी तेरे लिए सोच रहे होंगे। वो तेरी श्रद्धा और समर्पण को समझेंगे और अवश्य मिलेंगे।
0: अब और प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा बहन, और प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैंने योग के मार्ग को ही चुन लिया है बहन, योग का मार्ग।
1: जैसी आदिनाथ की इच्छा, तू जा। किंतु वहां पहुंचकर गुरु गोरखनाथ तक कैसे पहुंचेगा तू? मैं तेरी किंचित सहायता कर सकती हूं। ब्रह्मनद के पवित्र जल को छू रहे पर्वत की एक गुफा में एक सिद्ध तांत्रिक निवास करते हैं, वही देंगे तुझे गुरु गोरखनाथ का पता। तुम्हें वहां तक नखला मेखला पहुंचा देंगी, केवल वहीं तक। दूर से पर्वत दिखाकर वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। किंतु सावधान भैया, सिद्ध गुफा के द्वार पर एक सिंह पहरा देता है।

0: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 25वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार पदम भंडारी, वैसिका प्रमिला दिवाकर, पिंगला कंचन राजानी, जीवक तनवीर अहमद, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, चंपा अनुराधा, महामात्य अर्शद इकबाल और मैनावती दिव्या पवार। परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आपने सुना कामिनी काय कांतारे की 25वीं कड़ी का प्रसारण। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: दोपहर के 12:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हम हर भारतीय के लिए प्रेरणा बना रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व प्रदेश में आज से 17 अगस्त तक जन भागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान तिरंगा यात्रा, तिरंगा मेला, प्रदर्शनी और साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज जबलपुर के राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय से मंडला जिले के रामनगर चौगाम तक बाइक एक्सपीडिशन हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जा रहा है। रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक बनाने के लिए नागदा संत हिरदयाराम नगर रेलखंड के कुल 226 किलोमीटर मार्ग में मानक कवच प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया है। प्रदेश में मानसून की बेरुखी के बाद पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर भोपाल के मानव संग्रहालय में धागा एक पहचान के समापन समारोह में रिवायत फैशन शो का आज दोपहर में आयोजन किया जाएगा और भोपाल स्थित टीटी नगर स्टेडियम में घुड़सवारी खेल के विकास और प्रोत्साहन के उद्देश्य से कल एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में देश के विभिन्न हिस्सों से विशेषज्ञ और खिलाड़ी शामिल हुए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। एक बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहनों, आज हम इतिहास के उस स्वर्णिम और क्रांतिकारी अध्याय को याद करने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ बहनों, हम बात करने जा रहे हैं 9 अगस्त यानी आज ही के दिन 1925 के उस ऐतिहासिक काकोरी कांड की, जो हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम का एक अत्यंत साहसिक और गौरवशाली पृष्ठ है। बहनों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह त्याग, बलिदान, साहस और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उदाहरण था। काकोरी कांड उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निकट स्थित काकोरी रेलवे स्टेशन के पास हुआ था। इस अभियान का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार का वह धन प्राप्त करना था जिसका उपयोग क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहता था। इस साहसिक अभियान का नेतृत्व महान क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह आदि लोगों ने किया। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियां की और लंबा मुकदमा चलाया। अंततः रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। इन वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान देकर पूरे देश में स्वतंत्रता की अलग जगा दी। काकोरी कांड ने भारतीय जनता को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता केवल कुछ नेताओं का उद्देश्य नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का अधिकार है। इसी विचार ने आगे चलकर संविधान में हम भारत के लोग की अवधारणा को मजबूत आधार प्रदान किया। संविधान जनता की सर्वोच्चता का दस्तावेज है और यह भावना स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों से ही विकसित हुई। बहनों,

काकोरी कांड के क्रांतिकारी जाति धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए एकजुट हुए। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की मित्रता भारतीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का अमर उदाहरण है। बहनों, काकोरी कांड हमें केवल साहस की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि यह सिखाता है कि राष्ट्र निर्माण केवल युद्ध जीतने से नहीं होता, बल्कि न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने से होता है। आज हम काकोरी कांड दिवस मनाते हैं, तब हमें केवल उन वीरों को श्रद्धांजलि ही नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का भी संकल्प लेना चाहिए। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है। काकोरी के वीरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्र भारत का मार्ग प्रशस्त किया। आइए इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेंगे और उन अमर बलिदानियों के सपनों का भारत बनने में अपना योगदान देंगे।

0: साथियों।
1: बहनों, कहा जाता है कि किसी भी घर के संस्कार और सलीके को देखना हो तो उसके भीतर झांक कर देखिए, और आज का हमारा अगला विषय यही है कि आपकी सफाई के प्रति आपकी रुचि बताता है आपका बाथरूम। बहनों, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय केवल उसके कपड़ों या बाहरी रूप से नहीं मिलता, बल्कि उसकी आदतों और रहन सहन से भी मिलता है। घर का सबसे निजी स्थान बाथरूम होता है, और उसकी स्वच्छता यह दर्शाती है कि व्यक्ति सफाई और स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक है। यदि बाथरूम साफ सुथरा हो, वहाँ गंदगी ना हो, फर्श सूखा हो, कूड़ेदान का सही उपयोग हो और नियमित रूप से सफाई की जाए, तो यह न केवल हमारी अच्छी आदतों का परिचय देता है, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। इसके विपरीत गंदा बाथरूम अनेक बीमारियों का कारण बन सकता है। बैक्टीरिया, फफूंद और दुर्गंध का सबसे अधिक खतरा ऐसे स्थानों पर ही होता है। बहनों, स्वच्छ बाथरूम केवल दिखावे की बात नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, जिम्मेदारी और स्वच्छ जीवन शैली का प्रतीक है। जब हम अपने घर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को साफ रखते हैं, तो हम स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान ने भी हमें यही संदेश दिया है कि स्वच्छता केवल सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी शुरुआत हमारे अपने घरों से होनी चाहिए और घर में भी बाथरूम की स्वच्छता को विशेष महत्व देना चाहिए। बहनों, स्वच्छ बाथरूम केवल एक आदत नहीं, बल्कि हमारी सोच, संस्कार और स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का दर्पण है। इसलिए हमें हमेशा अपने बाथरूम और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं थोड़ा समय खुद पर खर्च करें के विषय में। बहनों, हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी जिम्मेदारी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने लिए समय निकालना ही भूल गए हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम पढ़ाई, नौकरी, परिवार, मोबाइल, सोशल मीडिया और अनेक कार्यों में लगे रहते हैं। हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी इच्छाओं, अपने स्वास्थ्य और अपनी मन की आवाज को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन बहनों, एक प्रश्न हम सभी को स्वयं से पूछना चाहिए, यदि हम स्वयं ही स्वस्थ, खुश और मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो दूसरों की जिम्मेदारियां कैसे निभा पाएंगे। बहनों, खुद पर समय खर्च करना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि यह अपने जीवन को बेहतर बनाने की सबसे महत्वपूर्ण आदत है। जैसे किसी वाहन को समय समय पर सर्विस की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर और मन को भी आराम, देखभाल और सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थोड़ा समय

खुद पर खर्च करने का अर्थ केवल आराम करना नहीं है, इसका अर्थ है अपनी सेहत का ध्यान रखना, नियमित व्यायाम करना, संतुलित भोजन करना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, नई चीजें सीखना, अपने परिवार और मित्रों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, अपने सपनों और लक्ष्यों पर विचार करना, अपनी गलतियों से सीखना और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना। आज के समय में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने हमारा बहुत अधिक समय घेर लिया है। कई बार हम घंटों तक स्क्रीन देखते रहते हैं, लेकिन 5 मिनट भी अपने मन की बात सुनने के लिए नहीं निकालते। यदि हम प्रतिदिन केवल आधा घंटा भी स्वयं के विकास के लिए दें, तो कुछ महीनों बाद हमारा व्यक्तित्व पहले से कहीं अधिक बेहतर हो सकता है। बहनों, खुद पर समय खर्च करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक शांति। आज तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, योग या शांत वातावरण में बिताएं, तो हमारा मन अधिक स्थिर और सकारात्मक बन सकता है। जब मन शांत होता है, तब हमारे निर्णय भी बेहतर होते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सफल व्यक्तित्व केवल मेहनत ही नहीं करते, बल्कि अपने शरीर, मन और विकास के लिए भी समय निकालते हैं। वे जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास है। बहनों, हमें यह समझना होगा कि खुद से प्रेम करना और स्वयं का सम्मान करना जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब हम स्वयं को महत्व देंगे, तभी हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। बहनों, यदि हम प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट केवल अपने लिए निकालेंगे, तो इस समय में हम कुछ नया सीखेंगे, व्यायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे या अपने भविष्य की योजना बनाएंगे। यह छोटा सा निवेश हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। बहनों, जो स्वयं का सम्मान करता है, वही जीवन में सम्मान पाता है। जो स्वयं पर समय लगाता है, वही अपने सपनों को साकार बनाता है। इसलिए दूसरों के लिए जीना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा समय स्वयं के लिए जीना भी उतना ही आवश्यक है। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, सफल वैवाहिक जीवन का आधार आपका जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार। बहनों, विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों, दो विचारधाराओं और दो जीवन यात्राओं का पवित्र संगम है। विवाह का वास्तविक उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं, बल्कि जीवन के हर सुख दुख और एक दूसरे का सहारा बनना है। यदि इस संबंध की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और मधुर व्यवहार पर रखी जाए, तो वैवाहिक जीवन स्वर्ग के समान सुखद बन जाता है। कहा गया है कि घर ईंट और पत्थरों से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से बनता है। यही बात वैवाहिक जीवन पर पूरी तरह लागू होती है। जीवन साथी के साथ हमारा व्यवहार ही यह तय करता है कि हमारा घर खुशियों का मंदिर बनेगा या तनाव का केंद्र। बहनों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी भावनाओं, विचारों और व्यक्तित्व का सम्मान किया जाए। पति पत्नी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जब दोनों एक दूसरे की राय का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की सराहना करते हैं, तब संबंध और अधिक मजबूत होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण आधार है विश्वास। विश्वास वह डोर है जो पति पत्नी के रिश्ते को जीवन भर जोड़े रखती है। यदि विश्वास टूट जाए, तो रिश्ते की मजबूती भी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए कभी झूठ ना बोले, बातों को छिपाने की आदत ना रखे और हमेशा पारदर्शिता बनाए रखे। विश्वास बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसे टूटने में केवल कुछ क्षण ही पर्याप्त होते हैं। सम्मान विश्वास के बाद आता है प्रेम और स्नेह। बहनों, प्रेम केवल बड़े बड़े उपहार देने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में झलकता है। समय पर एक दूसरे का हालचाल पूछना, कठिन समय में साथ देना, थके होने पर सहयोग करना, जन्मदिन या विशेष अवसर याद रखना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ये छोटे छोटे व्यवहार ही प्रेम को गहरा बनाते हैं। एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए संवाद भी अत्यंत आवश्यक है। कई बार रिश्तों में समस्याएं इसलिए नहीं आती कि कोई बड़ी गलती हुई है, बल्कि इसलिए आती हैं क्योंकि लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करना बंद कर देते हैं। खुलकर ईमानदारी और शांति के साथ बातचीत करना हर समस्या का समाधान हो सकता है। यदि कोई मतभेद हो भी जाए, तो उसे बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए, न कि क्रोध या कटु शब्दों के माध्यम से। बहनों, धैर्य और सहनशीलता भी सफल विवाह की पहचान है। हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ होती हैं। यदि पति पत्नी हर छोटी गलती पर क्रोधित होने के बजाय धैर्य रखे और सुधार का अवसर दे, तो उनका रिश्ता अधिक मजबूत बनता है। क्षमा करना और भूल जाना भी एक सफल

दाम्पत्य जीवन की महान कला है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया, या मुझे आप पर गर्व है, जैसे शब्द रिश्तों में नई ऊर्जा भर देते हैं। आज समाज में वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का मुख्य कारण अहंकार, संवाद की कमी, असहिष्णुता और आपसी सम्मान का अभाव है। यदि पति पत्नी में मैं की जगह हम की भावना अपनाएं, तो अधिकांश समस्याएं स्वयं समाप्त हो सकती हैं। हमारे भारतीय संस्कार हमें सिखाते हैं कि परिवार प्रेम, त्याग, सेवा और सहयोग से चलता है। पति पत्नी यदि एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी बने, कठिन समय में एक दूसरे का साथ थामे रखें और हर परिस्थिति में साथ निभाने का संकल्प लें, तो उनका जीवन वास्तव में सफल और सुखी बन सकता है। बहनों, सफल वैवाहिक जीवन किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होता, बल्कि प्रतिदिन किए छोटे छोटे अच्छे व्यवहारों का फल होता है। तो चलिए हम सभी संकल्प लें कि अपने जीवन साथी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो प्रेम, सम्मान और विश्वास से परिपूर्ण हो।

बहनों, सावन का महीना अपने साथ हरियाली, खुशहाली और प्रकृति के प्रति आभार का संदेश लेकर आता है। इसी पावन मास में मनाई जाने वाली हरियाली अमावस्या केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि प्रकृति, हरियाली और समृद्धि का उत्सव भी है। इस दिन पेड़ पौधे लगाने, भगवान शिव की पूजा करने और परिवार के साथ सात्विक एवं स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने की विशेष परंपरा है। तो चलिए, आज खाना खजाना में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाली अमावस्या स्पेशल कुछ ऐसी लजीज और पौष्टिक रेसिपी। सबसे पहले बनाते हैं पालक मक्का टिक्की। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप उबला हुआ स्वीट कॉर्न, 1 कप बारीक कटा पालक, 2 उबले आलू, 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स, 1 छोटा चम्मच अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, सेकने के लिए घी या तेल जो भी आप चाहें। सभी सामग्री मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। छोटी छोटी टिक्कियां बनाएं, तवे पर दोनों तरफ से सुनहरी होने तक सेकें। पुदीने की चटनी के साथ परोसे। तैयार है टेस्टी और पौष्टिक पालक की टिक्की। मीठे में बहनों, चलिए बनाते हैं कैरेमल खीर। यूं तो आप सभी बहनें खीर आमतौर पे किसी भी उत्सव पे बनाती रहते हैं, आज हम बनाते हैं कैरेमल खीर। इसके लिए हमें चाहिए फुल फैट दूध 1 लीटर, 1 कटोरी कनकी वाले बारीक चावल जो हमने पहले से भिगो कर रखे हैं। दूध में चावल डालकर गलने तक पकाएं। आप एक अलग पैन में 1 कटोरी शक्कर, बिल्कुल 1-2 चम्मच पानी डालकर चलाते हुए कैरेमल बना लें। जब आप देखें कि ये बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का और लिक्विड फॉर्म में हो गया है, तभी गैस बंद कर दें। अब आप देखें कि यदि आपके दूध में चावल पक गए हैं तो आप इस कैरेमल को उस पर मिला दें, साथ ही कुछ सेके हुए ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो डाल दें। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल दें। कुछ देर और चलाएं और गैस बंद करके रख दें। तैयार है स्वादिष्ट कैरेमल खीर। आप इसे ठंडी या गर्म दोनों ही तरीके से खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनती है। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दे इजाजत। नमस्कार।

अभी आप महिला कार्यक्रम सुन रहे थे। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: लड़की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

जगन सिंह कुशवाहा की गए इस लोकगीत के साथ ही लोकगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की है। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल हुसैन खान बंधनबाजी और साथियों की गई ये कव्वाली।

इकबाल हुसैन खान और साथियों की गई कव्वाली के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया अनामिका फिल्म से। किशोर कुमार की आवाजें मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से सजाया आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर का गाया अनामिका फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले का गाया हुआ है, जिसे हमने लिया कश्मीर की कली फिल्म से, एसएच बिहारी के बोल, संगीत ओपी नैयर का।

0: आशा भोसले की आवाज में कश्मीर की गली फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यही समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को है। आप सुनेंगे अब प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। यह आयोजन हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश भर में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और मातृशक्ति सहित सभी देशवासियों से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने और देश की प्रगति में योगदान देने की अपील की।
1: आज तिरंगा यात्रा हम सब पूरे देश में निकाल रहे हैं, हर राज्यों में, राजधानी में आज सब दूर तिरंगा यात्रा निकल रही है और उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे देश के युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब मिलकर संकल्प करें देश की स्वतंत्रता के लिए। अपनी आजीवन वो सेवा भी करते रहे और जीवन भर ये परमात्मा करे कभी हमारे देश पे दुश्मन की नजर न लगे।
0: गौरतलब है कि प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। राज्य को आज 4 नई सीधी हवाई सेवाओं की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में इन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। नई उड़ानें भोपाल से रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर से कोलकाता के बीच शुरू होंगी। मुख्यमंत्री भोपाल से रीवा की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। इन सेवाओं का संचालन अलायंस एयर द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार की नागरिक विमानन नीति के तहत प्रत्येक राउंड ट्रिप पर 10 लाख रुपए तक की वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। नई सेवाओं से प्रदेश की आंतरिक और अंतर्राज्यीय हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों के स्थान पर लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। पुदुचेरी में आज पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों को न्याय सुनिश्चित कराना है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन और लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि यह राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज इंदौर में आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली जा रही है। सुबह 6 बजे से लालबाग परिसर से शुरू हुई रैली में हजारों

पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ शामिल हुए। रैली कलेक्ट्रेट टावर चौराहा और भंवर कुआं होते हुए राजीव गांधी चौराहे पहुंचेगी। पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने आज दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक औसतन 17.2 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 20% कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शासकीय महाविद्यालय परिसर सोयत कला में पौधाकरण किया गया। डिंडौरी जिले में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे कई क्षेत्रों का मुख्यालय से संपर्क बाधित हो गया है। और पन्ना में प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्राचीन चंदेल कालीन महाराज सागर तालाब और परिसर का भ्रमण किया और कदम्ब के पौधे का रोपण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।

0: On the August Gandhi Divas, as we commemorate the Quit India Movement of 1942, millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन दो दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
2: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
3: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
4: सरकार की चार सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी, जेएसएससी

0: परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं, क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: हम आ गए हैं आपका चहेता कार्यक्रम बाल सभा लेकर और मैं हूँ आपकी अपनी प्रीति दीदी। बच्चों कैसे हैं आप सभी? एक साथ बोल पड़े, बहुत अच्छे दीदी। हमें पता है कि आप सभी कुछ ना कुछ तैयारियां कर रहे हैं आने वाले राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस की, है ना? बच्चों अगस्त का महीना देशभक्ति की भावना में डूबा हुआ होता है, क्योंकि बच्चों इसी अगस्त के महीने में ही तो हम अपने देश की आज़ादी का पर्व मनाते हैं। बच्चों आज़ादी या कहें स्वतंत्रता, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा आसमान समाया है। सदियों से भारत के लोग अंग्रेजों की दास्तां और अत्याचार से त्रस्त हो चुके थे। खुली फिजा में सांस लेने को व्याकुल भारत में आज़ादी का बिगुल सन 1857 को बजा, पर किन्हीं कारणों से बच्चों हम गुलामी के बंधनों से मुक्त ना हो सके। पर बच्चों यह क्रांति की आग धीरे धीरे ज्वालामुखी का रूप लेने लगी और मातृभूमि पर मर मिटने को आतुर हजारों देशभक्तों ने क्रांति की इस मशाल को थाम कर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को स्वतंत्र कराया। वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयत्नों की ही देन है कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। बच्चों आज़ादी को पाने में हमने बहुत संघर्ष किया है और इतने सालों से हम ये पर्व मना रहे हैं, पर इस आज़ादी को अक्षुण बनाए रखने के लिए हमारे नन्हे नौनिहाल यानी कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे क्या सोचते हैं आज़ादी को लेकर, कैसे मनाते हैं 15 अगस्त का ये त्योहार? तो आइए जानते हैं आप सभी दोस्तों के विचार आज़ादी के तरानों के साथ।

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीहू शर्मा है और मैं 9th क्लास में हूँ।
1: पीहू, ये बताओ कि तुम्हें पता है कि आज कौन सा विशेष दिन है?
0: हाँ, आज 9 अगस्त है।
1: तो तुम्हें पता है 9 अगस्त क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए?
0: हाँ, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने का आह्वान करते हुए कहा, करो या मरो। इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत खास है। उसके बाद दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, इसीलिए हम राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाते हैं। और 15 अगस्त बहुत नजदीक है और हमने बहुत सारी तैयारी करी है।
1: बहुत अच्छी बात है पीहू।
0: और दोस्तों, आज मैं आपको कुछ आजादी के महत्वपूर्ण नारे बता रही हूँ। महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। भगत सिंह ने कहा, इंकलाब जिंदाबाद। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
1: क्या बात है पीहू, बहुत ही अच्छे नारे आपने बताए हैं अपने दोस्तों को।
0: 15 अगस्त बहुत नजदीक है और उसी के विषय पे मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। लहराता रहे तिरंगा प्यारा, भारत देश है सबसे न्यारा। केसरी देता वीरता का ज्ञान, सफेद बढ़ाता शांति का मन। हरा रंग हरियाली लाए, अशोक चक्र राह दिखाए। गर्व से इसमें नमन करे, भारत माँ का वंदन करे। ऊंचा रहे सदा इसका मान, तिरंगा है भारत की शान, तिरंगा है भारत की शान।
1: बहुत अच्छी कविता पीहू आपने सुनाई है।
2: मेरा नाम अथर शर्मा है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त को हमारी स्कूल में ध्वज फहराते हैं, लड्डू मिलते हैं। गांधी जी के 3 बंदर थे, एक तो बुरा मत बोलो और एक बुरा मत सुनो और एक बुरा मत देखो। बुरा मत देखो का मतलब होता है अच्छा देखो, बुरा मत सुनो का मतलब होता है अच्छा सुनो। हमारी स्कूल में 15 अगस्त को पोयम होती है और उन सबको फूल चढ़ाते हैं, जिन्हें हमको बताया था।
3: हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज अदिरा जोशी, मैं है ना KG 2 में पढ़ता हूँ। 15 अगस्त के दिन हमारे यहाँ लड्डू बटते हैं, मैं लड्डू खाता हूँ। उस दिन हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, मैडम भाषण देती हैं, बच्चे कविताएं बोलते हैं, सब लोग देशभक्ति गान गाते हैं, कई तरह के प्रोग्राम होते हैं, कई तरह के डांस होते हैं, झंडा वंदन होता है। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सब लोग रंग बिरंगी ड्रेस पहन के बहुत डांस करते हैं, खूब खुशियाँ बनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। जय हिंद।
4: बच्चों, अच्छा लगा ना सुनकर अधिराज के मुख से जय हिंद। वाकई इस शब्द में ताकत है, तो फिर गीत भी सुन लेते हैं ऐसा ही जय हिंद वाला।

0: Hello friends, myself Eva Sharma. I am student of class 6. I like Independence Day. In our school, we are singing patriotic song and I love patriotic song. Aaj Himalay ki choti se dhaj apna lehraega. Aaj Himalay ki choti se dhaj apna lehraega. Jaag utha insaan phir Bharat ko swarg banayega. Aaj Himalay ki choti se dhaj apna lehraega. Aaj Himalay ki choti se dhaj apna lehraega.
1: Reva, aapne bahut hi acha sundar sa geet gaya, lekin hum ek बात आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप जानती हैं कि स्वतंत्रता दिवस क्या है और उसके मायने क्या हैं?
0: हम इस दिन आजाद हुए थे, हमारे इंडिया को इस दिन आजादी मिली थी अंग्रेजों से। मेरे स्कूल में भी बताया जाता है और मेरी मम्मा भी बताती है कि काफी तकलीफों से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आजादी दिलवाई है, तो हमें इस आजादी को सुरक्षित रखना है, आजादी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इंडिपेंडेंस डे पे काफी स्कूल्स में फ्लैग होस्टिंग होती है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन जो मार्केट में फ्लैग मिलते हैं और जो कभी कभार हमें सड़कों पे गिरे हुए दिखते हैं, ये अपमान होता है हमारे फ्लैग का, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम पलक शर्मा है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। अभी आप सबको पता है कि स्वतंत्रता दिवस का त्योहार बहुत ही नजदीक है, सभी लोग इसकी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, उनके बलिदानों की वजह से ही आज हम स्वतंत्र हैं। महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन की वजह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को खूब मदद मिली और 200 साल के लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। स्वतंत्रता के लिए किए गए कड़े संघर्ष ने ब्रिटिश सरकार को जड़ से मिटा दिया, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म, वर्ग, जाति या संस्कृति या परंपरा का हो, देश के आगे उसके लिए कुछ नहीं। यहाँ तक कि अरुणा, आसिफ अली, एनी बीसेंट, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं ने भी चूल्हा चौका छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे स्कूल में 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है। इस खास दिन पर हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु गांधी जी, स्वतंत्रता संग्राम में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए याद करते हैं। इन सब बलिदानों के कारण हमें जो यह आज़ादी मिली है, हमें इसका पूरी तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें इस आज़ादी का सम्मान करना चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए और अपने स्वतंत्रता के महत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए और इसे दिलोजान से संजो कर रखना चाहिए।

0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते बेटा, तुम अपना नाम बताओ।
0: मेरा नाम हाइफा खान है।
1: अच्छा हाइफा, ये बताओ तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो?
0: मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष देशभक्ति से ओतप्रोत कुछ प्रेरक कविताएं तथा हमारी महान राष्ट्रीय नेताओं के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको देशभक्ति कविता सुनाना चाहूँगी। यह धरती वीरों की धरती, यह भारत की शान है, इसकी रक्षा में जीवन देना हर भारतवासी का मान है। तिरंगे की आन रहे ऊंची, यही हमारा अभिमान है। देश पुकारे जब भी हमको, जीवन तक बलिदान है। ना झुकने देंगे भारत को, ना टूट देगा विश्वास कभी। एकता साहस और परिश्रम से बढ़ता रहेगा देश सभी। अब मैं आपको हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। यह प्रसंग भगत सिंह पर है। 23 वर्ष की आयु में जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, तब भी वे बिल्कुल शांत रहे। फांसी से कुछ समय पहले वे पुस्तक पढ़ रहे थे। जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो उन्होंने कहा, जरा ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। पुस्तक बंद करके वे मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़े और एक वाल जिंदाबाद के नारे लगाए। उनका साहस आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। अब मैं आपको APJ अब्दुल कलाम का

0: को सदैव स्मरण रखें तथा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हुए राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: दोस्तों, मैं साविक आनंदो और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूं। आने वाले राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चंद्र पंक्तियां कहना चाहूंगी। जिस देश में है गंगा बहती, पावन पुनीत है सारा परिवेश, अनुपम संस्कृति सद्विचार फैलाता, देता मानवता संदेश, ये प्यारा भारत देश, ये प्यारा भारत देश। दोस्तों, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे पावन भूमि पर रहती हूँ जहाँ की सभ्यता संस्कृति सारी दुनिया के सामने एक मिसाल है। और यह तो आपको पता ही है दोस्तों, हमारा देश त्योहारों का देश है और स्वतंत्रता दिवस का एक अपना ही महत्व है। 15 अगस्त अपने राष्ट्र का पुनीत पर्व है। यह एक महिमामय तिथि है। इस दिन हम स्वतंत्र हुए और यह स्वतंत्रता अक्षुण बनी रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि दोस्तों हम अपनी आजादी के मायने को समझें। आजादी का सही अर्थ है नागरिक धर्म का पालन करते हुए इस तरह विकास करना कि किसी को नुकसान न पहुंचे। आजादी पा लेना ही काफी नहीं है दोस्तों, उसे बरकरार रखना भी बड़ी चुनौती है। आजादी महज एक जश्न नहीं है, जिम्मेदारी और चुनौती भी है। हम सभी को यह प्रण करना है कि इस आने वाले पर्व को अत्यधिक उल्लास के साथ मनाएंगे और आजादी की अक्षुण्णता के लिए यह आवश्यक होगा कि हम पारस्परिक भेदभाव को छोड़कर सहयोग और एकता में विश्वास करें।
2: दीदी, बहुत सारी बातें हो गई है, क्यों ना अब एक देशभक्ति का गीत सुनिया जाए।
3: चलो मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बच्चों, इस दिन की याद आते ही हमारा मन उन सभी शहीदों के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भर उठता है जिन्होंने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो बच्चों, अब यह हम सबका भी कर्तव्य है कि हम अपने स्वतंत्र भारत के विकास के लिए सतत कार्यरत रहें, देश की प्रगति में सहयोग दें। हमें सदैव अच्छा कार्य करना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। जितने हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, उतने ही कर्तव्यों के प्रति भी रहें, तभी देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा।

0: बच्चों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब आपसे अनुमति ली जाए। अगली बार ऐसे ही प्यारे बच्चों के साथ करेंगे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अपनी प्रीति दीदी को दे अनुमति। नमस्ते, जय हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। प्रदेश में आज से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और मातृशक्ति सहित सभी देशवासियों से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने और देश की प्रगति में योगदान

0: की अपील की। राज्य को आज से 4 नई हवाई सेवाएं मिलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में इन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। नई उड़ानें भोपाल से रीवा, भोपाल से पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर से कोलकाता के बीच शुरू होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों के स्थान पर लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और मौसम विभाग ने आज दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3 बजे हैं। हम आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। युवाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी शाम 5:02 पर। 5:33 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे शाम 6 बजे। आकाशवाणी भोपाल से ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 7:21 पर, जिसमें 7:30 से 8 बजे के बीच सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय रहेगा खरीफ की फसलों में कीट रोग नियंत्रण एवं समसामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर हरदयाल वर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश में सुनिएगा रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में। डगर विकास की ये कार्यक्रम होगा रात 8:15। आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति रहेगा, विषय होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। कुछ और फिल्मी नगमे आप सुन सकते हैं रात 8:30। इसके अलावा आपकी फरमाइश कार्यक्रम में रात 9:30। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा सात्विक मोहन का कर्नाटक गायन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारे प्रसारण थोड़ी देर के लिए बंद होता है। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी रहेगा। शाम 5 बजे से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युव वाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं,
1: मैं मार्गिशा।
0: और मैं जयती स्वागत करते हैं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
1: दोस्तों, उम्मीद है आपका रविवार खुशियों, सुकून और नई ऊर्जा के साथ बीत रहा होगा। पूरा सप्ताह काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे में रविवार अपने लिए कुछ पल निकालने, परिवार के साथ समय बिताने और मन को तरोताजा करने का एक बड़ा ही खूबसूरत अवसर लेकर आता है।
0: बिल्कुल। और अगर अगस्त के महीने की बात करें तो इस महीने का अपना एक अलग ही महत्व है। चारों ओर देशभक्ति का माहौल है, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, और इसी उत्साह के बीच पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है।
1: हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ एक अभियान नहीं है दोस्तों, बल्कि देश के प्रति सम्मान और अपने राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ाव का प्रतीक भी है। हमारा तिरंगा हमें उन वीरों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है जिनकी बदौलत आज हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं।
0: और शायद यही समय है ये सोचने का कि देश के लिए हमारा योगदान क्या हो सकता है। देशभक्ति केवल राष्ट्रीय पर्व मनाने तक सीमित नहीं होती। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, समाज के प्रति संवेदनशील रहना, पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करना और एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: दोस्तों, युवा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज हम जो सोचेंगे, जो करेंगे और जिन मूल्यों को अपनाएंगे, वही कल हमारे समाज और देश की दिशा तय करेंगे।
0: तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल अपने घर पर ही तिरंगा न फहराएं, बल्कि अपने व्यवहार और अपने कर्मों से भी उन मूल्यों को अपनाने का प्रयास करें जिनका प्रतीक हमारा तिरंगा है। श्रोताओं, हर दिन की तरह कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे हमारे दो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ। इन प्रश्नों के जवाब आपको पूरे कार्यक्रम के दौरान सोचने हैं और सही उत्तर हम बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। और उसी कड़ी में आज का पहला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वॉटरफॉल कौन सा है।
1: और दूसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। और दोस्तों, अब बारी है हमारे रविवार स्पेशल की। हर रविवार हम आपके लिए लेकर आते हैं युवा तरंग, जहां मिलते हैं हम देश के युवाओं से, सुनते हैं उनके अनुभव, उनके विचार और उनके सपनों की कहानियां।
0: आज भी हमारे साथ कुछ ऐसे युवा जुड़ेंगे जो अपने अनुभवों के माध्यम से न सिर्फ अपने सफर के बारे में बताएंगे, बल्कि हमें और आपको प्रेरित भी करेंगे।
1: उनकी बातें हमें ये समझने का अवसर देंगी कि बदलते समय के साथ युवाओं की सोच किस तरह आगे बढ़ रही है, वे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये बातचीत हर युवा श्रोता को कहीं न कहीं अपने जीवन से जुड़ी हुई जरूर महसूस होगी।
1: लेकिन इस दिलचस्प मुलाकात से पहले सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत,
0: और गीत के उस पार होगी शुरुआत हमारे रविवार के स्पेशल सेगमेंट युवा तरंग की।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी आपके नाम
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
1: क्या
2: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी आज के रविवार स्पेशल युवा तरंग में। तो इसी के साथ आइए जुड़ते हैं आज के हमारे पहले युवा से। हेलो आपका नाम क्या है।
5: हेलो मेरा नाम डायना माइत्रा है।
4: डायना सबसे पहले तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो। जैसे आपका नाम है बिल्कुल आप वैसी ही लगती हो।
5: ओह थैंक यू सो मच।
4: तो डायना अभी आप क्या कर रहे हो वैसे।
5: एक्चुअली अभी मैं कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ। डिफरेंट फर्म्स और कंपनीज ब्रांड्स के लिए मैं सोशल मीडिया पे कॉन्टेंट बनाती हूँ।
4: क्या बात है काफी इंटरेस्टिंग काम लग रहा है सोशल मीडिया और युवाओं को तो पसंद भी है। और तो जैसे आपने आप कंटेंट क्रिएट करती हैं तो किस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हो आप और क्या क्या चैलेंजेस आजकल आपको आते हैं इस फील्ड में।
5: बेसिकली चैलेंजेस तो ऐसे रहते हैं कि ब्रांड्स का जो क्रिएटिव पार्ट रहता है उसको स्क्रिप्ट करके बॉस से अप्रूवल लेने में थोड़ा सा क्रिएटिव डिफरेंस आ जाता है बट इन द एंड इट ऑल वर्क्स आउट।
4: जैसे आपने कहा आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो कंटेंट कंज्यूम करना भी आपको पसंद होगा।
5: जी बिल्कुल।
4: किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो और किस तरह के वीडियोस देखना आपको पसंद है या आपकी हॉबीज क्या क्या है बेसिकली।
5: अपलिफ्टिंग और पॉजिटिव कंटेंट बहुत पसंद है। उसके अलावा हॉबीज में मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना और रीडिंग।
4: अच्छा तो आपने कहा सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना, वैसे दोनों ही काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग हॉबीज है और रीडिंग भी इसके साथ ही। तो सिंगिंग जैसे आपने कहा तो आप किस तरह के गाने गाते हो और कब से आपने सिंगिंग शुरू की।
5: एक्चुअली बचपन से हमारे पूरे फैमिली में सिंगिंग और म्यूजिक का बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन रहा है। साथ में ही सब गाते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं और मुझे सारे तरीके का म्यूजिक बहुत पसंद है बट सबसे फेवरेट मेरा पॉप म्यूजिक है।
4: अच्छा आप पॉप म्यूजिक सुनना पसंद करते हो। और आपने इंस्ट्रूमेंट्स कहा तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपको प्ले करना पसंद है।
5: मुझे गिटार प्ले करना पसंद है एंड मैं अभी कीबोर्ड भी सीख रही हूँ।
4: तो आप तो मल्टी टैलेंटेड हो डायना, रियली दैट इज वेरी इम्प्रेसिव कि आप गिटार तो प्ले करते ही हो और साथ ही आपको कीबोर्ड सीखना भी पसंद है। तो वैसे तो आपने कहा कि आपको पॉप म्यूजिक बहुत पसंद है लेकिन आपकी वाइफ कहीं ना कहीं रॉक म्यूजिक की भी दे रही है कि आप सिंगिंग भी कर पा रहे हो और गिटार भी साथ में।
5: जी जी थोड़ा ऑलराउंडर टाइप ऑफ थिंग।
4: म्यूजिक आप लिखते वगैरह भी हो या सिर्फ सिंगिंग ही।
5: हाँ मैं सॉन्ग्स लिखती भी हूँ।
4: तो कोई दो चार लाइनें आपने कोई अगर सॉन्ग लिखा हो तो उसके आप सुनाना चाहोगे।
5: जी बिल्कुल। मैंने मेरा सबसे पहला गाना 10th क्लास में लिखा था जो ऐसा है एक

क्या बात है डायना, जितनी खूबसूरत आपकी आवाज है उतना ही खूबसूरत इस गाने का कंपोजिशन है और लिरिक्स भी है। मानना पड़ेगा आप सच में मल्टी टैलेंटेड हो, और जिस तरीके आपने लिरिक्स लिखे हैं वो काफी ज्यादा फील हुए मुझे, बहुत इमोशनली कनेक्टिंग फील हुए। मैंने फर्स्ट टाइम सुना बट फिर भी मुझे वो कहीं ना कहीं फील हुआ। तो जैसे आपने कहा आप सॉन्ग्स लिखते भी हो, तो म्यूजिक आपके लिए है क्या, सिर्फ हॉबी या एक कोई और भी, हॉबी से बढ़कर भी आप म्यूजिक को कुछ

0: सुनते हो?
1: एक्चुअली म्यूजिक इज माई लाइफ, बिकॉज सुबह उठते से ही मैं गाना गाने लग जाती हूँ. बिना म्यूजिक के आई डोंट इमेजिन माई लाइफ. एंड ये एक तरीका है जिससे मैं अपना क्रिएटिविटी को एक आर्ट फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस कर सकती हूँ, तो इट गिव्स मी हैप्पीनेस.
0: ये आपने बिल्कुल सही कहा. और देखा जाए तो पूरी दुनिया भर में ही म्यूजिक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी रहा है. जिस तरह से कई सारे ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए जिन्होंने म्यूजिक के थ्रू कोई ना कोई मैसेज देना चाहा, अपने इमोशंस को व्यक्त करते हुए उन्होंने आगे अपने म्यूजिक को बढ़ाया. तो आपको क्या लगता है म्यूजिक का आज की जनरेशन में क्या रोल रहा है और किस तरह से ये दुनिया को शेप करता है?
1: आई गेस म्यूजिक एक बहुत ही पावरफुल टूल है किसी भी आर्टिस्ट को अपना आर्ट एक्सप्रेस करने के लिए. एंड जब लोग उसको सपोर्ट करते हैं और सुनते हैं तो द वर्ल्ड चेंजेस फॉर द बेटर.
0: देखिए म्यूजिक दुनिया को बदल सकता है, ये आपने बिल्कुल सही कहा. इसके अलावा भी जैसे आपने कहा रीडिंग आपको पसंद है, तो रीडिंग भी कहीं ना कहीं मैच करता होगा कि आपकी जो रीडिंग हॉबी है वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करती है म्यूजिक के साथ.
1: मेरे जो मोस्टली बुक्स हैं वो थोड़ा रोमांटिक साइड से रहती हैं, तो वो मुझे म्यूजिक को और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है. इसके अलावा मैं अभी फिलहाल सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ.
0: तो एक और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी. तो जैसे आपने कहा आपकी बातों से तो ये बिल्कुल लग रहा है डायना कि आप म्यूजिक के लिए बहुत पैशनेट हो, तो क्या कभी म्यूजिक को करियर बनाने के लिए कभी सोचा है कि इस फील्ड में आपको करियर बनाना है?
1: ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट इसका आंसर डेफिनेटली है मेरे पास. मुझे म्यूजिक बनाना बहुत पसंद है एंड मेरे दोस्तों को, आसपास के लोगों को सुनाना बहुत पसंद है, बट मैं इसे एक मॉनेटरी बेसिस से नहीं देखती. बस मुझे मेरा आर्ट एक्सप्रेस करना है, तो अगर ये करियर बनता भी है तो इट वुड बी अबाउट द ऑडियंस एंड व्हाट दे फील.
0: ओ माय गॉड डायना, दिस वाज रियली वंडरफुल लाइन दैट यू सेड कि आपको म्यूजिक एक आर्ट के फॉर्म में देखना है, ना कि उसको मोनेटाइज नहीं करना है आपको. ये जान के बहुत अच्छा लगा कि ये जो पैशन है म्यूजिक का, इसको एक आर्ट के फॉर्म में आपने देखा और ना कि सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में इसे देखा जाए. ये क्योंकि आज का जो यूथ है, जैसे हम कहते हैं कि अपने पैशन को अपना करियर बना लो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं आपकी तरह जो पैशन को सिर्फ आर्ट की तरह देखना चाहते हैं. तो इसके साथ ही युवाओं को आप कोई मैसेज देना चाहेंगी म्यूजिक और पैशन से रिलेटेड कुछ, या म्यूजिक आपके लिए क्या है और युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगी आर्ट के लिए?
1: मैं ये कहना चाहूंगी कि हर किसी को लाइफ में क्रिएटिविटी रखनी चाहिए. आप भले ही उस चीज में स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, बट प्रैक्टिस के साथ अगर सिंगिंग भी है तो वो बेटर हो जाएगी. तो अपने आप को जज नहीं करना चाहिए एंड क्रिएटिव चीजों को ट्राई करके प्रैक्टिस करना चाहिए, फिगर आउट करना चाहिए कि आपके लिए व्हाट वर्क्स बेस्ट.
0: अरे वाह डायना, ये मैसेज हम उम्मीद करते हैं कि जो हमें युवा अभी सुन रहे हैं उनके, या जो जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक चेंज लाएगा और उन्हें ये लाइन फील भी होगी. अब बस आपसे एक आखिरी सवाल और एक आखिरी रिक्वेस्ट भी कि आप सिंगर हैं और आज आप आकाशवाणी की ओर से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, और जो गीत आप सुनना चाहेंगे वो ऐसा हो जो आपको परफॉर्म करना भी बहुत पसंद हो, और दो चार लाइन हमारे लिए गुनगुना दीजिए.
1: जी जी बिल्कुल. द सॉन्ग आई वॉन्ट टू लिसन इज दीवाना हुआ बादल. ये बहुत ही पुरानी मूवी, शम्मी कपूर की मूवी कश्मीर की कली से है, एंड ये ऐसे जाता है

0: जी, एक और हमारी युवा साथी नजर आ रही है, तो चलिए हम चलकर उनसे बात करते हैं। बताइए, आपका नाम क्या है?
1: हेलो, मेरा नाम राधिका है।
0: राधिका, आप कहाँ से हैं
1: मैं इंदौर से ही हूँ।
0: और अभी आप क्या कर रही हैं?
1: मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ और मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में परस्यू कर रही हूँ।
0: क्या कंप्यूटर साइंस हैज ऑलवेज बिन योर इंटरेस्ट, या आप इस फील्ड में क्यों हैं?
1: एक्चुअली यस, इट हैज़ बिन माई इंटरेस्ट बिकॉज मुझे बचपन से ही काफी इंटरेस्ट था कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में।
0: ओके
1: मैंने डिसाइड किया था कि मैं CSE परस्यू करूंगी एंड अभी इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक अपॉर्चुनिटी को जितनी हो सके अच्छे से
0: ग्रैप करें।
1: तो मैं चाहती हूँ कि यस एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और
0: ओके, ये तो हो गई आपके पढ़ाई से रिलेटेड बातें। आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हैं इन्वॉल्व किसी तरह की?
1: मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ,
0: ओके
1: कथक।
0: ओके
1: और मैं जब 5.5 साल की थी मैं तब से ही

0: कथक सीखती आ रही हूँ और वो मेरी एक बहुत अच्छी हॉबी है जो मुझे मेरे पढ़ाई और जो कंटिन्यूस लाइक जो भी स्ट्रेस वर्क है लाइक क्योंकि कंटिन्यूस 12th जेई मैं PCM स्टूडेंट थी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उसके बाद कॉलेज और इन सबसे जब अलग हटना हो तो मैं हमेशा डांस के लिए ही.
1: वाओ. आपने कहीं से सीखा है, आपने कभी एग्जाम्स दी है, आप कहीं परफॉर्म कर चुकी हूँ अगर आप हमें बताना चाहे तो.
0: हाँ, मैं दमयंती भाटिया मृद्वाल मैम के अंडर सीख रही हूँ और अभी थोड़ा पढ़ाई के कारण ही छूट गया था मेरा रेगुलर क्लास जाना. बट अब मैं वापस से उसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ एंड डेफिनेटली मैंने 4 उसमें से इयर्स होते हैं तो बीए के लिए एंड उसे मैंने 4 साल तक की एग्जाम्स दी हुई है और मुझे अभी 5th ईयर से आगे करना है उसको.
1: और राधिका, अभी हम देखते हैं कि मतलब आज का जो यूथ है, आज का जो युवा वर्ग है, वो दे आर इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज. तो आपने हमें आपकी पढ़ाई के बारे में बताया, आपने बताया कि आप क्लासिकल डांसर हैं, इसके अलावा आपकी कोई हॉबीज और इंटरेस्ट हो तो आप हमें बताएं.
0: मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है.
1: ओके.
0: तो उसमें ऐसे पर्टिकुलर कोई जॉनर नहीं है बट इफ आई प्रिफर तो मुझे साइंटिफिक लाइक साईफाई और फिक्शन और अभी मुझे एक्चुअली सस्पेंस थ्रिलर बुक्स अभी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है. एक ऑथर है फ्रीडा मैकफाइडन करके उनकी बुक्स का जो लाइक जैसे प्लॉट ट्विस्ट है इतनी ग्रिपिंग बुक्स होती है कि एक बार आप पढ़ना चालू करो तो यू कांट स्टॉप, यू हैव टू फिनिश इट इन वन सिटिंग बिकॉज वो बहुत ऐसी कैप्टिवेटिंग होती है. मुझे अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट.
1: इफ आई एम नॉट रॉन्ग द हाउसमेड शायद उन्हीं की है. मैं भी वो किताब पढ़ चुकी हूँ. एक्चुअली
0: वो बहुत ही इट्स वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज उसके अलावा भी बहुत मैं रिकमेंड करना चाहूंगी नेवर लाइव बुक, वो बहुत अच्छी है. और हाउसमेट की अभी मूवी भी आई है तो मैं बहुत एक्साइटेड उसे देखने के लिए.
1: वाओ, दैट्स गुड. एंड आप और अपने फ्री टाइम में और क्या करती है? मुझे पता है कि मैं आपको बहुत ज्यादा ग्रिल कर रही हूँ उन क्वेश्चन के साथ में बट आई थिंक हम बस आपको एज अ पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे श्रोताओं को भी बताना चाह रहे हैं कि राधिका जी फ्रॉम इंदौर जो अभी बीटेक परस्यू कर रही है और किताबें पढ़ना पसंद करती हैं और कथक डांसर हैं, वो और क्या करना अच्छा उन्हें लगता है, तो आप और क्या बता सकती हैं हमें अपने बारे में?
0: फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ग्रिल नहीं कर रही हैं, आई एंजॉय दिस क्वेश्चनेयर. और मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है एक्चुअली. टेलर स्विफ्ट आई एम श्योर एवरीवन नोस.
1: ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स.
0: आई एम अ ह्यूज स्विफ्टी एंड आई जस्ट लव हर सॉन्ग्स. आई लव द लिरिसिज्म और उसमें जो पूरी मेलोडी से लेके लिरिक्स से लेके बहुत मुझे बहुत पसंद है.
1: आई थिंक उनके गानों में स्टोरी टेलिंग बहुत
0: बहुत ज्यादा और ऐसे इतना बड़ा जो डिस्कोग्राफी है कि आपको हर एक मोमेंट के लिए टेलर स्विफ्ट का ही गाना मिल सकता है. यू आर सैड, यू आर हैप्पी, आप कुछ भी फील कर रहे हो तो यू कैन जस्ट गो एंड लिसन वन ऑफ हर सॉन्ग्स एंड रिलेट.
1: तो राधिका, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातचीत करके. और एक बस छोटी सी तकलीफ आपको और देंगे कि आप अगर हमारे युवाणी प्रोग्राम में कोई भी एक गाना सुनना चाहें जो हम आपके लिए बजा सकते हैं तो वो कौन सा होगा?
0: हाँ, मैं चाहूंगी कि सौदेबाजी जो गाना है आई थिंक जावेद अली का,
1: यस,
0: वो आप प्ले करें.
1: बिल्कुल, आपके लिए हम वो गाना जरूर सुनाएंगे. धन्यवाद, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा.
0: थैंक यू, सेम.

0: चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारी एक और साथी से। नमस्ते, आपका नाम क्या है?
1: हेलो, मेरा नाम ममत्व जैन है।
0: अच्छा ममत्व, आप अभी क्या करते हो वैसे?
1: मैं अभी MBA कर रही हूँ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय।
0: अरे वाह, क्या बात है। सबसे पहले तो ममत्व, आपका ये जो नाम है ये काफी यूनिक है, इसका क्या मतलब होता है वैसे?
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे नाम को पहचाना। मेरा नाम एक संस्कृत वर्ड से डराइव है, दैट इज ममत्व, जिसका मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। तो
0: क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत मीनिंग है
1: जी। तो हमारे गुरुओं ने बोला है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव हमेशा एक माता का होता है, एक मम्मी का होता है, और उसके कंपैरिजन में कोई और प्यार इस दुनिया में नहीं टिक सकता, तो उसका मतलब होता है ममत्व।
0: बहुत ही खूबसूरत नाम है, जितनी आप खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपका नाम भी है। तो ममत्व, जैसे आपने कहा आप अभी MBA परस्यू कर रहे हो, तो MBA में कोई स्पेशल स्पेशलाइजेशन है आपका?
1: जी, मैं इंटरनेशनल बिजनेस से कर रही हूँ, जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सीखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सीखते हैं, कस्टम्स लॉज उनके बारे में सीखते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्योंकि जैसे हम जान ही रहे हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट भी पुश कर रही है और किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत मायने रखता है, तो ये फील्ड काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आगे और

0: भी ग्रो करेगी और कर ही रही है देखा जाए तो.
1: जी
0: तो मामा जो इसके पहले आप वैसे इंदौर से ही हो?
1: जी नहीं, मैं नरसिंहपुर से हूँ जो जबलपुर के पास आता है, और मैंने अपना ग्रेजुएशन भी इंदौर से ही किया है. मैंने अपना ग्रेजुएशन बीबीए टूरिज्म में किया हुआ है.
0: अरे वाह क्या बात है, तो टूरिज्म से इंटरनेशनल बिजनेस ये शिफ्ट कैसे हुआ?
1: मैंने अपने टूरिज्म के 3 साल में बहुत सारे इवेंट्स किए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे. तो जब मैंने इंटरनेशनल इवेंट स्टार्ट किया तो मुझे बहुत मजा आया इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करके, उनसे बातचीत करके. तो मुझे और रुचि हुई कि मैं और इस फील्ड में आगे बढ़ूं, तो फिर मैंने इंटरनेशनल बिजनेस ही चूज कर लिया.
0: अच्छा, जैसे आपने भी इवेंट्स की बात की, तो इवेंट्स किस तरह के इवेंट्स आपने मैनेजमेंट में किए हैं?
1: मैंने स्पोर्ट्स इवेंट ज्यादातर किए हैं. जैसे अभी आप देख रहे हो कितना ज्यादा स्पोर्ट्स बढ़ रहा है, तो खेलो इंडिया जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें बच्चों के स्पोर्ट्स की कला को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में जो पुराने खेल हैं जैसे कलरीपयट्टू, हमारे इंडिया का बहुत नेशनल गेम हुआ करता था पुराना टाइम में, मार्शल आर्ट्स कलरीपयट्टू से बाहर आया है. खो खो, इंटरनेशनल खो खो वर्ल्ड कप हुआ था अभी जनवरी 2025, ताकि खो खो को एक ओलंपिक स्तर पे उसको उसकी जगह मिल सके, इसलिए वो इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से. तो तमाम इंटरनेशनल इवेंट्स किए हैं मैंने. T20 मेंस वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप किया हुआ है.
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा. T20 मेंस वर्ल्ड कप और वुमेन्स वर्ल्ड कप तो सच में बहुत बड़ी बात है, जिस हिसाब से क्रिकेट वर्ल्ड कप को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
1: बहुत बहुत अच्छा था, और मैंने देखा कि वहाँ पे कितने सारे इंटरनेशनल लोग आते हैं और वो इंडिया को किस नजरिए से देखते हैं. उन्हें इतना एक्साइटमेंट है इंडिया के लोगों से मिलने का, वो इतनी खुशी से इंडिया आते हैं, उन्हें उनकी आंखों में एक चमक है कि लोग कितने अच्छे हैं इंडिया में, कितनी ज्यादा कल्चर है इंडिया में, कितना ट्रेडिशन है इंडिया में. वो सब लोग बहुत खुश हुए थे जब उन्हें समझ आया कि कल्चर क्या होता है इंडिया में, ट्रेडिशंस क्या होता है, जो उनकी कंट्रीज में नहीं देखा जाता है अक्सर, बट जब उन्होंने ये सब हमारे देश में देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश थे इस चीज को लेकर.
0: क्या बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी कंट्री की जो स्पेशलिटी है वो हमारा कल्चर है, वो हमारा ट्रेडिशन है, और जिस हिसाब से हम सब मिलकर उसे सेलिब्रेट करते हैं ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है. और जो डाइवर्सिटी है, हम हर किसी को अपना बना लेते हैं और डाइवर्सिटी को भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये इंडिया की जो ब्यूटी है ये जाहिर सी बात है कि बाहर के लोग देखना चाहते हैं और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. तो इसके अलावा मम्मा जो आपकी हॉबीज क्या क्या है, क्या क्या करना पसंद करते हो आप?
1: जी मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, मुझे घूमना बहुत पसंद है, नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है.
0: और जैसे आपने कहा आप इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए करिए, तो शायद आपकी जो हॉबी मैच भी करेगी कि आप अलग अलग लोगों से दुनिया भर में मिलेंगे, आपको ट्रैवल करने को भी मिलेगा.
1: जी मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ट्रैवल करूँ और बहुत सारी जगहें देखनी है मुझे, लेकिन मैंने जितना देखा है पढ़ा है उन सबसे सुंदर सबसे प्यारा मुझे अपना देश इंडिया ही लगता है.
0: अरे भाई बहुत ही अच्छी बात है. और जैसे अभी हम जानते हैं कि 15 अगस्त आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे हम बहुत ही जल्द मनाने वाले हैं, तो आपके लिए इंडिपेंडेंस का क्या मतलब हुआ और स्वतंत्रता के असली मायने क्या होते हैं एक युवा की नजर से?
1: मेरी नजर स्वतंत्रता का सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा लगता है मुझे कि इंडिया में सेक्युलरिज्म है, कि मैं जो धर्म चाहूं, मैं जो चीजें सीखना चाहती हूँ अलग अलग धर्मों से, मैं वो सीख सकती हूँ, मैं उन सब में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ. मुझे वो सबसे अच्छा लगता है इंडिपेंडेंस है, कि मैं जिस धर्म में जाऊँ, मैं जो कल्चर सीखना चाहूँ, मैं जहाँ जाना चाहूँ, जिस मंदिर जाना चाहूँ, जिस गुरुद्वारे जाना चाहूँ, मैं वो सब जा सकती हूँ, तो मुझे वो बहुत पसंद है.
0: बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ एक्सेप्टिंग, द फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड द फ्रीडम ऑफ एक्सेप्टिंग एनी कल्चर एंड सेलिब्रेटिंग एनी कल्चर, ये असली फ्रीडम की डेफिनेशन है. सच में मतलब आपकी जो सोच है वो जान के बहुत अच्छा लगा, और जिस हिसाब से एक युवा देश को देख रहा है ये जान के और भी ज्यादा अच्छा लगा कि आज भी युवा के लिए हमारे देश के कल्चर और ट्रेडिशन सबसे ऊपर आते हैं और उन्हें सेलिब्रेट करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है. तो जाते जाते मम्मा तो आपसे एक आखिरी सवाल कि आज आप आकाशवाणी की ओर से कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैं सुनना चाहूंगी चांदनिया 2 स्टेट्स.
0: अरे वाह बड़ा ही खूबसूरत सा गीत आपने सुना. फिर एक बार मम्मा तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका समय देने के लिए.
1: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.

0: चलिए श्रोताओं, अब हम चलते हैं हमारी अगली मेहमान से बात करने। तो नमस्ते जी।
1: नमस्ते,
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम जाह्नवी श्रीवास्तव है।
0: जाह्नवी, आप मुझे पहले बताइए, आप कितने साल की हैं और आप क्या करती हैं?
1: मैं 22 साल की हूँ और मैं एक शिक्षिका हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, 22 साल में आपने टीचर बनने का ऑप्ट किया। पहले तो मुझे आप इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताइए कि आपने टीचर बनने का कैसे डिसाइड किया।
1: स्टोरी कुछ इस प्रकार ही है थोड़ी सी, कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को उनको नर्चर करना बहुत पसंद है, अपनी शिक्षा उनसे बांटना और सब चीज बहुत पसंद करती हूँ मैं।
0: तो आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं?
1: मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ।
0: आप इंग्लिश पढ़ाती हैं, थोड़ा सा आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए कि इंग्लिश में आपकी रुचि कैसे जगी, क्योंकि आप जिस तरह से बात करें मुझे तो आप हिंदी में भी उतनी ही अच्छी लग रही हैं। तो आप इंग्लिश पढ़ा रही हैं तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि भाषाओं पर आपकी कमान मुझे लगता है अच्छी होगी। तो आप मुझे बताइए कि आपने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट कैसे चुना?
1: मैंने इंग्लिश चुना, मैंने जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी उसके बाद से मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू करा। नॉवेल्स पढ़ी काफी कुछ और फिर कॉलेज में लगा कि बैचलर्स और मास्टर्स इसी में करना चाहिए, तो मैंने इसी में आगे पढ़ाई करी है।
0: पहले तो हमारे श्रोताओं को थोड़ी सी बुक रिकमेंडेशन दीजिए, हमारे युवा श्रोताओं के लिए खासकर ऐसी कौन सी किताबें हैं जिन्हें वो पढ़ें जिनसे उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज भी आए, या अगर आप फिक्शन पढ़ती हो तो बिल्कुल फिक्शन की भी कहानियां या किताबें बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं और अपने कैरेक्टर में भी बहुत ज्यादा चेंज लाती हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा अच्छा करा है, उनके बारे में लिखा गया है। पुरानी किताब

0: जो है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी, जेन ऑस्टिन ने लिखी, ये सारी कुछ किताबें हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं।
1: बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं। तो कोई किताबों के नाम होंगे आपके पास में? एक तो
0: प्राइड एंड प्रेजुडिस है जेन ऑस्टिन की। फिर उसके बाद मेरी एक बुक है जो बहुत ही ज्यादा फेवरेट लगती है मुझे, वो बुक का नाम है माई डेज विद द बादशाह। ये रजनीकांत की ऑटोबायोग्राफी है जो उन्हें बुक में लिखी हुई है उनके डायरेक्टर ने उस मूवी की।
1: बहुत ही, ये तो इसके बारे में मुझे लगता नहीं कि ज्यादा लोगों को मालूम होगा,
0: इसके बारे में शायद ही किसी को ज्यादा।
1: ये तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के। जानवी, मुझे एक चीज बताइए, आप टीचर हैं, स्कूल में पढ़ा रही हैं, आप अभी खुद भी एकदम 22 साल की हैं, तो मतलब एकदम आप भी अडल्ट लाइफ में आपने भी एकदम एंट्री ही की है अपने, ऐसा देखा जाए तो। मुझे लगता है कि आजकल के जिस तरह से वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, उसमें मुझे लग रहा है पढ़ाई के इम्पोर्टेंस पे लोगों ने बात करना कम कर दी है, क्योंकि सोशल मीडिया आ चुका है बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है कि हर कोई अपने आसपास के वातावरण से बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाता है, और पढ़ाई को अब लोगों ने इतना ज्यादा हाइप करके रख दिया है कि लोग डरने लगे हैं पढ़ने से। तो मुझे बताइए कि एज अ टीचर आप स्टूडेंट्स के लिए, या जो अपने मास्टर्स या पीएचडी या किसी भी तरह की एकेडमिक फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे?
0: पढ़ाई को जितना लोगों ने हाइप कर रखा है उतनी होती नहीं है। पढ़ाई तो बहुत ज्यादा ईजी होती है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अच्छा काम चाहिए, बेसिकली पैसे कमाने के लिए आजकल पढ़ाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मार्टनेस के लिए भी पढ़ाई होती है, एक पर्सनालिटी डेवलप आपकी पढ़ाई करती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है 10 लोगों में बैठने का, सारी चीजों का। तो पढ़ाई तो बहुत ज्यादा ही जरूरी होती है, और मैं तो एज अ टीचर एक बात बता सकती हूँ कि मैं अपने बच्चों को इसी तरीके से तैयार कर रही हूँ कि वो अच्छे से अपने आप को सोसाइटी में प्रेजेंट कर पाए।
1: बहुत अच्छी बात है। तो जानवी, चलिए हम कॉन्वर्सेशन के एंड पर ही चलते हैं, तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी।
2: तो दोस्तों, ये था हमारे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत।
1: हमें उम्मीद है आज का ये साथ आपको पसंद आया होगा। आज हमने हर घर तिरंगा अभियान की भावना को समझा, हमारे युवा साथियों के विचारों और अनुभवों को सुना, और उनके जीवन के सफर से बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला।
2: अब समय है उन दो सामान्य ज्ञान के सवालों के जवाब जानने का, जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछे थे।
1: और उसी कड़ी में आज का पहला सवाल था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वॉटरफॉल कौन सा है, और इसका सही उत्तर है कुंचिकल वॉटरफॉल, जो कर्नाटक में स्थित है।
2: और दूसरा सवाल था कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, और इसका सही उत्तर है 5 जून।
1: अगर आपके दोनों जवाब सही थे तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां, और अगर नहीं भी थे तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर मिलेंगे 2 नए सवालों के साथ। आखिर सीखने का सफर कभी रुकना नहीं चाहिए, हमें दीजिए अनुमति। कल फिर मुलाकात होगी नई सोच, नई बातचीत, रोचक जानकारियों और आपके पसंदीदा गीतों के साथ।
2: तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए,
1: और इस स्वतंत्रता दिवस अपने घर के साथ साथ अपने दिल में भी तिरंगे का सम्मान बनाए रखिए। मैं हूँ जयती।
2: और मैं हूँ मार्गिशा। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संजू फिल्म का गीत। स्वर हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान के।

0: समझ है?
1: हाँ
2: बढ़िया।
3: हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में मिक्का सिंह और भव्या पंडित के स्वर में सुनिए सन ऑफ सरदार फिल्म का ये गीत, बोल हैं समीर और अनजान के।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत, और आइए अब सुनते हैं सुल्तान फिल्म का गीत। रचना है इरशाद कामिल की, संगीत है विशाल शेखर का, और स्वर है पपोन की।

आइए अब सुनते हैं वेलकम फिल्म का गीत। रचना है आनंदराज आनंद की, स्वर है श्वेता पंडित और अनजान सांगरी की।

आइए अब सुनते हैं मेहुना फिल्म का गीत। स्वर है सोनू निगम के, रचना है जावेद अख्तर की और संगीत है अनु मलिक का।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब राहत फतेह अली खान के स्वर में दबंग फिल्म का गीत। बोल हैं फाजिल अनवर के और संगीत है साजिद वाजिद का।

एक था टाइगर, इस फिल्म का गीत सुनिए सुखविंदर सिंह के स्वर में, रचना है नीलेश मिश्रा की और संगीत है सोहिल सेन का।

गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं राजेंद्र नागले। आइए सुनते हैं उनके स्वर में ये गजल। तबला संगत है उल्लास राजहंस की और वायलिन पर है कमल कामले।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत और आज हमारे कलाकार हैं राजेंद्र नागले और अब सुनवाते हैं इन्हीं के स्वर में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र नागले के स्वर में ये गजल। वायलिन पर थे कमल कामले और तबला संगत थी उल्लास राजहंस की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं निमाड़ी लोकगीत। आज हमारे कलाकार हैं भाईराम रणसोरे और उनके साथी। तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे भाई राम रणसौरे और साथियों के स्वर में निमाड़ी लोकगीत। लोकगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुद्दुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। इससे पहले गृहमंत्री पुडुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति

0: पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी के मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई दुर्घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलटों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है आज और कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम। आज की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम है, प्रादेशिक समाचार होंगे 7:10 पर, किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी होगा 7:20 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा वार्ता, घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण एवं रोबोटिक सर्जरी, जानकारी देंगे डॉक्टर कृष्णकांत नेमा। सुर्खियों में 8:00 भोपाल से रिले होगा, डगर विकास की 8:15 पर भोपाल से रिले होगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा 8:30 पर, चित्रगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन होगा 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा दिल्ली से रिले होगी 10:00। ये थे आज की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। कल यानी 10 अगस्त के मुख्य कार्यक्रम हैं, भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना सुबह 6:05 पर होगा, चिंतन सुनेगा 6:30 पर, खेती की बातें में जानेंगे पशुओं में प्रसव के बाद मां की मृत्यु हो जाने पर क्या करें, जानकारी देंगे डॉक्टर संदीप नानावटी, और सोयाबीन में मौसमी सलाह जानेंगे, माफ़ कीजिएगा, सोयाबीन में मौसमी सलाह जानेंगे, खेती की बातें में 6:35 पर, गुड मॉर्निंग इंदौर सुनिएगा 7:20 पर, फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 8:30 पर, मराठी कार्यक्रम होगा 9:00, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा गायन कल्याणी कानड़े का, राग होगा खमाज ठुमरी, खमाज ठप्पा और

भैरवी दादरा। 10 बजे जिले की चिट्ठी भोपाल से रिले होगा। MH हॉटलाइन ये फोन इन कार्यक्रम होगा 10:05 पर। फोन करें, गीत सुने, ये फोन इन कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा 11 बजे। दोपहर 12:02 और 2 बजे सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये फिल्म संगीत भोपाल से रिले होगा। दोपहर 12:30 पर भोपाल केंद्र से ही रिले किया जाएगा संग्रहालय से। भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा 1 बजे स्वास्थ्य दर्पण। लोक संगीत का कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा 1:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम भी भोपाल केंद्र से रिले होगा 1:45 पर। प्रादेशिक समाचार होंगे भोपाल से 2:10 पर। चित्रपट संगीत भोपाल केंद्र से ही रिले होगा 2:30 पर। शाम 5 बजे कार्यक्रम होगा युवा साथियों का युववाणी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 5:45 पर और 8:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT होगा शाम 6 बजे। सुगम संगीत में सुनिएगा मन्ना डे को शाम 6:30 पर। 7:20 पर होगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। संसद समीक्षा दिल्ली से रिले होगी रात 8 बजे। सुर्खियों में 8:15 पर भोपाल केंद्र से रिले होगा। चित्रगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर। पब्लिक स्पीक दिल्ली से रिले होगा 9:30 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन होगा रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा गायन विनायक तोरवी का, राग होगा छायानट। कार्यक्रम होगा रात 10:30 पर। ये थे कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम भोपाल से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: बंधु, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुद्धू।
5: What?
6: ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से 4 नई हवाई सेवाओं की शुरुआत की। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में रैलियों और पौधारोपण के जरिए संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। और प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, दतिया, रीवा और सीधी

0: में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत तिरंगा रैलियों, यात्राओं, संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगा लेकर स्टेडियम के लिए रवाना हुए। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य, वरिष्ठ नागरिक और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने और अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रदेश में आज चार नई सीधी हवाई सेवाओं की शुरुआत हुई। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से रीवा, भोपाल से पटना, रीवा से कोलकाता और जबलपुर से कोलकाता उड़ानों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आने वाले समय में करीब 10 नए एयरपोर्ट भी विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भोपाल से शारजाह की सीधी उड़ान शुरू होने वाली है।
1: दो महीने बाद शारजाह की उड़ान यहाँ से चालू होने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी। अब हमको दिल्ली मुंबई ऐसे बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना है तो हम अपने नगरों से जा सकते।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक की आकांक्षा पूरी हो सके। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम और सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। मुख्य सचिव ने खराब ट्रांसफार्मर, हैंडपंप, 108 एम्बुलेंस सेवा और विद्यालयों से ड्रॉप आउट बच्चों से संबंधित शिकायतों का भी प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की सेवाओं और योजनाओं का लाभ आम जन तक आसानी से पहुंचना चाहिए। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए करीब 50 बिंदु निर्धारित किए गए हैं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़कर आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का सशक्त अभियान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश में आदिवासी समाज की संस्कृति, एकता और प्रकृति से जुड़ाव की तस्वीर देखने को मिली। ग्वालियर में आदिवासी संगठनों ने विशाल रैली निकालकर शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और संस्कृति संरक्षण का संदेश दिया। रैली में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक नृत्य किया। इंदौर में भी आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। वहीं बुरहानपुर के पीपल गांव में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा और सिंचाई की जिम्मेदारी भी ग्रामीणों ने ली। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झाबुआ, धार, खरगोन सहित विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार जिले के बदनावर में आज हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई।

0: जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस करीब 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार की खिड़की का कांच तोड़कर अंदर से शवों को बाहर निकाला। धार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर गुजरात लौट रहे श्रद्धालुओं की इको वैन को गलत दिशा से आ रहे कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी।
1: बदनावर में एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई। प्रथम जानकारी जो प्राप्त हुई उसके अनुसार एक परिवार दाहोद का रहने वाला था जो उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करके लौट रहा था। उसी दौरान रॉन्ग साइड से आने वाले कंटेनर के द्वारा उसको सामने से टक्कर मारी गई जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई। एक घायल है, हॉस्पिटलाइज है, उसकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। और प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली उसमें कंटेनर का जो ड्राइवर था उसके द्वारा एल्कोहलिक होना पाया गया है। इसमें उसके एमएलसी कराई जाएगी और उसमें गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने आज दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक औसतन 17.2 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 20% कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 और पश्चिमी हिस्से में 18% बारिश की कमी दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था और अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्र छात्राओं की भी ऑनलाइन हाजिरी के लिए आदेश जारी किए हैं। नर्मदापुरम जिले में नागद्वारी की यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और मेला समिति ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और यातायात की व्यवस्था की है। आगरमालवा में श्रावण माह के द्वितीय सोमवार पर कल 51,000 कलश यात्रा निकाली जाएगी और नीमच में नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा वीर पार्क रोड स्थित दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से 4 नई हवाई सेवाओं की शुरुआत की। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में रैलियों और पौधारोपण के जरिए संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय। दतिया, रीवा और सीधी में भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन आपकी बहन तुलसा की राम राम। भाई बहन रोहिणी, अभी हमारा खेत में सोयाबीन, कपास, मूंगफली, खरीफ की फसल लगेल छे। कथई कथई तो पौधा बहुत बड़ा भी गया ना, जिन ने पहले बुवाई करी दी थी, पर जिन भाई ने ना देरी से बुवाई करी उनका पौधा भी छोटा होएगा ना, हमारी फसल भी अच्छी होगा क्योंकि आपने अच्छी किस्म का बीज भी लगाया होगा, बीजोपचार करी ली होगा, जेका से हमारी फसल पर रोग व्याधि को प्रकोप भी कम होएगा। पर कदी जल भराव जैसी स्थिति आई जाए तो पानी का खेत में से हम निकाल देवा, नहीं तो हमारी फसल खराब होने लगी जाएगा। साथ समय समय पर अपना खेत की मिट्टी की जांच भी कराता रहवा, जेका से हमको पता चली जाएगा कि हमारा खेत में किना पोषक तत्व न की कमी छे। तो भाई बहनों, आज हम एज बारे में बात करांगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत सरकार की एक योजना है, जेकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 से हुई थी। इना कार्ड से किसान भाई ना का खेत की मिट्टी की ताकत न उकी कमी को हमको पता चली जाए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सहायता से किसान भाई ना का ई मालूम हुई जाए कि फसल का अच्छी करना का लेना उकाम हम कौन सी खाद डाला न केतरी मात्रा में डाला। साथ एकाम मिट्टी का 12 गुण की भी जांच हो, जैसो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन न उको पीएच मान। इन योजना को नारो छे स्वस्थ धरा खेत हरा, यानी कदी अपनी जमीन स्वस्थ रहेगा तमस तो अपनो खेत भी हरो भरो रहेगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से खाद को खर्चो भी कम लगेगा, अन्य फसल की पैदावार भी बढ़ेगा, साथ ही मिट्टी भी खराब होने से बची जाएगा। एका लेना खेत की मिट्टी को नमी लई न प्रयोगशाला में हम जांच का लेना भेजी देवा, विशेषज्ञ जांच हुई जाने के बाद हमको की रिपोर्ट बनी न देगा न। हर 3 साल में ई कार्ड नयो मिली जाए, क्योंकि भाई हुन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का किसान भाई न का उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति का बारे में जानकारी मिली जाए, साथ ही मिट्टी का स्वास्थ्य न की उर्वरता में सुधार कर लेना, उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व न की सिफारिश भी करे। एका लेना समय समय पर हम मिट्टी की जांच कराड़ी न हम अपना खेत में फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करी सकान। न भाई बहनों, अभी श्रावण को महीनों चली रोज, तो क्यों नहीं अपन भी अपना कार्यक्रम में एक मालवी लोकगीत सुना, अपना भाई ओम प्रकाश सोमानी को गायल भगवान शंकर की महिमा जी का वर्णन छे।

अब लजा तोरे हाथ में शिव नंदी के यशवार, अब लजा।

0: भयों अभी हम ओम प्रकाश सोमानी ने उनकी मंडली को गाया ली मालवी लोग भी सुनी रहा था न भयों। देखो आज का समय में कई लोगों का समस्या भी रही कि घुटना नमत तकलीफ भी रही जरा चल फिर कर तो उनका घुटना दुखना लगी जाए तो ऐसा कई कारण छे जेका से घुटना नमत दर्द हो कई लोगों को कूल्हा प्रत्यारोपण करने की भी जरूरत पड़े तो इन्हीं सब बात न जानने का लेना अपन सुनांगा भेंटवार्ता। भेंटवार्ता को विषय छे घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण एवं रोबोटिक सर्जरी। जानकारी देगा डॉक्टर कृष्णकांत नीमा निनका से बातचीत करी अपनी बहन प्रियंका पटवारी ने तो सुना अपन इनी भेंटवार्ता।
1: भाई बहन ना बढ़ती उम्र का साथ हमारा जोड़ों का दर्द ना खासकर घुटना और कूल्हा का दर्द यह एक बड़ी समस्या बनी जाए। कई बार इतनी स्थिति गंभीर हुई जाए कि एक बदलना को या जिकापन का कि प्रत्यारोपण ही को एकमात्र रास्तो बचे पर विज्ञान ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि इन्हीं जो सर्जरी है ऑपरेशन अपन जिका कहा उका रोबोट का द्वारा भी संभव ही गया है। तो भाई बहना आज हम इना बारा में ही बात करांगा। हमारो विषय है घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण और रोबोटिक सर्जरी और इना विषय पर बातचीत करने के लिए हमारा साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर कृष्णकांत नीमा। तो सबसे पहला अपन उनको कार्यक्रम में स्वागत करा राम राम।
2: राम राम नमस्ते।
1: तो डॉक्टर साहब सबसे पहले यो सवाल की जब क्योंकि विज्ञान ने तरक्की करी ली है और यो शब्द अब आम हुई गयो है कि भाई रोबोटिक सर्जरी पर सुनीन मन में क्यों डर भी आए कि भाई कोई मशीन जो है वह

0: ऑपरेशन करी सकेगी, तो सबसे पहला तो उन्हीं चीज का हमारा समझाओ हमारा श्रोता भाई बहन ना कि रोबोटिक सर्जरी असल में कई है।
1: तो रोबोटिक सर्जरी मतलब रोबोट स्वयं सर्जरी नहीं करेगा, इसमें सर्जन की जो उपलब्धि है वो नहीं जाती, सर्जन को सिर्फ असिस्ट करता है रोबोट।
0: अच्छा।
1: जो रोबोट है वो सिर्फ सर्जन को एक्यूरेसी और प्रिसीजन देता है, कंट्रोल आज भी सर्जन के हाथ में है और सर्जन ही सर्जरी करते हैं। रोबोट सिर्फ एक टूल है या फिर एक मशीन है जो हमको अच्छी प्रिसीजन लाने में मदद करता है, और आज भी कंट्रोल जो है वो सर्जन द्वारा ही कराया जाता है रोबोट को, बस थोड़ा सा मरीज को ज़्यादा फायदा देने के लिए और जल्दी रिकवरी के लिए हम ये नई मशीन आज अवेलेबल है और जिससे मरीजों को ज़्यादा फायदा मिलता है।
0: बिल्कुल, तो सबसे पहला क्योंकि यह समस्या आम हुई कि है, चाहे मतलब युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, जो अपन सुनना में आए सब योज करे कि घुटना बहुत दुखी रहा है, उठना बैठना में दिक्कत है, तो इको कई उपाय है कि अपन किन्नी बातना को ध्यान रख सकता है। तो सबसे पहला तो अपन इस बचने को उपाय का बारे में ही बात करना।
1: तो कोई भी बीमारी का इलाज से बेहतर है कि हम उसको बचा ले कि वो बीमारी हो ही ना। तो इसके लिए तीन चार चीजें हैं जो अगर रोजगार में व्यक्ति करें तो उससे उनका घुटने में जो दर्द है वो बहुत लेट आएगा और उनके नॉर्मल घुटने हो सकता है जिंदगी भर चल जाए या कभी बदलने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, उनमें से कुछ है जैसे एक व्यायाम, डेली आप योगा प्राणायाम जिम कुछ भी तरीके का, किसी भी तरीके का व्यायाम करें। मेरे पास बहुत किसान मरीज आते हैं, उनका ये कहना रहता है हम तो खेत में दिन भर लगे रहते हैं काम करते हैं तो वो ही व्यायाम है।
0: हाँ,
1: नहीं, वो हाँ, सही
0: या
1: नहीं
0: सोच है उनके कि हाँ यो कसरत हाँ, तो हमारी हुई जरी है, हाँ, वहां की जरी।
1: नहीं, पर वो कसरत गलत है, वो कसरत नहीं है, ये तो आप शरीर से उपयोग ले रहे हैं, शरीर के लिए करना। तो शरीर के लिए व्यायाम जो हम जैसे योगा करते प्राणायाम करते उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो आप शरीर की मांसपेशी और हड्डी को मजबूत करने के लिए काम आते हैं, और जो आप खेतों में काम करते हैं वो तो आप शरीर से उपयोग ले रहे हैं, पर शरीर की मदद करने के लिए या शरीर को ताकतवर करने के लिए जो चीजें रहती है उसमें ये जिम हो गया, या आप किसी भी तरीके का खेल खेलते हैं, या आप किसी भी तरीके का व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो ये आपके शरीर को मदद करेंगे। तो पहली चीज हो गई व्यायाम, दूसरी हो गई आप जमीन पे पालती ना लगाएं। अगर आप 40 या 50 की उम्र के पास आ रहे हैं तो या उसके बाद में आप जमीन पे ना बैठे, पालती ना लगाए, घुटने को ज्यादा ना मोड़े और सीढ़ियां कम उतरे चढ़े अगर आपको घुटने में दर्द है तो, और कुछ इस तरीके का व्यायाम करते रहे घुटने से संबंधित। और अगर आपको थोड़ा सा भी दर्द है घुटने के आसपास के एरिया में, घुटने के आसपास के इलाके में, तो तुरंत एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाइए और वो आपको बेटर सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और जैसे किसाना की तो बात अपन ने कर ली, पर जो महिला ना है भी चाहे घर काम करी रही है या फिर साथ में अगर ऑफिस भी जा रही है, तो दो ही जगह जब अगर भी काम करी रही है, घर में भी कोई भी काम है, तो उनका भी यह समस्या अब आम हुई है, तो उनका किना तरीका से, क्योंकि काम तो करना है,
1: सही है
0: नहीं, तो उनका अपन टाली भी नहीं सकता, तो असम महिला ना हमारी कहीं ध्यान रखी सकती है।
1: वही जैसे किसान जो महिला है या जो महिला है वो घर का काम को ही अपनी व्यायाम समझते, तो आपको एक दिन में एक घंटा अपने शरीर के लिए निकालना है, किसी तरीका का व्यायाम करना है। आजकल गाड़ी हो गए, बसेस हो गई, तो क्या है मरीज जो व्यक्ति है मनुष्य है वो चलना कम कर दिया है जिसकी वजह से हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो जाती है। और दूसरा कुछ तरीके के परे जैसे पालती लगाना, इंडियन टॉयलेट में जाना, नीचे बैठना, तो ये सब चीजें जो है उनको बचाना चाहिए। महिलाओं में जो महावारी जब बंद होती है उसके बाद से बहुत सारे हॉर्मोन्स बॉडी में कम हो जाते हैं जिसकी वजह से हड्डियां काफी कमजोर होती है, वो एक समय है तब महिलाओं को व्यायाम और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, एक्सरसाइज और बढ़ाना चाहिए, और अपनी जिससे उनका मानसिक जो तनाव है वो भी कम होता है, क्योंकि जब महावारी बंद होती है हार्मोन चेंज की वजह से एक मानसिक तनाव हो जाता है महिलाओं में, डिप्रेशन होना, चिड़चिड़ापन होना, तो एक जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उससे आपका एक मानसिक तनाव जो है वो भी कम होता है, आप अच्छा महसूस करते हैं मानसिक रूप से और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो शरीर स्वस्थ रहेगा और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तो आप जीवन में और अच्छे से सारा काम कर पाएंगे जो भी आप।

0: कर रहे हैं।
1: तो जैसा मान लो कोई समस्या अगर या ज्यादा ही बढ़ी गई है और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद असु कब जरूरी हो जाए कि हमारा जो घुटना को प्रत्यारोपण या कूल्हा को प्रत्यारोपण कराना जरूरी है, तो ये किन्हीं चीज किन्हीं परिस्थिति में हमारे को फैसलो लेना चाहिए कि हाँ हम अपना घुटना बदलवेला।
0: अगर किताबों में देखा जाए तो किताबों में हजारों कारण बताए घुटना प्रत्यारोपण पे, पर मैं मेरे मरीज को एक ही कारण बताता हूँ कि कब आपको घुटना प्रत्यारोपण करना है, और उसका एकमात्र कारण है वो है दर्द, दर्द और दर्द, सिर्फ दर्द। अगर आपको दर्द इतना है कि आप आपके रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप असहनीय दर्द हो रहा है आपको, तो उस कंडीशन में ही आपको जो घुटना प्रत्यारोपण या नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं तभी करवाना है। उसके अलावा अगर आपको कोई और कारण बता रहा है तो वो बिल्कुल भी आपको नी रिप्लेसमेंट या घुटना प्रत्यारोपण करवाना ही नहीं है। सिर्फ एक ही कारण है, वो है दर्द, दर्द और दर्द।
1: अच्छा, अगर लगातार दर्द नहीं है तो कहीं ना कहीं हम इना चीज
0: उसको
1: ना
0: टाल
1: ओका,
0: सकते हैं,
1: हाँ
0: कुछ
1: बिल्कुल।
0: समय के लिए
1: और
0: टाल
1: अगर
0: सकते हैं।
1: असहनीय है तो फिर
0: जी
1: हमारा उना बारा में सोचना पड़ेगा।
0: जी
1: और जैसे कि अपन ने सर्जरी की बात करी, तो एक में रोबोटिक सर्जरी करवाना सा और एक सामान्य जो हम सर्जरी करवाए, तो दो ही में कई अंतर है। और एक में ठीक होना में मरीज का कितना समय लगा है, तो इसका बारे में हमारा श्रोता ना का विस्तार से बताओ।
0: कोई सा भी आप नी रिप्लेसमेंट करेंगे तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी आप नी रिप्लेसमेंट करेंगे, भले ही रोबोट हो या बिना रोबोट हो या कोई और टेक्नोलॉजी से आप नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या कोई सा भी इम्प्लांट लगा रहे हैं, तो आपको घुटने में कुछ समय तक तो दर्द रहेगा। साथ में आपको महीना भर की फिजियोथेरेपी एडवाइस करी जाती है कि 1 महीने तक आपको कसरत या फिजियोथेरेपी व्यायाम करना पड़ेगा। और वो हम कई सारे मरीजों को जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं रहते हैं उनको हम स्वयं बैठ के आधी घंटा एक कसरत सिखाते हैं कि वो आप घर पे डेली करते रहिए तो इम्प्रूवमेंट अच्छा हो जाता है। अब इसमें रोबोट के क्या फायदे? तो रोबोट में रिकवरी बहुत फास्ट होती है, उसमें फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती। पेशेंट पालती लगा सकता है, जमीन पे बैठ सकता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, तो वो बहुत जल्दी अपने काम पे लग जाता है। 10 दिन 15 दिन खून का प्रभाव बहुत कम होता है, चीरा बहुत कम लगता है। और
1: अच्छा।
0: जो इम्प्लांट है, जो इम्प्लांट एक नई चीज है जो आप बाहर से लगा रहे हो, उसकी भी एक लाइफ होती है, वो कितना साल चलेगा। तो जब आप रोबोट से कराते हैं तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो आप अगर कन्वेंशनल तकनीक से जो हाथों से करते थे उसमें नॉर्मली लोग कहते थे 10 से 15 साल, तो इसमें आप 15 से 20 साल तक का भी समय आप काट आपका इम्प्लांट सर्वाइव कर सकता है।
1: अच्छा, और अभी एक में जैसा रोबोटिक सर्जरी जो है वह कई हर मरीज के लिए सुरक्षित है, या एक में ऐसा भी कोई मरीज जो है जिनका की और कोई समस्या है, तो जिनका जोड़ पूरी तरह से खराब हो गया है जो कपन गठिया या अर्थराइटिस का, तो इसमें कई अंतर है कैसे
0: तो
1: हम जाना।
0: रोबोटिक, अगर आपको घुटने की बात करें, अभी जो रोबोटिक सर्जरी है वो घुटने और कूल्हा प्रत्यारोपण के लिए अवेलेबल है। तो अगर आपको किसी भी तरीके से अर्थराइटिस या नी या हिप रिप्लेसमेंट बताया गया है कि करना है, तो आप कोई सी भी स्टेज पे हो, आपको नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक्स हमेशा मदद करेगा और ज़्यादा फायदा देगा कंपेयर टू नॉर्मल तकनीक।
1: अच्छा, तो और डॉक्टर साहब और कोई ऐसी बात जो हमारा श्रोता भाई बहना का तम अपनी तरफ से सुझाव देना चाहो।
0: दो चीज मैं बताना चाहूंगा। पहला, अगर आपको कोई भी घुटने में दर्द है तो उसका एक ही उपचार है, वो है या तो आप एक्सरसाइज करें, पट्टा लगाएं, फिजियोथेरेपी करें और दवाई गोली किसी डॉक्टर को दिखाएं और दवाई गोली लें। अगर आपको कोई भी डॉक्टर इंजेक्शन बताते हैं या किसी तरीके का कि घुटने में इंजेक्शन डाल देंगे, ये
1: हाँ,
0: कर
1: यह चीज
0: देंगे,
1: ग्रामीण क्षेत्र में कई बार
0: जी,
1: सुनना में आए
0: तो
1: हैं।
0: ये बहुत ही खराब चीज है। आपको कभी भी अपने घुटनों में इंजेक्शन नहीं लगवाना है, ये कम्प्लीटली एक, इसमें कहीं पे भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इससे आपको फायदा होगा, ये आपको नुकसान ज्यादा करके जाएगा। क्योंकि अगर आपको घुटने में दर्द है तो मान लीजिए आज नहीं पर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आपको हो सकता है कि घुटना प्रत्यारोपण की सर्जरी लगे, और जब आप इंजेक्शन लगवा लेते तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो एक चीज जो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि इंजेक्शन हमेशा अवॉइड करें, इंजेक्शन कभी नहीं लगवाएं अंटिल अनलेस आप बहुत ही यंग है, तो एक बात अलग होती है, वरना अगर आपको 40-50 के बाद है तो आपको कभी भी घुटने में इंजेक्शन के लिए कोई भी बोले कि इंजेक्शन लगवाना है तो कभी भी नहीं लगवाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा, आप किसी तरीका का व्यायाम करें और एक्सरसाइज करते रहें, धूप में बैठिए, जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहे, हड्डियों का

0: स्वास्थ्य बना रहे, जिससे आर्थराइटिस आपका ज़्यादा जल्दी नहीं होगा। और तीसरा, अगर आपको कोई भी नी रिप्लेसमेंट कहता है कि आपको रिक्वायरमेंट है, तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए और रोबोटिक ट्रेंड जो सर्जन है उनसे ही रोबोटिक्स कराइए। कई सारे सर्जन है जो रोबोटिक ट्रेंड नहीं है, उनसे रोबोटिक्स आप करवाएंगे भी तो भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप रोबोटिक में जो ट्रेन डॉक्टर्स है उनसे आप प्रत्यारोपण कराएंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा।
1: बिल्कुल, मतलब उनकी पहचान जरूरी है कि थोड़ा सलाह मशवरा करीन, अपना जानकारी निकालनी है कि जो डॉक्टर सही तरीका से इलाज करी सके, उनका करना ही अपना जानो है। और हमारी भाई बहना का लिए कोई विशेष सलाह?
0: विशेष सलाह यही है, व्यायाम करते रहे, अच्छा खान पान रखिए।
1: हाँ, खान पान को भी थोड़ी सी बात आएगी तो चर्चा करी ला अपन कि खान पान में हम असी किन्नी चीज ना को ध्यान रखा, क्योंकि आजकल असली और नकली दो ही चीज माँ मालूम ही नहीं पड़ा है। नकली में मिलावट कितनी है वह भी अपना मालूम नहीं है, तो असामा खान पान पर हम कैसे ध्यान दे सका जिससे कि समस्या ना।
0: सबसे बड़ी जो तकलीफ होती है कि जो हमारे मालवा और निमाड़ में जो लोग हैं वो ज्यादातर शाकाहारी है, और शाकाहारी लोगों के पास प्रोटीन का सोर्स बहुत कम रहता है। सो अगर हम अंडे नहीं खाते हैं और हम चिकन नहीं खाते या मांसाहारी नहीं है, तो हमारे पास शाकाहारी लोगों के पास प्रोटीन का सोर्स बहुत कम है। तो एक अपने आहार में प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाई जाए, प्रोटीन का आहार बढ़ाया जाए, जैसे दूध, दही, पनीर, सोयाबीन और अपना अंकुरित अनाज, मूंग, मोठ, चना, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खाएंगे तो आपको प्रोटीन अच्छा मिलेगा। दूसरा, उसके साथ अगर आप व्यायाम कर लेंगे और घी, तेल, समोसा, तली गली चीज इन सबको अवॉइड करेंगे, तो ये आपका बहुत ही पौष्टिक आहार है और इससे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको कोई गोली दवाई या आजकल मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, डब्बे आते हैं कि आप ये खा लीजिए आपको कभी ये नहीं होगा, ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बेसिक दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो हमारा देसी खाना है, दूध, दही, पनीर, ये अगर आप एक बैलेंस मात्रा में बिना तला गला खाए ले सकते हैं, तो आपको और कुछ खास खाने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल, यह बात तो बिल्कुल सही की डॉक्टर साहब तुमने। तो किसान भाई बहन, अगर जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा है तो उनका नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। और क्योंकि अब पहला का जो तकनीक से जो सर्जरी ना होती थी काफी दर्द रहता था, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुई है। और असम आधुनिक जो रोबोटिक सर्जरी है उसका द्वारा प्रत्यारोपण सुरक्षित भी और दर्द रहित भी है। तो डॉक्टर कृष्णकांत नीमा तमने हमारा किसान भाई बहना का मन में जो सवाल होगा तो कहीं ना कहीं उनका को समाधान मिले होगा। और इतनी अच्छी जानकारी देने का लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया, शुक्रिया मैडम।
2: किसान महीनोनी, अभी हम सुनी रहा था भेंटवार्ता घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण एवं रोबोटिक सर्जरी, जानकारी दी रहा था डॉक्टर कृष्णकांत नीमा, जिनका से बातचीत करी थी अपनी बहन प्रियंका पटवारी ने। भाई बहनों ने देखो, प्राकृतिक खेती से जमीन को स्वास्थ्य मजबूत रहे, न कभी जमीन स्वस्थ होएगा तो पौधा भी स्वस्थ रहेगा, न उनमें कीट बीमारी, न मौसम की विपरीत स्थिति से लड़ने की क्षमता भी आई जाए। एक ही खेती का लेना कोई भी बीज बाजार से खरीदनू नहीं पड़ता है, जेका से हमका लागत भी कम लगत, न पैदावार भी विषमुक्त रहे। कम लागत प्राकृतिक खेती में दुई प्रकार की खाद हम तैयार कर सकें, एक जीवामृत न दूसरी घन जीवामृत। इन्हीं पद्धति से एक देसी गाय का एक दिन का गोमूत्र न गोबर से एक एकड़ की खाद तैयार कर सकें। देसी गाय का एक ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु रहे, जो कि जर्सी या एचएफ का गोबर से 500 गुना ज़्यादा रहे। दूध नहीं देने वाली गाय, देसी गाय को गोबर में जीवाणु और ज़्यादा मात्रा में पाया जाए। तो भाई बहनों ने पहले हम बात करांगा जीवामृत के बारे में। जीवामृत खाद नहीं है बल्कि असंख्य सूक्ष्म जीवाणुओं को विशाल भंडार है। इना सूक्ष्म जीवाणु मट्टी, जल न हवा से पोषक तत्व नख अवशोषित करी न पौधा नख उपलब्ध कारण है। जीवामृत बनाना का लेना सामग्री, देसी गाय को गोबर 10 किलो, देसी गाय को गोमूत्र 8 लीटर, गुड़ 2 किलो, बेसन 2 किलो, बड़ा पेड़ की जड़ का पास की मिट्टी 1 किलो न पानी 180 लीटर। सभी सामग्री नख छायादार जगह पर प्लास्टिक का ड्रम में डाली न हम घोड़े लेवा। चार दिन तक सुबह शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी का डंडा से 2 मिनट तक घोड़ा। ड्रम ख बोरा से ढाकी देवा, न छठवा दिन से एक उपयोग हम करने लगी जावा। जीवामृत ख महीना में एक या दुई बार 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से सिंचाई का पानी का साथ हमको देनु चाहिए।

जी, खरीफ मौसम में पर्याप्त नमी अवस्था में बुवाई से पहला खेत में हमको एक छिड़कनू चाहिए। जीवामृत डालने से जमीन में जीवाणु न की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ी जाए न जो कि मिट्टी की भौतिक न जैविक गुण में भी वृद्धि करे। हम बात करा घन जीवामृत की, तो भाई बहनों घन जीवामृत में भी सूक्ष्म जीव है जेको हम यूरिया की तरह कभी भी प्रयोग कर सका। एक हमको सामग्री लगेगा देसी गाय को गोबर 100 किलो, गुड़ 1 किलो, दलहन आटो 2 किलो, खेत की मिट्टी 1/2 किलो न गोमूत्र 1/2 लीटर। सभी सामग्री का अच्छी तरह से गुथी लेवा जिका सी हलवो जसो गाढ़ो बनी जाए। उखा 2 दिन तक बोरा से ढकी न रखा न थोड़ो पानी छिड़की देवा। उखा इतरो घणो बनावा कि उखा लड्डू बनी जाए। इना गिना लड्डू नख पेड़ पौधा न कपास रखी सका जिका सी जीवामृत जड़ न तक पहुँची सक न एकलण जमीन में नमी होनु बहुत जरूरी छे। तो भाई बहनों गीला घन जीवामृत ख छायादार जगह पर अच्छी तरह फैलाई न सुखाई देवा। सूखना पर लकड़ी सी पीटी न बारीक करी न बोरा न भंडारणों को करी देवा। सूखो घन जीवामृत ख हम 6 महीना तक रखी सका। कोई भी फसल की बुवाई का समय प्रति एकड़ 100 किलोग्राम घनेल बनेल गोबर खाद ख 100 किलोग्राम घन जीवामृत मिलई न बीज बोने से उत्पादन में चमत्कारिक परिणाम देखना का मिला। तो भाई बहनों ने ये तो हमने बतायो कि आपका कि जीवामृत न घन जीवामृत कसो बनाओ, ये एक प्रकार की प्राकृतिक खाद है जो कि हमारी फसल का लेना बहुत अच्छी मानी जाए। न भाई बहनों ने अब सावन को महीनों चली रो तो क्यों नहीं एक अच्छो स्रोत सावन को लोग सुनी लेवा। जपन भागीरथ यादव ने उनकी मंडली को गाया।

भाई बहनोनी, अभी हमने भागीरथ यादव ने उनकी मंडली को गाय ली श्रावण को गीत सुनियो न भाई बहनोनी। देखो अब जैसे हमारा खेत में फसल लगे छे न, पानी कभी ज़्यादा ही जाए तो पानी भराव की स्थिति हुई जाए जो कि हमारी फसल का लेना नुकसानदायक छे। तो एक काले न जसोच पानी आवा हम पानी का निकाल ही देवा। एका सिकाई होगा कि हमारा जमीन की जो भौतिक दशा छे ओका में सुधार आवेगा, साथ ज समुचित ओका में हवा को संचार भी होएगा न दलदल भी नहीं होने को हमारे जमीन में। जो अपनी जमीन छे ओको तापक्रम भी सही बने रहेगा। एक अलावा वो ना पानी में कई हानिकारक लवण भी रहे, कभी वो पानी निकल ही देगा तो लवण भी वहाँ से निकल ही जाएगा। श्वसन क्रिया भी पौधा में अच्छी से होएगा, जिका से पौधा को विकास अच्छे से होएगा। समय पर जो भी कृषि क्रिया न चाहिए हम ओका से कर ही सकान। साथ जो लाभदायक जीवाणु छे हमारी क्रियाशीलता जो हमारी फसल से ओका वृद्धि करे वो को भी हमका फायदो रहेगा। एक अलावा जो भाई बहनों ने जो हानिकारक जीवाणु छे वो पानी का साथ कभी रहेगा तो वो भी निकल जाएगा। तो इस सब बातों को ध्यान रखा कि जसोच पानी पड़न कभी खेत में पानी भर ही जाए तो उना पानी का निकालने की हम तुरंत व्यवस्था करा, जिका से हमारी फसल की बढ़वार अच्छी हो न हमारी फसल अच्छी आवा न। भाई बहनों ने चलते चलते काल की भी तय कर लेवा। काल सवेरा खेती की बात में अपन सुनांगा सोयाबीन में मौसमी सलाह, जानकारी देगा स्मिता दुबे न। संजा की घड़ा ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में सुनांगा कविता पाठ सावन के तीज त्यौहार, जानकारी देगा चंद्रमणि दफ्तरी न। एक अलावा आज की बात में अपन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जानकारी भी सुनांगा न। श्रावण का लोकगीत भी सुनांगा। अब चलते चलते एक लोकगीत आरू सुनी लेवा जेखा गावे अपना भाई सदाशिव साध न उनकी मंडली ना।

भाई बहनोनी, अभी हमने सदाशिव साध उनकी मंडली को गाया ली, लोकगीत सुने न एका साता जमारो। आज को खेती गृहस्थी कार्यक्रम को समय भी समाप्ति हो, तो अपनी बहन तुलसा का देव आज्ञा, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुर्खियों में भोपाल से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हर घर तिरंगा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: आगामी 15 अगस्त को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हर घर तिरंगा 2026 अभियान का शुभारंभ हुआ और 17 अगस्त तक इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के तहत करोड़ों भारतवासी हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता दर्शाने वाले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को गर्व और उल्लास से फहराएंगे। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान और भी खास है क्योंकि वह हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। हर घर तिरंगा 2026 अभियान के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
4: नमस्कार।
3: अशोक जी, सरकार ने 2022 में हर घर तिरंगा के तहत जो हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर या अपने कार्यालय पर फहराने का जो अधिकार दिया है, उसे आप कितना महत्वपूर्ण समावेशी पहल मानते हैं और भावनात्मक रूप में ये कैसे सभी भारतवासियों को जोड़ता है?
4: जैसे आपने कहा कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को चलाया था और लोगों से आह्वान भी किया था, और इस बार भी अगर मैं कहूं तो 26 जुलाई 2026 को जो प्रसारित मन की बात के 136वें एपिसोड में भी प्रधानमंत्री ने फिर से भारतवासियों को, भारतवंशी जो विदेश में रहते हैं, उन सबको स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को फिर से इस बार भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया था। और उन्होंने कहा था कि ये तिरंगा हमारे संविधान के आदर्शों को संजोए हुए है और ये देश को एकजुट करता है। तो इस आह्वान का अर्थ यही था कि लोगों को याद कराना कि जब इस बार 9 अगस्त आज से और 17 अगस्त तक ये जो हर घर तिरंगा अभियान

0: चलेगा, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस वर्ष अपने घरों पर तिरंगा फहराने और उत्सव को भव्य बनाने की अपील भी की थी कि लोगों से तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर करके और अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदलने का भी आग्रह प्रधानमंत्री हर साल करते हैं। तो इस बार की कुछ विशेषताएं जिनकी ओर आपने भी ध्यान दिला वो ये है कि ये अभियान राष्ट्रव्यापी जो है 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा और इसको जैसे आपने भी कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ भी इसको जोड़कर इस बार मनाया जाएगा। तो गीत के बोल और धुन हमारी तस्वीर पर खुद ब खुद जुड़ जाएंगे, ये एक विशेष फीचर इस बार है। कुल मिलाकर जो 9 दिन ये चलेगा और उसकी जो सूत्रधार होते हैं वो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री जो होती है वो इसका अभियान करती है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू इस बार जोड़ा गया है।
1: इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी तिरंगा के आसपास प्लान की गई है, यात्राज, रैलीज, कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस और क्विज भी है। सो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अभियान का जब शुभारंभ किया तो उन्होंने नागरिकों से इन गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने का भी आह्वान दिया। सो आपको लगता है इससे एक जागरूकता फैलेगी सब नागरिकों में, जो अतीत का हमारा गौरव है, वर्तमान की जो कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता है और भविष्य के सपनों का जो एक प्रतीक बना है तिरंगा, उसके बारे में ज्यादा जागरूकता फैलेगी
0: कि देश के हर जिले और ब्लॉक में स्तर पर स्थानीय सांसदों, विधायकों और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें युवाओं, जेंजी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का एक तरह से मौका मिलेगा। और इस बार इस बात का भी विशेष ध्यान दिया गया है कि झंडा फहराने के दौरान और अभियान खत्म होने के बाद तक झंडे को उतारते समय जो है हमको कई नियमों का पालन करना होगा। और इसीलिए जब हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहते हैं तो इसका मुख्य देश भारत की स्वतंत्रता दिवस के जो अवसर पर प्रत्येक नागरिक जो है वो इसमें उसका जुड़ाव हो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल इस बार की गई है कि उसका नाम रखा गया है सूर्य पथ तिरंगा, यानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक अनोखी एक पहल शुरू की जा रही है। दुनिया के 54 देशों में मौजूद जो भारतीय दूतावास या हाई कमीशन हैं या कॉन्सुलेट हैं, वो उगते सूरज की दिशा के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर एक के बाद एक तिरंगा फहराएंगे। यानी जो हमारा पूर्व में सबसे फिजी देश है, वहां पर जो हमारा एम्बेसी है वो झंडा फहराने की शुरुआत करेगी और जो जो सूर्य आगे बढ़ेगा तो सैन फ्रांसिस्को में जो अमेरिका का बिल्कुल पश्चिमी शोर है वहां पर सूर्य अस्त के समय तक ये झंडा फहराया जाएगा। तो ये एक हमारा जो डायस्पोरा है उनको साथ जोड़ने की भी बात है और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो दुनिया भर के देशों को भी एक संदेश देना की कोशिश होगी कि जो हमारे देश में स्वतंत्रता का दिवस है उसको हम कितने ढंग से मनाते हैं और उसका एक हिस्सा हमारा बन गया हर घर तिरंगा। हमारे जो लोग जैसे संस्कृति मंत्रालय है उसका जो पोर्टल है उस पर पहली बार एक तकनीकी टूल को जोड़ा गया है। देश के नागरिक राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सही धुन में गाने के लिए उनको ऑनलाइन ट्यूटोरियल दिए गए हैं और वोकल गाइडेंस दिया गया है कि आपको राष्ट्रगीत सचमुच में ठीक ढंग से कैसे गाना चाहिए। तो इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर अब दिल्ली, कलकत्ता और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों में मौन जुलूस निकाले जाते हैं, क्योंकि इसको विभाजन की त्रासदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी स्क्रीन की जाती हैं, क्योंकि अब ये केवल दो ही इसके महत्व नहीं है, यानी हर घर तिरंगा हो और वंदे मातरम हो, साथ में जो विभाजन की विभीषिका थी उसको भी लोगों तक पहुंचाकर कैसे जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ और उसमें से कैसी विभीषिका हुई उसको भी इस बार से कुछ सालों से ये लोगों के साथ नई पौध के साथ नई जनरेशन के साथ उसको जोड़ने की दृष्टि से भी ये कार्यक्रम साथ में लिया गया है। तो ये लोगों की सक्रिय भागीदारी करना, उनके साथ उनको ये पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ हम लोग क्यों करते हैं। हमारी नई पीढ़ी जो है उसको ये जानकारी रहनी चाहिए कि कितनी कठिनाइयों के बाद भारत ने स्वतंत्रता हासिल की थी, कितने लोगों ने बलिदान दिया था और कैसे विभाजन के दौरान एक बड़ी भारी विभीषिका हुई जिसमें लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। पड़ी।
1: पार्टीशन हॉरर्स, रिमेम्बरेंस डे,

0: भी मनाया जा रहा है 14 अगस्त को, ताकि प्रेरणा मिले कि हम किस संघर्ष और बलिदान से आजादी हमने प्राप्त की है उसका मूल्य हम समझें। तो आपको लगता है इससे प्रेरणा मिलेगी सब नागरिकों को, खासकर युवाओं को, कि राष्ट्र निर्माण में यथा योग्य जितना भी कर सकें योगदान करें और अलगाववाद से बचें?
1: बिल्कुल, देखिए पहले के कई दशकों तक ना तो कभी तिरंगा का महत्व समझाया गया था हमारी पीढ़ी को स्वतंत्रता के बाद, और ना ही कोई जो विभाजन की विभीषिका है उसके बारे में बताया गया था। नई जनरेशन को मालूम ही नहीं था कि कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए और वो किस किस तरह के बलिदान थे, उसमें भगत सिंह की बात आती है। लेकिन ये जो विभीषिका हुई पार्टीशन की, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। अब कुछ वर्षों से इसके बारे में, इसलिए उसकी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, उसकी फीचर फिल्म बन रही हैं, और लगातार एक अभियान के तहत इन सारी चीजों को नई पौध को, नई जनरेशन को अगर हम बताते रहेंगे तो उनको भी और वो भी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम और ये आयोजन, जो अभियान है, ये सचमुच में अब एक जन आंदोलन बन चुका है। इसमें प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट, रिलीजियस, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को इसके साथ में भागीदारी करनी चाहिए और तभी ये जो हमारा अभियान है ये और ज्यादा तेजी से लोगों की समझ में आएगा।
0: बिल्कुल। सो अशोक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जन भागीदारी ऑलरेडी ये बन चुका है, लेकिन और भी ज्यादा से ज्यादा इसमें लोगों को आगे आना चाहिए। आपको लगता है कि इससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी भी आती है कि जो हमें आजादी हमें मिली है इतनी मुश्किल से, उसको हमें संभाल के रखना है और हमें अपनी समृद्धि को आगे बढ़ाना है, और जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसा आपने कहा स्वतंत्रता सेनानी या जो आंदोलनकारी रहे जिनके संघर्ष से हमें आजादी मिली, उनके अलावा जो वर्तमान सशस्त्र बल हैं जो रक्षा करते हैं हमारी, उनके प्रति भी एक आदर भाव सम्मान जागता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद बलिदान हुए हैं वो युद्ध में, लड़ाइयों में हमारे जो वीर सैनिक जवान, उन्होंने जो शहादत दी है उसको भी याद करने का एक यही अवसर होता है। और इसीलिए ये जो हर घर तिरंगा है ये केवल आजादी के परवानों की याद नहीं दिलाता, बल्कि उसके बाद आजादी को बनाए रखने में इन वीर सेनानियों कि जो इसमें बलिदान होता है, जो शहीद होते हैं और लगातार आतंकवाद से लड़ते हुए भी शहीद होते हैं, तो उनके प्रति भी श्रद्धांजलि का एक प्रतीक बनता है। और इसीलिए हर घर तिरंगा के साथ साथ जो इसके साथ वंदे मातरम को जोड़ा गया है, क्योंकि वंदे मातरम भी स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत प्रोत्साहित करता था और एक जोश भरता था, और उसके साथ राष्ट्रीय गान के साथ जैसे उसको अब जोड़ दिया गया है, तो इससे हमारे सेनानियों को भी एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो जो पहरेदारी कर रहे हैं वो देश को एक सुरक्षित रखने के लिए, और हम लोग भी अपने घरों में रात को इसीलिए सो पाते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये हमारे जवानों के प्रति भी एक श्रद्धांजलि का बहुत बड़ा अवसर है।
0: सो अशोक जी, एक सामूहिक पहचान है हम सभी की, प्रत्येक भारतवासी के लिए तिरंगा और हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र ध्वज, दोनों एक कहें कि ड्यूअल सेलिब्रेशन है। और अगर हम देखें कोई भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है या खेल आयोजित होते हैं तो हरेक देश जो उनका ध्वज है और उनका राष्ट्रीय गीत है वो बहुत महत्व रखता है। सो उस संदर्भ में भी एक अपनी पहचान बनाने के लिए और पूरा जो हमारा विविध देश है, इतना बड़ा देश है, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है?
1: बिल्कुल, देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब हम बात करते हैं तो उसमें वो जो एक भारत है तो उसमें एकता बहुत आवश्यक है। तो जितनी भी देश में विविधता है उनके रहते हुए भी अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये जो एक मंत्र है और ये भारत के हर क्षेत्र को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे दक्षिण राज्य हो, इन सबको एक माला में पिरोए रखता है। और इसी तरह भाषा और जाति और धर्म, इन सब को मिलाकर रखना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो उसके लिए देशभक्ति की भावना जगाने का लिए जो प्रतीक है वो राष्ट्रीय ध्वज ही है। तो उसके प्रति सम्मान को अगर हम और गहरा करेंगे, उसके साथ हम राष्ट्र गीत के साथ राष्ट्र गान को भी हम बढ़ावा देंगे, तो कोई कारण नहीं है कि ये जो अभियान है ये पूरे देश और समाज को एक सूत्र में पिरोने में और अधिक योगदान करेगा।
0: अशोक जी, पहले तो बहुत ही फॉर्मल और ऑफिशियल ही लहराया जाता था हमारा ध्वज, लेकिन अब जिस तरह से सब नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हुआ है, जैसा आपने भी अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जो ध्वज है उसकी गरिमा और उसको लहराने के कुछ नियम, अगर आप संक्षेप में जो प्रमुख

0: गाइडलाइंस हैं वो बता सकें?
1: हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अपने घरों, निजी प्रतिष्ठानों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराएंगे और इसको फहराते समय जो एक ध्वज संहिता में संशोधन किया गया है, यानी फ्लैग कोड जो है उसमें भी बदलाव किया गया है, यानी अब यदि झंडा खुले आसमान में हो या किसी घर पर हो तो उसे दिन और रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले ऐसे माना जाता था कि दिन में फहराकर उसको जो है रात को उतार लिया जाए, तो ये अभी बदलाव किया गया है कि नागरिक जो है वो आधिकारिक जो वेबसाइट पर डिजिटल रूप से भी अपना झंडा पिन कर सकते हैं, तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर सकते हैं और उससे उनको भागीदारी का प्रमाण पत्र भी मिलेगा, वो भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें इसमें जोड़ी गई है और मैं समझता हूँ कि जो ये अभियान है ये नागरिकों के दिलों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को और ज्यादा गहरा करेगा और जागरूकता बढ़ाएगा, विशेष तौर से नई पीढ़ी के मन में, क्योंकि उनको जब तक हम लगातार अपने देश की विविधता को भुलाकर सभी में राष्ट्रीय गौरव एक साझा प्रतीक के रूप में एकजुट करेंगे नहीं तो कोई कारण नहीं है कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है वो इससे वंचित रहे। इसलिए उनको जोड़ के रखने के लिए ये आयोजन और ये अभियान बहुत ही आवश्यक है और उसी तरफ देश अब चल भी रहा है।
0: अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर घर तिरंगा अभियान 2026 के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हर घर तिरंगा देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की। प्रस्तुति है आकाशवाणी छतरपुर की। विषय है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।

0: डगर विकास की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारे युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को उनके सपनों तक पहुंचाया जा रहा है। श्रोताओं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में कैसे हमारे युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, इस योजना में क्या बेहतर रूप से काम किए जा रहे हैं, इस संबंध में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 के क्रियान्वयन और प्रशिक्षण के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं सैड मैप के जिला समन्वयक श्री एम के श्रीवास।
1: डीडीयू बाई के एक महत्वाकांक्षी स्वरोजगार उन्मूलन योजना है कौशल विकास की दिशा में। इसमें ग्रामीण और शहरी युवाओं को कौशल दक्ष बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें 18 से 35 वर्ष के आयु के युवाओं को विभिन्न स्कीमों के माध्यम से, मुख्यतः शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों पर प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, जिसमें

0: योग्यता शिक्षा के आधार पर उनके कौशल को अलग अलग तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, साथ ही उन्हें NSDC के माध्यम से उनको सर्टिफाइड भी किया जाता है और इसके लिए शासन अलग अलग तरह से ट्रेड के अनुसार उनको आर्थिक सहायता भी देती है और दक्ष युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास भी करती है। विभिन्न स्वरोजगार योजना है जिनमें स्वरोजगार के लिए प्रकरण बनाकर उनको शासन की वित्तीय सहायता भी दिलाते हैं तथा कुछ इंटर्नशिप स्कीम है उसके माध्यम से भी उसमें लिंक करने का प्रयास करते हैं और विभिन्न तरह के कौशल के माध्यम से लोगों के हुनर को सृजन करके उनके हुनर को परिष्कृत करके आज के वर्तमान परिवेश में दक्ष करने का प्रयास किया जाता है।
1: सर, इस योजना में जो हितग्राही होते हैं प्रशिक्षण उपरांत उनको जो रोजगार से जोड़ते हैं स्वरोजगार से, उसके लिए क्या पात्रता होती है ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए? क्या कुछ उनके पास अर्हता होनी चाहिए या कोई डिप्लोमा सर्टिफाइड होना चाहिए?
0: इसमें डिप्लोमा सर्टिफाई की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रामीण युवाओं जो खास तौर से गरीब तबके के जो लोग हैं उस श्रेणी में आना चाहिए, खास तौर से BPL के लोगों को, BPL नहीं है तो खाद्यान्न पर्ची की पात्र हितग्राहियों को, कुल मिला के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए स्कीम है और इसमें शिक्षा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। शिक्षा व्यक्ति के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार शिक्षा है और व्यक्ति की शिक्षा के अनुसार अलग अलग प्रकार के ट्रेडें हैं। साक्षर हैं तब भी, 5वीं पास हैं तब भी, 10वीं पास हैं तब भी, 12वीं पास हैं तब भी आप इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। नगर पालिका और जनपद पंचायतों के माध्यम से अपने आवेदन पंजीयन करा सकते हैं और वहाँ से, और इसमें अनेक लोगों ने लाभ लिया है, अपने हुनर प्राप्त किए हैं।
1: सर, हम ये भी जानना चाहेंगे इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
0: इसका प्रमुख उद्देश्य है युवाओं को वर्तमान परिवेश के अनुसार हुनर में दक्ष करना, ताकि बच्चे अपने कौशल के बारे में आत्मनिर्भर बने और रोजगार स्वरोजगार के लिए दक्ष होकर रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त करें।
1: हमारे युवा भाई बहनों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, वो इस योजना का लाभ लें, क्या कहेंगे?
0: योजना के लिए मैं भाई बहनों से कहना चाहूंगा, यदि आपको जीवन में कुछ करना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन में एक हुनर को अपना दोस्त साथी बनाएं। हुनर ही व्यक्ति का सबसे सच्चा मित्र होता है और हुनर को परिष्कृत करने के लिए योजना बहुत महत्वपूर्ण है और दक्ष है, जो आपको हुनर से रोजगार और स्वरोजगार दे सकती है। तो इस योजना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और एक हुनर कम से कम अपन को धारण करके उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
2: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 ग्रामीण युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से गांव-गांव तक भारत सरकार पहुंच रही है और युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही इस योजना में और भी महत्वपूर्ण पहलुओं को जोड़ा जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 और इस योजना के क्रियान्वयन में भारत सरकार के और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका है और प्लेसमेंट किस तरह से होता है, इस योजना के संबंध में हमें जानकारी दे रहे हैं आप शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शासकीय ITI छतरपुर के प्राचार्य श्री RS जादौन।
3: ITI जनरली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के ट्रेड हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे खुद के संस्थान में 8 ट्रेड हैं और पूरे जिले में 8 ट्रेड ऐसे चल रहे हैं जो कि जनरली हमारे यहाँ भी चल रहे हैं। एक एक्स्ट्रा ट्रेड चंदला में चल रहा है, RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। चूंकि यहाँ पे पूरे छतरपुर जिले में 5 गवर्नमेंट ITI है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ट्रेड हैं और कहीं 6 ट्रेड हैं, कहीं 7 ट्रेड है, वर्तमान में 2 जगह एक एक ट्रेड भी है। और जो कंपनी में एक ऑपरेटर होता है जो कि इंजीनियर के नीचे होता है, तो उसके लिए क्या होता है, कंपनी जो भी मशीनरी ऑपरेशन हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ और विभिन्न प्रकार के, जैसे भी आजकल प्रेजेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन्स आती हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए विभिन्न लोगों की जरूरत होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कंप्यूटर सेक्टर है, डिफरेंट टाइप के सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सब में एक मैन फोर्स की जरूरत होती है जो कि स्किल्ड हो। जनरली 3 टाइप के लोग पाए जाते हैं, एक अनस्किल्ड होते हैं, एक सेमी स्किल्ड होते हैं और एक स्किल्ड होते हैं। हम लोग अनस्किल्ड को सेमी स्किल्ड बनाने का कार्य करते हैं और उसके बाद जब बच्चा ट्रेंड होके और OJT कर लेता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग कर लेता है, तो उसको स्किल्ड पर्सन मानने लगते हैं। अगर हम बात करें विभिन्न ट्रेडों की, तो यहाँ पे हमारे यहाँ कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो ट्रेड है हमारे यहाँ, उसमें हम पाइथन लैंग्वेज हुआ और AI से रिलेटेड टूल्स हुए और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी देते हैं, जिसमें उनको विभिन्न प्रकार की कंपनियों में उनका प्लेसमेंट होता है। और जहाँ पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो टूल इक्विपमेंट है उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मशीनरी जैसे लेथ मशीन हुई, हाइड्रोलिक हुई, न्यूमेटिक हुई, इन मशीन्स की जानकारी दी जाती है। हम कोशिश करते हैं कि CNC DNC मशीन की भी जानकारी उनको दी जाए। अगर सब अच्छा रहा इस साल तो हमारा ये भी विचार है कि बच्चे को कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर जैसे AutoCAD जैसे सॉफ्टवेयर, इनकी भी जानकारी हम उस ट्रेड में

0: चाहेंगे। उसके बाद सर जो हमारे यहाँ पे एक ट्रेड है वेल्डर, जहाँ हम विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग के बारे में बताते हैं, तो वेल्डिंग में जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग हुई, आर्क वेल्डिंग हुई, टिक वेल्डिंग हुई, मिग वेल्डिंग हुई, ऐसे बहुत सारे स्टेंस वेल्डिंग हुई, इन सारी वेल्डिंग्स के बारे में हम उनको बताते हैं बच्चों को, और जो मैकेनिकल रिलेटेड टूल इक्विपमेंट है उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देते हैं।
1: अब हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि ग्रामीण युवाओं में कौशल को बढ़ावा देना ये माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण इच्छा रही है, उस पर काम भी हो रहा है युवाओं के लिए, खासकर ग्रामीण युवाओं के लिए, ताकि उन्हें आगे उनका काम मिल पाए और स्वरोजगार से वो जुड़ पाए।
0: हमने अपने यहाँ पे एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को ओपन कर रखी हुई है। उसमें क्या है कि बच्चों को स्वरोजगार रोजगार दोनों के बारे में बताया जाता है। जरूरी नहीं कि वो बच्चा हमारे यहाँ का हो, वो कहीं का हो, पूरे जिले में कहीं का बच्चा है, तो हम उसको स्वरोजगार की भी जानकारी देते हैं कि प्रेजेंट में यहाँ पे हमारे क्षेत्र में ये चीज अवेलेबल है, आप इसमें इतना कर सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ आते हैं, जितने भी ट्रेड हैं, वो ग्रामीण के लिए भी बराबर से खुले हुए हैं, सारे बच्चे एक जैसे हैं, सारे बच्चों की एजुकेशन लगभग एक सी रहती है। ऐसी योजनाएं बना के गवर्नमेंट बच्चों लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। जो युवा पीढ़ी आ रही है वो भविष्य में मतलब एक भारत निर्माण, भारत के एक विकसित निर्माण के लिए कार्यरत हो। 2047 का एक लक्ष्य रखा गया है कि विकसित भारत बने, तो वो ऐसे ही बनेगा जिसमें बच्चा स्वरोजगार और रोजगार दोनों से कंटिन्यू जुड़ता जाएगा योजनाओं के थ्रू।
1: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.2 हमारे ग्रामीण और शहरी युवाओं को एक बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है। इस योजना और योजना से जुड़े हुए प्लेसमेंट में रोजगार कार्यालयों की क्या भूमिका है, इस संबंध में हमें बताते हुए आप हैं छतरपुर के जिला रोजगार अधिकारी श्री SK Jain।
2: शासन के द्वारा जो भी रोजगारी योजनाएं हैं या स्वरोजगारी योजनाएं हैं, इनको एकीकृत एक छत के नीचे लाने, बच्चे को एक ही टाइम पर सभी अवसर सभी जानकारी मिल सके, इसके लिए एक युवा संगम कार्यक्रम हम प्रत्येक माह आयोजित करते हैं। छतरपुर जिले के लिए वो निर्धारित है, चतुर्थ बुधवार को हम लोग करते हैं। उसमें हम इसको रोजगार स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेला और युवा संगम इसको कहते हैं। तो इसमें रोजगार मेले में जो कंपनीज आती हैं, जो डायरेक्टर मतलब प्लेसमेंट करती हैं बच्चों का, जो डायरेक्टर ऑन जॉब रोल रखती हैं, वो कंपनीज हम बाहर से बुलाते हैं। उसमें देश की प्रदेश की विभिन्न कंपनी रहती हैं, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट जो रहती है उसके आधार पर हम जिले में प्रचार प्रसार कराते हैं कि इस तरह की कंपनी आ रही है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बच्चों को पता चलता है। इसके अलावा दूसरा जो रहता है इसका एक एस्पेक्ट, जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं ITI के बच्चे, तो वो भी ITI की तरफ से अप्रेंटिसशिप की कंपनीज बुलाई जाती हैं। तो अप्रेंटिसशिप मेला भी इसमें कम्बाइंड रहता है, उसमें अप्रेंटिसशिप के लिए भी कंपनीज आती हैं। तो इस तरह से कंपनीज आती हैं और स्वरोजगारी योजनाएं जो भी चल रही होती हैं उसके स्वरोजगार के हम विभागों को से कोऑर्डिनेट करते हैं, लीड बैंक अधिकारी से भी कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जिन्होंने भी अपने ऋण योजनाओं के लिए आवेदन किया है या आवेदन करना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं और किस तरह से मार्केट में मतलब वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं, तो एक होलिस्टिक अप्रोच से हम लोग मतलब वर्क करते हैं कि इतना पढ़ने के बाद या कुशलता के बाद उसको उसके अनुरूप कार्य मिल सके। मतलब वो चाहे आपका रोजगार हो, चाहे वो मतलब अप्रेंटिसशिप हो, चाहे स्वरोजगार हो, हमारा बेसिक उद्देश्य उसके लाइवलीहुड को उसको प्रदान करना और उसके पुनर्वास में और उनके जीवन स्तर को निर्वाह स्तर को ऊपर उठाना है। ये हमारे प्रदेश शासन की और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं।
1: जी जी, हम अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में कई युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। ग्रामीण जो सर्वे हुए हैं वहाँ भी खूब उनको किट्स भी मिली हुई हैं और प्रशिक्षण और साथ ही साथ उनको कुछ स्टाइपेंड भी मिला हुआ है। रोजगार कार्यालय और क्या भूमिका निभाता है, जैसे प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो कौशल से जो स्किल्ड जो बच्चे होते हैं कौशल विकास योजना के, तो उन्हें कैसे रोजगार मिलता है या किन किन कंपनियों में रूप से प्रयास रहता है कि ताकि वो रोजगार से जुड़ पाए?
2: देखिए, जो रोजगार की कंपनियां हैं उसमें हम स्किल्ड बच्चों के लिए फोकस करते हैं, इसके साथ साथ हम अनस्किल्ड बच्चों पर भी फोकस करते हैं। दूसरा हमारा फोकस रहता है क्षेत्र का, कुछ जैसे बच्चे बाहर नहीं जा सकते तो हम कोशिश करते हैं कि आसपास की कंपनीज बुलाएं। तीसरा फोकस हमारा रहता है डिफरेंट सेक्टर्स का, किस सेक्टर में बच्चा जाना चाहता है। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी उनको अच्छा लगता है, कुछ कमीशन बेस्ड कंपनीज हैं उनमें जाना चाहिए। चाहते हैं, कुछ प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, तो हम सभी से अप्रोच करते हैं और कोशिश करते हैं कि लगभग लगभग हर एक फील्ड की एक एक कंपनी कम से कम आए, जिससे बच्चों को वैरायटी कंपनीज मिल सके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी मतलब ये भी कोशिश करते हैं कि अगर अनस्किल्ड

0: है बच्चा, तो भी मतलब उसको बिल्कुल अपने लाइवलीहुड के लिए मतलब अधिकार है कि वो मतलब अगर उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग हम पुश कर सकें, जैसे सर ने बताया है कि 7 दिन की ट्रेनिंग कुछ RPL होती है, जैसे उनके पास स्किल है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इस तरह से हम मतलब उस कुशलता को वो पहचानते हैं और उनको इंटरव्यूअर जो आते हैं कंपनी के उनके सामने मतलब हम प्रस्तुत करते हैं बच्चों को, इस तरह से हम मतलब लगभग लगभग और डिफरेंट वो उसमें करते हैं जिससे बच्चे को कहीं ना कहीं उसमें लाभ मिल सके।
1: श्रोताओ, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में मुफ्त प्रशिक्षण और सुविधाएं ग्रामीण युवाओं को मिल रही हैं, साथ ही उन्हें भोजन के साथ साथ स्टाइपेंड भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आप सभी इस महत्वपूर्ण योजना से जुड़ जाइए और भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। इसी के साथ डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र अहिरवार और प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति, अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के लिए योगदान आकाशवाणी छतरपुर का।

0: अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम डगर विकास की, योगदान था आकाशवाणी छतरपुर का, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान का रविवार को विधिवत शुभारंभ हो गया है। यह अभियान आगामी 17 अगस्त तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत प्रदेश में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और श्रोताओं, हम सब जो भारतवासी हैं, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए ही तो जीते हैं। तो आइए सुनते हैं देशभक्ति से भरा ये गीत।

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभियान की जो केवल घरों पर तिरंगा फहराने का अभियान नहीं, बल्कि भारतीयों के दिल में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाने का संकल्प है, हर घर तिरंगा अभियान। तिरंगा सिर्फ 3 रंगों से बना एक ध्वज नहीं है, यह हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों की याद दिलाता है। ये उन अनगिनत वीरों के बलिदान की कहानी कहता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जब हम अपने घर पर तिरंगा फहराते हैं तो ये केवल एक रस्म नहीं होगी, ये उस भावना की अभिव्यक्ति होगी कि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मुझे अपने देश पर गर्व है और देश की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से सजा है। ऊपर का रंग केसरिया, रंग साहस का, त्याग और बलिदान का संदेश देता है। बीच में श्वेत रंग शांति और सत्य का प्रतीक है और नीचे का हरा रंग समृद्धि, विकास और धरती से हमारे जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। इन 3 रंगों के बीच में है हमारा अशोक चक्र जो हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। इस तिरंगे की खातिर तो कितने ही बलिदान हुए और कितने ही लोगों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया।

श्रोताओं, हर घर तिरंगा की भावना केवल शहरों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। गांव हो, शहर हो, खेत हो या कारखाना हो, विद्यालय हो या कार्यालय, देश का हर नागरिक इस भावना से जुड़ सकता है और तिरंगा लहरा सकता है। किसान जब अपने खेत में मेहनत करता है और देश के लिए अन्न पैदा करता है तो वो भी एक राष्ट्र सेवा करता है। एक शिक्षक जब बच्चों को ज्ञान और संस्कार देता है तो वह भी राष्ट्र निर्माण करता है। एक जवान सीमा पर जब देश की रक्षा करता है और एक चिकित्सक जब अस्पतालों में जीवन बचाता है। एक विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करता है। एक श्रमिक अपने श्रम से देश की अर्थव्यवस्था को गति देता है। ये सब भी राष्ट्र सेवा के ही अलग अलग रूप हैं। इसलिए तिरंगा केवल घर की छत पर नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और कर्म में भी दिखाई देना चाहिए। आइए हम सब संकल्प लें कि हम इस अभियान से जुड़कर सब लोग अपने अपने घर की छतों पर तिरंगा अवश्य लहराएंगे।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
3: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
2: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4थे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घर

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
1: To launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to this call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
3: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है।
4: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित

0: के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। आईएमडी ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर

0: दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPAC preliminary exam over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPAC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1300 flights cancelled while 3 lakh people relocated. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. Sharing a video message, Mr. Modi said that those who participate in sports will prosper in life and urge citizens to always cheer for Bharat.
2: Jo khelega, wo khelega. Always cheer for Bharat. Bharat Mata ki. Jai. Bharat Mata ki. Jai. Bharat Mata ki. Jai.
1: India finished at the 4th spot on the medals table at the games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July and the 2nd of August. Indian athletes won 39 medals including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.

0: श्रोताओं नमस्कार, जोहार। विश्व आदिवासी दिवस पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम के साथ आपका मित्र मुकाम सिंह चौहान। श्रोताओं, आदिवासी समाज की जीवन शैली, दर्शन और परंपराएं आधुनिक समाज को सतत विकास और सामंजस्य पूर्ण जीवन जीने की राह दिखाती है। आदिवासी समाज प्रकृति का उपभोग करने के बजाय उसका संरक्षण करता है। उनके लिए जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं है, बल्कि पूजनीय जीवन दाता है। वे केवल उतना ही लेते हैं जितनी की उन्हें आवश्यकता होती है, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। लैंगिक समानता की बात करें तो अधिकांश आदिवासी समाजों में महिलाओं की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ है और सम्मानित है। विवाह निर्णय, पारिवारिक फैसलों और सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्राप्त है। यहाँ हम की भावना आदिवासी संस्कृति की नींव है। घर बनाने, खेती करने या उत्सव मनाने जैसे कामों में पूरा गांव मिलकर सहयोग करता है। सुख दुख साझा करने की यह परंपरा समाज में एकाकीपन को खत्म करती है। सादगी और न्यूनतम जीवन शैली आदिवासी जीवन दर्शन अत्यधिक संग्रह करने या भौतिकवादी होड़ के खिलाफ है। कम से कम संसाधनों में प्रसन्न रहना और संसाधनों का अपव्यय न करना उनकी सहज आदत होती है। लोक ज्ञान और पारंपरिक जड़ी बूटी विज्ञान, पेड़ पौधों, औषधियों और मौसम चक्र का ज्ञान सदियों से वे अनुभव आधारित संग्रह करके रखते हैं। आधुनिक चिकित्सा और विज्ञान भी आज उनके पारंपरिक पर्यावरण ज्ञान से सीख लेता है। आइए इस विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें।
1: कि हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 2007 में एक और भीतर शुरू हुआ पहला औपचारिक प्रयास था। इसी बैठक की याद में 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 49/214 पारित किया और तय हुआ कि हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 2007 में एक और ऐतिहासिक कदम उठा। संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासी लोगों के अधिकारों की घोषणा यानी कि यूएन ट्रिप को अपनाया, जो आत्मनिर्णय, भूमि अधिकार, संस्कृति और भाषा की रक्षा जैसे मुद्दों पर आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने लायक है, यह घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी यानी कि बाइंडिंग नहीं है। यानी यह एक नैतिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता तो है, पर किसी देश को अदालत में इसे लागू करने के लिए मजबूर नहीं करती। यही वजह है कि दुनिया भर में आदिवासी समुदाय आज भी अपने अधिकारों

लिए जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का दिन केवल उत्सव का दिन नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों की पहचान, संस्कृति, भाषा, ज्ञान और अधिकारों को सम्मान देने का दिन है जिन्होंने मानव सभ्यता को बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में अक्सर विस्थापन, भेदभाव और उपेक्षा ही मिली है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की थीम रखी है ऑनरिंग इंडिजिनियस मिडवाइव्स सेफगार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग, यानी कि आदिवासी पारंपरिक दाइयों का सम्मान, जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा। यह थीम अचानक नहीं चुनी गई, सदियों से आदिवासी समाजों में दाई सिर्फ एक प्रसव कराने वाली महिला नहीं होती, वह समुदाय की सबसे भरोसेमंद ज्ञान वाहक होती है। वह जानती है कि कौन सी जड़ी बूटी दर्द कम करेगी, कौन सा आसन प्रसव को आसान बनाएगा और वह मानसिक और सामाजिक सहारा भी देती है जो अस्पताल की चहरीदीवारी में अक्सर गायब होता है। संयुक्त राष्ट्र इस थीम के जरिए यह मान्यता देना चाहता है कि आदिवासी ज्ञान प्रणालियाँ केवल परंपरा नहीं बल्कि पीढ़ियों के अनुभव से परखा गया विज्ञान है। साथ ही यह सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं, यानी ऐसी सेवाएं जो समुदाय की भाषा, विश्वास और पद्धति का सम्मान करे, उसको बढ़ावा देने की बात करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या करीब 10 करोड़ 40 लाख है, यानी देश की कुल आबादी का 8.6%। भारत में 700 से ज़्यादा आदिवासी समुदाय आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं और इनमें से 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि PBTG के तौर पर चिन्हित किया गया है। ऐसे समुदाय जिनकी जनसंख्या स्थिर या घट रही है, साक्षरता बेहद कम है और जो कृषि पूर्व तकनीकों पर निर्भर है। भारत का संविधान आदिवासी समाज को दो अलग अलग सुरक्षा ढांचों के जरिए मान्यता देता है। पहला, पांचवी अनुसूची जो भारत के मध्य राज्यों जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उधर गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, आंध्र जैसे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है, और दूसरा, छठी अनुसूची जो पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों के जरिए स्वशासन की व्यवस्था करती है। इसी संवैधानिक ढांचे के भीतर से दो बेहद महत्वपूर्ण कानून निकलते हैं, पेशा 1996 जो ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में निर्णय लेने की शक्ति देता है, और वन अधिकार अधिनियम 2006 जो पीढ़ियों से जंगल में रहने वाले समुदायों के भूमि और वन उपज अधिकारों को मान्यता देता है। अब बात करते हैं उस ज्ञान की जिसे अक्सर पुरानी परंपरा कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि वह असल में गहन पारिस्थितिक विज्ञान है। आदिवासी समुदायों की खाद्य प्रणालियां आत्मनिर्भरता के मामले में अद्भुत हैं। दुनिया भर में आदिवासी समुदाय अपने भोजन और संसाधनों का 50-80% हिस्सा खुद पैदा करते हैं बिना बाजार पर निर्भर हुए। यह सिर्फ खेती नहीं है, यह सदियों के अवलोकन से बना पारिस्थितिक ज्ञान है। झारखंड और उससे सटे इलाकों में चुआ जैसे परंपरागत जल स्रोत, नदी किनारे रेत खोदकर बनाए गए छोटे छोटे कुएं गर्मियों में पूरे गांव की प्यास बुझाते हैं बिना किसी बड़े बांध या पंप के। यह जल प्रबंधन का वह मॉडल है जिसे आज जलवायु परिवर्तन के दौर में सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कहकर पश्चिमी विज्ञान फिर से खोज रहा है। इसी तरह मौसम और फसल के बीच के रिश्ते को समझने वाला पारंपरिक फिनोलॉजी ज्ञान, यानी कौन सा पेड़ का फूल कब खिलेगा, इससे बारिश और फसल का अनुमान पीढ़ियों से आदिवासी समाज में मौखिक परंपरा के रूप में जीवित है। धरती की जैव विविधता की सबसे बड़ी रक्षक भी यही समुदाय है। दुनिया के बचे हुए जंगलों का बड़ा हिस्सा उन्हीं जमीनों पर है जहां आदिवासी समुदाय सदियों से रहते आए हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि उनकी जीवन पद्धति का नतीजा है जिसमें प्रकृति को दोहन की चीज नहीं बल्कि रिश्तेदार माना जाता है। आज दुनिया का वैज्ञानिक समुदाय भी मानता है कि आदिवासी समुदायों का पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान यानी कि ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसी सोच के कारण संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष आदिवासी समुदायों के किसी विशेष योगदान को केंद्र में रखकर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की थीम निर्धारित करता है। आदिवासी समुदायों की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे किसी क्षेत्र से उनका ऐतिहासिक और पीढ़ीगत संबंध होता है, उनकी अपनी विशिष्ट भाषा होती है, उनकी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं होती है, प्रकृति के साथ उनका गहरा रिश्ता रहता है। अब एक ऐसा तथ्य जो शायद आपको चौंका दे, संयुक्त राष्ट्र और अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार दुनिया की शेष बची जैव विविधता का बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां आदिवासी समुदाय रहते हैं या जिनका उनसे पारंपरिक संबंध है।
इसका अर्थ यह नहीं कि केवल आदिवासी ही प्रकृति की रक्षा करते हैं, बल्कि यह कि अनेक स्थानों पर उनके पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक प्रबंधन ने पारिस्थितिक तंत्र को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जलवायु परिवर्तन के दौर में वैज्ञानिक ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज यानी पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि

0: इसमें मौसम, जल, बीज, वनस्पतियों और वन जीवों के बारे में पीढ़ियों से संचित अनुभव शामिल है। अक्सर कहा जाता है यह तो केवल परंपरा है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? आज आधुनिक शोधकर्ता आदिवासी समुदायों से सीख रहे हैं जल संरक्षण, मिश्रित खेती, बीज संरक्षण, औषधीय पौधों का उपयोग, जंगल में आग के पारंपरिक प्रबंधन और बदलते मौसम के संकेतों को समझने के तरीके। आदिवासी होना सिर्फ जंगल में रहना नहीं है, यह एक ऐसी जीवन दृष्टि है जिसमें धरती संपत्ति नहीं, पूर्वजों की विरासत और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी मानी जाती है।
1: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को इंदौर में आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। जुलूस में हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। आदिवासी वेशभूषा में सजे युवाओं ने पारंपरिक अंदाज में शामिल होकर अपनी संस्कृति और एकता का संदेश दिया। सुबह 8 बजे से ही लालबाग परिसर में लोगों का जमावड़ा शुरू हो चुका था और ये कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और यह कलेक्टरेट, पलसीकर चौराहा, सोनकर धर्मशाला, सिंधी कॉलोनी चौराहा और टावर चौराहा होते हुए भंवरकुआं चौराहे तक पहुंचा और यहां टंट्या मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद राजीव गांधी चौराहे तक ये जुलूस हुआ और यहां पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के युवा पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। हाथों में झंडे और पारंपरिक वाद्य यंत्र लेकर युवाओं ने उत्साह के साथ रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान आदिवासी संस्कृति, परंपरा और समाज की एकजुटता का संदेश दिया गया। आदिवासी गीतों की धुन पर हजारों की संख्या में युवा एक साथ नृत्य करते नजर आए और आयोजकों की माने तो सामूहिक नृत्य के रिकॉर्ड बने।

इसी के साथ विश्व आदिवासी दिवस पर केंद्रित एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आपके मित्र मुकाम सिंह चौहान को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विश्व आदि दिवस पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम, प्रस्तुति थी मुकाम सिंह चौहान की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर लीजिए प्रस्तुत है आप ही के पत्रों द्वारा भेजी गई फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, मन भावन कार्यक्रम में आपके पत्रों और आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी पूजा ठाकुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर राम लखन फिल्म का ये गीत। स्वर है मनहर और अनुराधा के, बोल है आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत की फरमाइश की है हमें कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली ने। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी से सुनना चाहते हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से सुनना चाहते हैं विजय महोबिया, कविता, संजय, नंदनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज और भयू दादा। मोटक्का माफी जिला खंडवा से सुनना चाहते हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ललिता, माफ कीजिएगा, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। इसी कड़ी में जुड़े हैं सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव एवं काव्यांशी कटारिया। घंटाघर चौक खंडवा से सुनना चाहते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आदर्श नगर मलोट से सुनना चाहते हैं राज शर्मा, मीना, योगेश मेंडी, सौरभ और शाइना शर्मा। शास्त्री नगर खंडवा से रमेश पंचोली, बीनू देवी पंचोली, प्रकाश, उर्मिला, दीपक, दीपिका, नंदनी, निखिल, गौरांश पंचोली। नसीब रेडियो श्रोता संघ संजय कॉलोनी खंडवा से ही सुनना चाहते हैं जनाब अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, अब्दुल रहमान डावर।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म का गीत सुनिए कुमार शानू और अलका याग्निक के स्वर में, बोल हैं हसरत जयपुरी के। और इस गीत की फरमाइश की है हमें छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर ने। पालदाना का इंदौर से सुनना चाहते हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनंजय, राहुल कुमार, विशाल, शीला और गायत्री धनंजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा सालिया, शोएब खान। पोत्रा से मुस्तबा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश गवानकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवानकर, वैशाली, श्वेता, सुमित, कुमारी, ध्वनि। श्री रोडकेश्वर श्रोता संघ छत्रपति शाहूनगर हिंगोली से पेंटर रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत, टीकू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी, सुरभि, मंजुषा और गौतम इंगोले। श्री माटकेश्वर श्रोता संघ नागेश्वर नगर माटेगांव से सुनना चाहते हैं शेषराव बोबड़े, सोनाजी, सीताराम, वैष्णवी, स्वर्णा, वेणुताई, शुभम, माधवराव, देवराव, धर्माजी, संदीप, गणेश, शिवन्या, शिवरूपा और साहेबराव लोखंडे। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

आज का अर्जुन, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और शाबिर कुमार के स्वर में। फरमाइश की है हमें गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर बीरक, जेतक बीरक और मिका बीरक ने। छत्तीसगढ़ सिग्मा से सुनना चाहते हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी और कोमल यादव। ओम साई राम रेडियो श्रोता संघ झुमरी तलैया से देव इंगोले, छकुली इंगोले और आरडी इंगोले। तालुका नेवासा खुपट्टी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला पोपलघट, देवीदास और हरिभाऊ बिड़वे। प्रमिलागंज आलोर जिला रतलाम से सुनना चाहते हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा, हनुमान, उत्तम और स्वराज। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतेरी से भागवत वर्मा, लवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। इसी कड़ी में जुड़े हैं डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका गजबीय, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीय। भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन देवागन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन।

लक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता और समस्त उन बत्ता परिवार। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: भोला भाला भीमा बम भोले का पुजारी किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी काहे रोग कोई दिल को लगाए।
1: गोरी है कलाई।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में सुनिए सरगम फिल्म का गीत। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश की है हमें रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने।

बोरखेड़ा जिला उज्जैन से सुनना चाहते हैं विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मुड़त। सरवानिया महाराज जिला नीमच से गोविंद पाटीदार, ममता, पूजा, मधुसूदन और यशस्वी पाटीदार। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। दयापुर बाभली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले। शेरी वर्णे रकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। ओम रेडियो श्रोता संघ से सुनना चाहते हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साई गायकवाड़। पुणे से प्रियंका, पंकज, आर्या और जरूर वरुट से बाबा साहेब वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात के कार्यक्रम में हम आपके लिए श्रीमती सात्विका मोहन का गायन प्रस्तुत करते हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए वोकल रिसेटल बाय श्रीमती सात्विका मोहन।
1: श्रीमती सात्विका मोहन आकाशवाणी और दूरदर्शन की ए ग्रेड कलाकार हैं और एक सुशिक्षित कर्नाटक क्लासिकल गायिका और वायोलिन वादक हैं। इन्होंने अपनी प्राथमिक संगीत शिक्षा श्रीमती वी ललिता से शुरू की और विष्णु वटला सिस्टर्स नाम से प्रसिद्ध बहनों में विदुषी श्रीमती विष्णु वटला कृष्णवेणी के साथ आगे का अभ्यास जारी रखा। बाद में इन्होंने सुप्रसिद्ध हैदराबाद ब्रदर्स में से विद्वान डी राघवाचारी के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा। 6 साल की छोटी उम्र में प्रथम प्रदर्शन देने वाली इस बाल कलाकार ने आंध्र प्रदेश के सरकार से प्रतिष्ठात्मक बाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के CCRT के द्वारा वरिष्ठ छात्रवृत्ति प्राप्त किया। उसी वर्ष में आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में शास्त्रीय भक्ति संगीत में प्रथम पुरस्कार और कर्नाटक शास्त्रीय गायन में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये आकाशवाणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी पीढ़ी की गायिका हैं। इन्होंने प्रख्यात सभाओं में, प्रतिष्ठात्मक संगीत उत्सवों में और भारत के अग्रगामी सांस्कृतिक संस्थानों में प्रदर्शन दिया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में और वायलिन में डिप्लोमा के साथ साथ संगीत में MA डिग्री हासिल की है और IIT खड़गपुर में MBA डिग्री भी प्राप्त की है।
2: श्रीमती सात्विका मोहन is an A-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an accomplished Carnatic classical vocalist and violinist. She received her initial training under Srimati V. Lalita, followed by advanced tutelage under Vidushi Srimati Vishnubhatla Krishnaveni of the renowned Vishnubhatla sisters, and further advanced guidance from Vidwan Sri D. Raghavachari of the illustrious Hyderabad brothers, a child prodigy who presented her maiden concert at the age of 6, she was conferred the prestigious Balaratna title by the government of Andhra Pradesh. She is a recipient of the senior scholarship in Carnatic vocal music awarded by the CCRT, Ministry of Culture, Government of India, and achieved national distinction by securing first prize in classical devotional music and second prize in Carnatic classical vocal music at the All India Radio National Music Competitions in the same year. Becoming a second generation Akashvani National Prize winner, she has performed extensively at eminent sabhas, prestigious music festivals and leading cultural institutions across India. She holds diploma in Carnatic vocal and violin, an MA in music and an MBA in human resource management from IIT Kharagpur.
1: Aaj raat ke is karyakram mein aapke saath sangat karne wale kalakar hain: वायलिन पर श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
2: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट श्रीमती सात्विका मोहन इज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय श्री ओ राजशेखर, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
1: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का आरंभ त्यागराज की एक कृति से कर रही हैं, जो राग हमसध्वनि तथा आदि ताल में निबद्ध है।

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग आनंद भैरवी सेट टू आदि ताल।

0: श्रीमती सात्विका मोहन अपना गायन जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम, जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल, श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ तरंगम इन द राग बिलहरी सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिम्हेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य इन द राग सिम्हेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: वो था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वाज द तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन कंक्लूड्स हर वोकल रिसेटल विद द कंपोजिशन ऑफ श्री कनकदासा इन द राग सिंधु भैरवी सेट टू खंड चापू ताल।

0: इसी के साथ हम रविवार के अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके साथ वायलिन पर थे श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। रविवार के अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के प्रसारण कक्ष में इस संगीत कार्यक्रम का ध्वनियांकन किया गया है। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती सात्विका मोहन इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। शी वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय श्री ओ राजशेखर, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पेरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम

0: Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashvani Hyderabad for Ravi Vasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha and brought to you from the Delhi station of Akashvani.
1: ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
3: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
2: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़ से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे

0: The government has extended the tenure of Director of Enforcement Directorate Rahul Naveen by 1 year from 13th of this month to 13th of August next year. The extension in service will continue beyond his scheduled retirement on the 31st of July 2027. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। आज की हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:51 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।